मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि तदनुसार 5 जून सन 2026 सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की सभा का शुभारंभ।

0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक

0: की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और OTT ऐप पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
3: ये आकाश

आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। उषा की पावन बेला में प्रकाश का जागरण हो रहा है, चैतन्य है धरती का कण कण। इसी जागृत चेतना के साथ आइए करें अंतर मन में परम शक्ति का आह्वान। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जाना चाहिए, भाव विभोर हो जाना चाहिए, ताली भी बजाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पापों के पंछी उड़ जाते हैं और ईश्वर की कृपा हम पर बरसने लगती है।

हमें पूर्ण समर्पण और प्रसन्न मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए। हमें ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके सम्मान में हमें उमंग और उल्लास से भर

ईश्वर की कृपा दृष्टि तो सदैव हम पर बनी रहती है। वो अपनी इस दृष्टि के संकेत भी हमें देता रहता है, परंतु इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते। ये तभी संभव हो पाता है जब हम निश्चल मन से समर्पित होकर ईश्वर का स्मरण करें, मानवता की सेवा करें, ईश्वर की आराधना करें।

जिस प्रकार मजबूत स्तंभों पर आधारित भवन समय बीतने पर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और इमारत एक ना एक दिन ढह जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति भी वृद्धावस्था पार करने के बाद इस संसार से हमेशा के लिए चला जाता है, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, जीवन नश्वर है। प्रभु का स्मरण ही कल्याणकारी है।

जीवन उन लोगों के लिए दुख का कारण है जिन्होंने विवेक की शक्ति को विकसित नहीं किया है, जिन्होंने संसार को नश्वर नहीं समझा, जो संसार के मोह माया में लगातार आबद्ध रहे, उनके लिए जीवन कठिन है। जो लोग सत्य का आसरा लेते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, उनके लिए संपूर्ण जीवन मंगलमय हो जाता है।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज आपने समूह स्वर में देशभक्तिपूर्ण रचना के पश्चात अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन, सुरेश वाडकर, हेमा देसाई और तापसी नागराज के गाए भजन सुने। अब आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर लता मंगेशकर, संगीत है सतीश भाटिया का।

रामचरित मानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर लता मंगेशकर का, संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी भोपाल बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन, आलेख है लक्ष्मी नारायण गुप्त का।
1: पृथ्वी पर पर्वत होने की अनिवार्यता है। पर्वत होने से पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। प्रकृति संरचना में विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य जनोपयोगी वस्तुएं रत्नाकर समुद्र प्रदान करते हैं। पर्वत भी एक ओर जहां अनेक प्रकार के खनिज, औषधियां और मणि माणिक्य प्रदान करते हैं, तो दूसरी ओर पहाड़ वर्षा होने में भी सहायक होते हैं। शैले शैले न माणिक्यम, संस्कृत की उक्ति में माणिक्य मुक्ता पाने के लिए शैलों का होना आवश्यक है। यद्यपि प्रत्येक पर्वत पर मणि माणिक्य प्राप्त नहीं होते, पर औषधियों का जीवन प्रदायक भंडार तो यहाँ होता ही है। प्राणदायिनी संजीवनी औषधि का वर्णन हमें राम कथा में प्राप्त होता है। जब हम पृथ्वी पर पार्थिव रूप में पर्वतों को देखते हैं, तो पाते हैं कि आग्नेय, कामांतरित आदि नामों से अनेक प्रकार के पर्वत होते हैं। पर्वत का एक नाम अचल है, विष्णु का नाम भी अचल है। इसका भावार्थ है जिसका स्वरूप सामर्थ्य और ज्ञानादि गुण से चलन नहीं होता है, उसे अचल या अच्युत कहते हैं। अच्युत विष्णु ही हैं, और भारतीय पौराणिक संस्कृति में पृथ्वी को विष्णु की पत्नी माना गया है और पर्वतों को विष्णु की प्रिया। भारतवर्ष में आदिकाल से ही पर्वत पूज्य रहे हैं, क्योंकि इनकी गुफाएं और कंदराएं तपस्वियों के साधना स्थल आज भी हैं। इसलिए अपने अनेक गुणों के कारण कुछ विशिष्ट पर्वतों को कुल पर्वत के विशेषण से विभूषित कर पर्वतों की पूजा की जाती है। कुल पर्वत 8 हैं: मेरु, मंदर, कैलाश, मलया, गंध, मादन, महेन्द्रश्च, श्री पर्वतश्च, हेमकूटस तथैव च। अष्टाकेते तु संपूज्या गिर्यः पूर्वाधिकनाथ। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला सानिध्य होने के कारण गोवर्धन पर्वत की पूजा भी श्री कृष्ण के आदेश से की जाती है। पूजा का आधार धारण शक्ति अथवा गुरुत्व और पर्वतों से प्राप्त उपयोगी वनस्पतियां हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद में पर्वत का गिरि अर्थ में प्रयोग हुआ है, और गिरि पूजा का एक वर्ष का अनुष्ठान चैत्र शुक्ल अष्टमी से माना गया है। भारतीय पर्वतों का महत्व तब और बढ़ जाता है जब इनके संबंध देवी देवताओं से जुड़ जाते हैं। दक्षिण के सह्याद्री पर्वत पर हनुमान का जन्म और पुण्य

0: सलीला गोदावरी का प्रकट होना तथा ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक महादेव की प्रतिष्ठापना, ऋष्यमूक पर्वत पर वनवास काल में श्री राम का आश्रय लेना, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का पूजा जाना, अमरकंटक पर्वत से दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदायिनी पुण्य सलीला नर्मदा का उद्भव होना, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी देवी और मैहर पर्वत पर श्री शारदा देवी तथा जम्मू में हिमालय में वैष्णो देवी का प्रकट होना, सतपुड़ा पर्वत की रानी कही जाने वाली पचमढ़ी पहाड़ियों में भगवान जटाशंकर का वास होना तथा आंध्र प्रदेश के श्री शैलव में शिव ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का प्रकट होना, पूर्वी घाट के महेंद्र पर्वत जहां से उछलकर हनुमान जी आकाश मार्ग से श्रीलंका की यात्रा करते हैं, श्रीराम के चित्रकूट पर्वत पर निवास तथा कैलाश मंदराचल सुमेरु शिव साधना स्थल हिमाचल गंधमादन आदि पर्वत देवताओं के निवास और ऋषि मुनियों के साधना स्थल होने के कारण भारतीय संस्कृति में पूज्य हैं। अतः पर्वतों और उनकी शाखाओं प्रशाखाओं की काट छांट रोककर पर्यावरण को स्वच्छ सौंदर्य बनाए रखने के लिए हमें इनकी रक्षा और पूजा करना चाहिए। पर्वतों की सुस्थिरता दृढ़ता और संतत्व स्वभाव का अवलोकन मानव जीवन यात्रा का परम पोषणीय पाथेय है।
1: ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
2: किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे पपीते की वैज्ञानिक खेती के बारे में। पपीता एक बहुत महत्वपूर्ण फल है। इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए, आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा इससे पपेन प्राप्त किया जा सकता है, जो कि मार्केट में बहुत महंगा बिकता है। तो इसलिए पपीते की खेती पे हम सबको जोर देना चाहिए। सबसे पहले पपीते की खेती के लिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसी मिट्टी में पपीते की खेती करनी चाहिए जहाँ पर ना ज़्यादा पानी रुकता हो और ना ज़्यादा पानी की समस्या हो। मतलब इसको पानी तो चाहिए लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। तो उस भूमि में जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी चिकनी अगर होगी तो फिर इसमें जड़ों का विकास संभव नहीं होगा, इसलिए चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। लाल मिट्टी में हम इसको कर सकते हैं। उसके अलावा मिट्टी का पीएच मान जो है वो अगर 6.5 से 7.5 रहता है तो वो इसके लिए सबसे उपयुक्त रहता है। और गर्म जलवायु जहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है और पाला नहीं पड़ता है, ऐसी जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा पपीते में बहुत सारी किस्में अब विकसित की जा चुकी हैं। कुछ किस्में हैं जो कि फल के रूप में खाई जाती हैं, जैसे कि पूसा डॉर, पूसा नन्ना, पूसा जायंट, पूसा डेलीशियस। इसी प्रकार कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि पपेन उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, जैसे कि कोयम्बटूर 2, कोयम्बटूर 5, पूसा मैजेस्ट्री। कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि दोनों चीज़ों के लिए हैं, जैसे कि पूसा मैजेस्ट्री, कोयम्बटूर 6, इस तरह से। अब पपीते की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी नर्सरी डालना, क्योंकि ज़्यादातर फल वृक्षों की नर्सरी नहीं डाली जाती है, उनको दूसरी विधि से प्रसारण किया जाता है। तो इसकी नर्सरी डालने का उपयुक्त समय जो है वो जुलाई से अगस्त तक है। और 1 हेक्टेयर नर्सरी डालने के लिए हमें लगभग 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसकी नर्सरी डालने के लिए हम क्यारियों को जमीन की सतह से थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, क्योंकि पानी रुकने पर इसमें समस्या हो जाती है। और जब नर्सरी में पौधे 15-20 दिन बाद निकल आते हैं, उसके बाद उसमें 3-4 पत्तियां आ जाती हैं, तो उनको हम पॉलीथीन में या फिर बड़े क्यारियों में स्थानांतरित कर देते हैं। जुलाई अगस्त में जो पौधे तैयार किए जाते हैं नर्सरी के, उनको हम सितंबर माह में मुख्य खेत में रोपाई कर देते हैं उनकी। और इसकी रोपाई के लिए हमें 15 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, गुणाई 15 सेंटीमीटर के गड्ढे खोद लेते हैं। और इसमें खाद और उर्वरक का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पपीता जल्दी फसल देने वाली किस्म है, तो इसमें समय के साथ साथ इसको पोषण बहुत ज़रूरी है। जब हम गड्ढे को भरते हैं तब लगभग 5 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद उसमें डालनी चाहिए, 125 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फॉस्फोरस और 250 ग्राम पोटाश। इस मिश्रण को तो साथ में गड्ढे में भर देना चाहिए पौधे रोपने के 2-3 दिन पहले। उसके अलावा 3 से 4 बार हम 125 ग्राम नाइट्रोजन को 3 से 4 बार में इसके जीवन काल में देते हैं। इस तरह इसकी सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना इसको पानी की आवश्यकता है उतना ही ये भी ध्यान देना है कि इसमें पानी रुके नहीं। तो जाड़ों में इसकी सिंचाई हम 10 से 12 दिन के अंतराल पे तथा गर्मियों में इसकी सिंचाई हम 4 से 5 दिन के अंतराल में हमको

0: कर देनी चाहिए। पानी की कमी होने पे ये तुरंत सूख जाता है, और पानी की अधिकता होने पे अगर पानी रुका रहेगा तो फिर इसमें पदगलन की समस्या आ जाती है या सड़न की समस्या आ जाती है, जिससे कि बहुत जल्दी पूरे खेत के पौधे मर जाते हैं। कई बार क्या होता है कि सिंचाई, दो तीन सिंचाई लगातार देने पे मिट्टी की सतह कड़ी हो जाती है, तो इसलिए हम दो तीन सिंचाई के बाद हमें मिट्टी की गुड़ाई कर देनी चाहिए और उसमें निदाई कर देनी चाहिए, खरपतवार हटा देने चाहिए। पानी देते समय भी किसान भाइयों ये ध्यान रखना चाहिए कि थाला बना के हम पानी दें, इससे हमारे पानी की भी बचत होती है और पौधों के जो जड़ वाला भाग होता है उसमें सीधे पानी पहुंचता है। इसके अलावा पपीते की खेती में थोड़ा सा कीट व्याधियां जो हैं उन पे ध्यान देना जरूरी है। तो वैसे कीट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, इसमें लाल मक्खी, माहू या फिर कभी कभी इसके जड़ों में निमेटोड की समस्या पाई जाती है। तो इन सब के लिए हम कोई भी फफूंदी नाशक या फिर वैज्ञानिक सलाह लेकर इसमें दवाई का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही, नमस्कार।
1: कृषि चर्चा में प्रिया अवस्थी आपको ये जानकारी दे रही थी। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण अंतराल की बात।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1900

0: 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोनताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेव ओटीटी पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। लीजिए एक नजर डालते हैं आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल के आज के आकर्षण हैं। मिशन लाइफ के संबंध में जानकारी देंगे रविंद्र पारे, राज्य सलाहकार जल मिशन, जल जीवन मिशन। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण से जुड़ी बातचीत श्रीमती संगीता दानी, मुख्य रसायनज्ञ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल से। और भारत भवन में शुरू होने जा रहे नृत्य समारोह भावानुभाव के संबंध में चर्चा श्री प्रेम शंकर शुक्ला, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भारत भवन से की है हमारी प्रतिनिधि हमीदा कुरैशी ने। सुबह 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा सुरमई सवेरा। इसमें कुछ बातें सुनेंगे और कुछ गीत भी आप सुनेंगे। 9:15 पर गांधी चर्चा होगा। फिल्म संगीत 9:30। जिले की चिट्ठी रोज की तरह सुबह 10:00। सुबह 10:05 पर कार्यक्रम होगा महिला संसार। इसमें आज आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में पंडित रामस्वरूप रतोनिया का तबला वादन आप सुन सकेंगे। सुबह 11:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 आपकी फरमाइश, 12:30 संग्रहालय से सिसकियों का भाग 10 आपको सुनवाया जाएगा।

दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये चारों ही कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत, 2:30 आपकी फरमाइश का आनंद लिया जा सकेगा। शाम की सभा में फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 5:33 पर, 6:30, 8:35 पर और 9:45 पर।

शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से सुनिएगा ग्राम सभा। आज सुनिएगा आपकी पाती, आपके फिल्मी गीत, आपकी फरमाइश पर ये कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष महिला सशक्तिकरण।

रात 9:30 बजे खेल जगत होगा। इसमें सुनिएगा नावेद इशरत की वार्ता फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026। रात 10 बजे आपकी फरमाइश होगा। 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित रामस्वरूप रतोनिया का तबला वादन आपको सुनाया जाएगा।

0: हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि सुबह 10:05 से आप सुनेंगे महिला संसार। इसमें सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अप...

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक आज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश, समय पर पूरा हो मेट्रो रेल परियोजनाओं का काम। और भाजपा ने प्रदेश के दो और कांग्रेस ने एक राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सबसे पहले हजीरा जाएंगे और औद्योगिक तथा अवसंरचना परियोजना की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरे का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार,

0: देश आज इंदौर के एक निजी होटल में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। ये फोरम मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये फोरम भारत और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने तथा मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा,
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: इंदौर में 9 जून से प्रारंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश शासन की कृषि विभाग के सचिव निशांत परमड़े इंदौर पहुंचे और आयोजन से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री वरवड़े ने होटल शेरिटन, मैरिट होटल और ग्रामीण हाट बाजार सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल संचालन के प्रथम चरण के कार्य पूरा होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों के कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में भोपाल और इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रमुख व्यावसायिक केंद्र इंदौर में मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। दोनों नगरों की मेट्रो रेल परियोजना के सभी चरणों के संपूर्ण कार्यों में तेजी से पूरा किया जा रहा है। समग्र प्रगति की दृष्टि से दोनों परियोजनाओं के 2/3 कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। इन सीटों के लिए नामांकन जमा करने की तिथि 8 जून है। जरूरी हुआ तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल लोकभवन में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुष विभाग के साथ चर्चा करते हुए विश्व सिकलसेल दिवस के तारतम्य में सिकलसेल उन्मूलन गतिविधियों को सघनता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उक्त पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 के लिए दिए जाएंगे। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और नाम संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। इस सुविधा का लाभ लेते हुए कुल

8,317 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इन सभी आवेदनों पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। आगर मालवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान चलाया जाएगा। डिंडौरी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इंदौर में शासकीय सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम में खुड़ैल तहसील के ग्राम गारी पिपलिया में देव धर्मराज मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सिंगरौली कलेक्टर की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पंचायत विभाग और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पंचायत विभाग और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेव ओटीटी पर प्रस्तुत है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: नमस्कार भोपाल सुन रहे सभी दोस्त, स्वीकार करें आपके अपने दोस्त हमीदा का प्यार भरा आदाब नमस्कार।

आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 5 जून है और 5 जून जाना जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, अच्छे वातावरण के रूप में और अच्छे मौसम के लिए।

दोस्तों, आशिकाना मौसम, स्वच्छ जल, निर्मल हवा, हरे भरे वृक्ष और जैव विविधता ही हमारे जीवन की आधारशिला है। लेकिन बढ़ता प्रदूषण, वृक्षों की कटाई, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन आज हमारे सामने गंभीर चुनौतियां बनकर खड़े हैं। दोस्तों, विश्व पर्यटन ये जो दिवस है, ये हमें बताता है कि यदि हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य देना है, तो हमें अभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। छोटे छोटे प्रयास जैसे पेड़ लगाना, जल की बचत करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और स्वच्छता बनाए रखना ही बड़ा बदलाव ला सकता है। और दोस्तों, ये जो आज का दिवस है, ये हमें यही संदेश देता है। और ये बदलाव हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण रहित धरती पर अपनी स्वास्थ्य शैली विकसित कर सकेगा और स्वच्छ स्वस्थ पर्यावरण के लिए उन्मुक्त होकर हम गा सकते हैं और साथ ही गुनगुना भी सकते हैं।

स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को दर्शाते इस गीत के बाद आपको बता दें कि वक्त हुआ है सुबह के 7:28 और अब हम आपको देने जा रहे हैं समाचार पत्रों से खास खास खबरें।

सबसे पहले मौसम से आपको जुड़ी खबर दे दें कि 3 दिन से देश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार को केरल में दस्तक दे दी है और ये वहाँ झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार तक गोवा, तमिलनाडु तथा साथ ही कर्नाटक दक्षिण हिस्से तक पहुँच सकता है। वहीं भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान किया है कि मध्य प्रदेश में मानसून 15 से 20 जून के बीच सक्रिय हो सकता है।

किशोर दा के एकल गीतों की संगीतमय शाम होने जा रही है। स्वर सम्राट किशोर कुमार के एकल गीतों को समर्पित संगीतमय संध्या सिर्फ किशोर दा का आयोजन शुक्रवार को आज यानी शाम 6 बजे पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इसमें किशोर दा के सुपरहिट एकल गीतों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

करने के उद्देश्य से नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बच्चों को खेल संवाद और प्रेरक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तित्व विकास एवं प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है शिविर के माध्यम से।

विश्व पर्यावरण दिवस पर जब आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के उपायों पर चर्चा कर रही है, तब भारतीय रेल की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन विशेष महत्व हासिल करने जा रही है। जिंद सोनीपत रेल खंड पर ये शुरू होने जा रही है ट्रेन स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित भविष्य की संभावनाएं दिखाती है। दोस्तों, आज का दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी केवल हमारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी की भी है। धरती की हरियाली, पक्षियों की चहचहाट, नदियों की कलकल, ध्वनि और शुद्ध हवा का एहसास, यही तो है हमारी प्रकृति की सबसे खूबसूरत पहचान। स्वच्छ, स्वस्था और खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा पेश करता ये गीत आपकी नज़र।

0: मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। दोस्तों, मनुष्य के रहने की सभी साधन प्रकृति से ही मिलते हैं और वही प्रकृति आज विनाश के कगार पर खड़ी है। क्या कारण है इसके विनाश के और इससे कैसे बच सकते हैं, यही बताने के लिए हमारे साथ में हैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रसायनिज्ञ श्रीमती संगीता दानी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखा और बहुत ही सुंदर पहल अपनाया है लोगों को जन जागरूक करने के लिए।
2: जानना चाहेंगे आज के दिवस के बारे में आपके विचार।
1: देखिए, आज 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस हम हर साल मनाते हैं और यह जो दिवस है, समझ लीजिए आज के परिवेश में देखा जाए तो एक उत्सव के रूप में हमें मनाना चाहिए और हम मनाते हैं। चूंकि मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हूँ तो हमारा ये जो कार्यक्रम है पर्यावरण के प्रति, एक महीने पहले से ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं कि हम लोगों को कैसे इसको जन जागरूक कर सकें। 15 जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके माध्यम से लोगों को जन जागरूक करते हैं। जल, वायु, ध्वनि, वाहन, इन सब के प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या मतलब अधिक से अधिक कदम उठा सकते हैं। अभी जैसे कि जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है हम लोगों का, तो जल गंगा संवर्धन अभियान में भी लोगों को हम अवेयर करते हैं। जैसे नदी के घाट हैं, लोग नहाने जाते हैं, वहाँ हम लोग जन जागरूक करते हैं कि भाई आप ऐसी कोई भी चीज जल में विसर्जित ना करिए। जैसे नर्मदा नदी है, वो हमारी जीवन दायिनी है, माँ के रूप में हम उन्हें पूजते हैं, तो कम से कम हम भी, हमको बचाना है इन सब धरोहर को, जो हमारी धरती की ये सब अमूल्य धरोहर है, इनका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। यदि ये खत्म हुए तो इसको बचाने की जिम्मेदारी हम मनुष्यों की है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रबुद्ध हम ही लोग हैं और हम ही लोग उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, उस चीज को प्रदूषण में अग्रसर रहते हैं, फिर इस प्रदूषण को रोकने के लिए इतने तमाम उपाय करते हैं कि फिर से वो प्रदूषण होने लगता है। जैसे पैम्पलेट, बैनर, तो फिर उन सब चीजों के कचरे फिर से जनरेट हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगी, जैसे आप मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, आम जनता में सरल भाषा में लोगों को समझाएं कि जैसे घाटों पे जाते हैं वहाँ पे साबुन का उपयोग ना करें। फूल माला हैं, इनको, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, घर की मिट्टी में ही दबा दें, गमले में दबा दें, जिससे वो खाद भी बन जाए और उनका उपयोग भी, सदुपयोग भी सही तरीके से हो जाए। जैसे नदियों में दीप प्रवाहित करते हैं, मेरी मतलब हाथ जोड़ के अपील है कि लोग इस चीज को समझें और मां नर्मदा को बचाएं।
2: प्रदूषण के कितने कारण होते हैं और आम जन उससे जुड़कर उसे कैसे दूर कर सकता है?
1: जैसा कि विदित है, हम पुराने समय से हम पढ़ते आ रहे हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वाहन प्रदूषण, ये प्रदूषण तो मुख्य रूप से हैं। और जैसे हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में है तो औद्योगिक क्षेत्र हमारे अंतर्गत आते हैं और बड़े बड़े उद्योग हैं, बिल्कुल भी उनको जीरो डिस्चार्ज रखने को कहा जाता है। सिंगल ड्रॉप भी इंडस्ट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, प्राकृतिक स्रोत में नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए जो उद्योग है वो ईटीपी, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाता है, जो भी प्रदूषित पानी होता है उसको ट्रीट करके या तो वो पुनः उपयोग करता है, रिसाइकलिंग करता है, या प्लांटेशन में यूज करता है। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। वाहन प्रदूषण है जैसे, तो वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा आप हॉर्न नहीं बजाएं, नए वाहन उपयोग करें। जैसा कि नियम में आ गया है कि 15 साल के पुराने वाहनों को उपयोग नहीं करना है। इसी तरीके से जो है ध्वनि प्रदूषण है, उच्च ध्वनि वाले संगीत मत सुनिए, हॉर्न मत बजाइए, जिससे जानवर और ये भी प्रभावित होते हैं। दीपावली के समय जैसे बहुत फटाके मत फोड़िए, इससे बेचारी चिड़िया जो है, चिड़िया, कुत्ते, जानवर कई बार मर जाते हैं, वो डेसिबल में उनको नापा जाता है ध्वनि को। ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमको ध्यान में रखना है। अन्यत्र ही कहीं कचरा नहीं फेंकिए, प्लास्टिक का उपयोग ना करिए। जैसे 19 प्रकार के प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक, वो बैन किया हुआ है मोदी जी ने। ईयरबड आपको लेना है तो आप जो लकड़ी वाले आते हैं वो ईयरबड यूज करिए, प्लास्टिक वाले ईयरबड नहीं यूज करिए। बैलून के

0: जो है उसमें लकड़ी वाले जो डंडियाँ आती हैं वो यूज़ करिए, और निश्चित रूप से प्लास्टिक के चम्मच, फोर्क, कटलरी, जो मिठाई के डब्बों में प्लास्टिक, तो इसको ना कहें। मतलब अपने विवेक, स्वविवेक से ही आप डिसाइड करिए आप कि मेरे को इसको नहीं लेना है, नहीं खरीदना है या घर पे नहीं लाना है।
1: तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों से?
0: मैं सुनने वालों से बहुत ही करबद्ध हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगी कि धरती को बचाना, पर्यावरण को बचाना हमारा प्रथम दायित्व होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए, और मतलब इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि हम अपने जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम स्वर्ग से सुंदर धरती सौंप कर जाएं, ताकि वो अपने पूर्वजों को याद रख सके, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जल बचाएं, जल का उपयोग बहुत कम करें। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को आप अपना कर दैनिक जीवन में अपनाएं और पर्यावरण को बचाएं, प्रदूषण मुक्त करें। थैंक यू, धन्यवाद।
2: दोस्तों, पर्यावरण दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हम लाएं। पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण बता रही थी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की श्रीमती संगीता दानी, और कुछ ही देर में आपको सुनवाएंगे लाइफ मिशन से जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारियां। फिलहाल तो हम दोस्तों ये कहेंगे कि छोटे छोटे टिप्स अपनाकर हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकता है, जैसे सिग्नल पर गाड़ी बंद करना, समय समय पर गाड़ी की सर्विसिंग करवाना, पानी और बिजली की बचत करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। यदि छोटी छोटी बातों को ख्याल रखें तो पर्यावरण को दूषित होने से हम बचा सकते हैं। दोस्तों, पर्यावरण स्वच्छ स्वस्थ तो हम भी स्वच्छ और स्वस्थ, दिल भी खुश। और दोस्तों, जब दिल खुश होता है तो हर चीज़ भाती है, हर नज़ारा खूबसूरत लगता है।

0: झूमता गाता नमस्कार भोपाल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। दोस्तों, बात करें लाइफ मिशन की। ये भारत के नेतृत्व में चलाया जा रहा एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने एवं उपयोग करो और फेंको की संस्कृति को छोड़कर पर्यावरण के अनुकूल दैनिक आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस मिशन के बारे में बता रहे हैं श्री रविंद्र पारे, राज्य सलाहकार जल जीवन मिशन।
1: नमस्ते, मेरा नाम रविंद्र पारे है और मैं जल जीवन मिशन में राज्य सलाहकार तौर पे काम कर रहा हूँ। तो मिशन लाइफ के बारे में, जैसा हम जानते हैं कि मिशन लाइफ मतलब कि जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको मिशन मोड पे किस तरह ठीक करें ताकि हमारी प्रकृति, हमारा एनवायरनमेंट को किसी तरह का हानि ना हो। चूंकि हम समय समय पे अपने आदतों के कारण हमारी प्रकृति को या जो हमें नेचुरल चीजें मिली हैं इस समय उसको हम नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हम अपनी आदतों में ऐसे लेके आए कि हम उसमें कोई हमें हम उसको अपनी आदतों से उसको ठीक रखें, हमेशा सस्टेन रखें।
2: तो सर, उद्देश्य क्या है इसका?
1: इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि पर्यावरण की रक्षा हम लोग कैसे करें। लोगों की लापरवाही जो रहती है, समय समय पे हम देखते हैं कचरा फेंक देना या पानी का दुरुपयोग करना, ये सब ऐसी लापरवाही है जो कि हम दैनिक तौर पे करते हैं, जिससे कई तरह के घाटे इस प्रकृति पे पड़ रहे हैं। उसको हम किस तरह से इस पर्यावरण को अनुकूल बनाए, ये हमारा इससे मुख्य उद्देश्य है। इस तरह हर इंसान, हर छोटे से छोटे तबके तक हम बात पहुंचाना चाहते हैं कि अपनी छोटी छोटी आदतों को अगर बदल देंगे तो प्रकृति आपको हमेशा अच्छा ही देगी।
2: सर, जानना चाहेंगे कि मिशन लाइफ किस त्रिस्तरीय नीति पर काम करता है?
1: मिशन लाइफ तीन तरह के चीजों में काम कर रहा है इस समय। किस तरह हम पृथ्वी से जो एनर्जी है उसको हम कैसे बचत कर सकें, पानी को हम कैसे बचाएं, एवं नागरिक जो रहते हैं हमारी धरती के उनको किस तरह से प्रो प्लानेट पीपल बनाएं, मतलब प्लानेट के हिसाब से वो अपने, ना कि वो अपने हिसाब से प्लानेट को चलाएं, प्लानेट कैसा चाहता चलना उस तरह से हम उस पे उसको हम बनाएं।
2: सर, इस मिशन का नोडल मंत्रालय कौन सा है?
1: इस मिशन का राज्य स्तर पे मध्य प्रदेश में नोडल विभाग पर्यावरण विभाग है।
2: और इस मिशन के अंतर्गत 75 व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों को 7 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जानना चाहेंगे वो मुख्य 7 श्रेणियां कौन सी हैं?
1: उसमें मुख्य श्रेणियां सबसे पहले है ऊर्जा की बचत करना। हमारे घर में हम देखते हैं कि बिजली की बहुत ज्यादा खपत होती है, बिल्कुल ऐसे संसाधनों में उपयोग करें जिससे की बचत हो। दूसरा है जल की बचत करना। हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी इस देश की या इस धरती के पानी, क्योंकि जब तक मिल रहा है पानी हम उसको उपयोग करते हैं, लेकिन अब जब नहीं मिलेगा तो हमें ज्यादा परेशानी रहेगी। इसलिए पहले से उसकी बचत करना चालू करें, हम पानी को ज्यादा से ज्यादा रोकें, वर्षा जल संचयन लगाएं घर में, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करें। तीसरा है सिंगल यूज प्लास्टिक, जो कि समय समय पर हमारे प्रधानमंत्री जी इसके बारे में बात भी करते रहते हैं। चौथा है टिकाऊ खाद्य प्रणाली, मतलब ऐसे हम अनाजों का उपयोग करें जिसमें पानी कम लगता है या भोजन की बर्बादी नहीं होती है। कचरा कम करना, जो सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करना या उसको कम करना। और स्वास्थ्य जीवन शैली, मतलब हमें अपने समय समय पर साइकिल चलाना या प्रकृति से जुड़ना, ऐसे काम करना। और आखिरी है ई कचरा कम करना। हमारे मोबाइल लैपटॉप को जितना कम उपयोग करेंगे उतना ज्यादा ई कचरा होगा। ये 7 मुख्य घटक हैं इसके।
2: तो सर, व्यक्तिगत रूप से आम जन इसमें कैसे सहभागिता कर सकते हैं?
1: इसमें बहुत आसान है। अगर इसमें मैं या आप या कोई भी इंसान इसमें जुड़ना चाहता है तो सबसे पहले अपनी स्वयं की आदतें बदले, जिसमें मुख्य तौर पे बिजली, पानी और खाने, ये 5-6 चीजें आती हैं, जिसमें हम अगर लेके चलते हैं कि हमें पानी की बचत करना है घर में, बिजली का कम खपत लेना है या खाना उतना ही खाना है जितनी हमारी उपयोगिता है, समय समय पे प्रकृति के साथ जुड़ना है। और सबसे अहम कड़ी है कि हमें हर आदमी को कम से कम 5 से 10 पेड़ लगाना है। ये उद्देश्य लेके चलें कि इस तरह से हम चलेंगे तो हमारा पर्यावरण हमेशा अनुकूल रहेगा।
2: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे सुनने वालों को दी। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मेरा एक, चूंकि मैं पर्यावरण के सबसे मुख्य घटक पानी से जुड़ा हूँ, हम हर गांव में, हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन समय समय पे मैं भी जब गांव में जाके देखता हूँ तो उस पानी की उपयोग कम होता है, बर्बादी ज़्यादा होता है। तो हम जानते हैं कि एक पानी जो है इस धरती पर एक ग्लास की तरह है, जितना हम खाली करते हैं उतना ग्लास खाली होता जाएगा। यदि हम उसको भरते रहेंगे तो हमारे पानी अधिक से अधिक समय उपयोग होगा। तो इसलिए सबसे मुख्य चीज़ें पानी की बचत करें। और अभी आने वाली मानसून में जो बारिश होगी उसमें अधिक से अधिक पानी को रिचार्ज करने धरती के अंदर, ताकि वो हमेशा हमें उपलब्ध हो। धन्यवाद।
0: लाइफ मिशन के बारे में हमें बता रहे थे जल जीवन मिशन के

राज्य सलाहकार श्री रविन्द्र पारे। सच कहा रविन्द्र जी ने कि आने वाली मानसून में बारिश के पानी को सहजें। दोस्तों, मानसून आता है, खुशियां लाता है। बरखा की बौछारें जब तन मन पर पड़ती हैं तो दिल झूम उठता है, गा उठता है। पूछते थे कितना प्यार है तुम्हें हमसे, पूछते थे कितना प्यार है तुम्हें हमसे, लो गिन लो बरखा की ये बूंदें।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। वक्त हुआ सुबह के 7:53। दोस्तों अब बात करते हैं शहर में होने वाले आयोजन की। भारत भवन में आज से 3 दिवसीय नृत्य समारोह भावानुभाव आरंभ होने जा रहा है, जिसके बारे में हमें बता रहे हैं श्री प्रेम शंकर शुक्ल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भारत भवन भोपाल।
1: यह एक नृत्य समारोह है। भारत भवन पिछले 10-15 वर्षों से भावानुभाव नृत्य समारोह आयोजित करता है, जिसमें हमारे देश की वरिष्ठ युवा नर्तक और नृत्यांगना भागीदारी करती रही हैं। बहुत सुस्थापित कार्यक्रम श्रृंखला है। इस पूरे समारोह का जो शुभारंभ होगा, युवा कलाकार हैं जयपुर घराने के कलाकार करण गंगानी, उनके कथक नृत्य से इसको हम लोग शुभारम्भ कर रहे हैं। पूरा समारोह कृष्ण की भक्ति आप कह सकते हैं, या जो कृष्ण का वांग्मय है, भक्तिपद है, उस पर केंद्रित 3 दिन का समारोह है। आज से शुरू हो रहा है, रविवार 7 जून को संपन्न होगा।
2: तो सर कहाँ कहाँ से कलाकार इसमें शिरकत करने आ रहे हैं?
1: इसमें दिल्ली के कलाकार हैं, मंजरी जोशी जी हैं, उनके कार्यक्रम से ये संपन्न होगा। करण गंगानी जी हैं जयपुर घराने के। एक मुंबई के कलाकार हैं, कृत्य नाम है उनका, ओडिसी के कलाकार हैं। मूलतः वो लोग पहले, उनका नेटिव प्लेस नेपाल रहा है, लेकिन अब नेपाल से भारत में ही इस समय निवास कर रहे हैं। और 2 कलाकार मध्य प्रदेश के ही हैं, भोपाल में रह रही हैं, श्वेता देवेंद्र और क्षमा मालवी। श्वेता का भरतनाट्यम में कृष्ण आधारित नृत्य रहेगा और क्षमा का कथक आधारित कृष्ण परी

0: केंद्रित नृत्य होगा।
1: तो सर उद्देश्य क्या है इस आयोजन का?
0: इसमें जो हमारे नृत्य रूप हैं, भारत के नृत्य रूप हैं, आप देखेंगे कि जो दक्षिण है उत्तर है, उत्तर में खास तौर पर कथक है, दक्षिण में भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, ये सब उधर के नृत्य रूप हैं। उड़ीसा का है ओडिसी है, तो और यहाँ तक कि मणिपुर का है मणिपुरी नृत्य है। हम चाहते भी थे इसमें कि मणिपुरी राज को शामिल करें, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो आप पाएंगे कि भारत का जो सांस्कृतिक वैभव है उसमें नृत्यों का बहुत बड़ा योगदान है। इस समारोह में हम लोगों ने हमारे चरित नायक हैं, भारत के जो महान नायक हैं, हम अपनी आध्यात्मिक चेतना में जिन्हें ईश्वर कहते हैं, हमारे आराध्य हैं श्री कृष्ण, उनको लेकर ये पूरा इस बार का फेस्टिवल हम लोगों ने संयोजित किया है। नृत्यों का जहाँ तक आपने पूछा, तो नृत्य में हमारी संस्कृति की आत्मा है, हमारी आध्यात्मिक चेतना उसमें उद्घाटित होती दिखती है, इसलिए हम लोगों ने भारत भवन में इसको आयोजित किया है।
1: धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी। इस समय आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से तमाम श्रोता आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: यही कहना चाहते हैं कि हमेशा की तरह भारत भवन के कार्यक्रमों में आते रहे हैं दर्शक श्रोता, तो आए, ये जो 3 दिन का नृत्य समारोह है उसका आनंद लें, अपनी आध्यात्मिक चेतना को यहाँ सजीव होते पाए। भारत भवन सबका सम्मान करता है और निःशुल्क आयोजन है, किसी तरह का शुल्क नहीं है। प्रतिदिन शाम को 7 बजे से आरम्भ होगा कार्यक्रम, सब लोग आए। आकाशवाणी के लिए आभार, हमारा यह पूरा समारोह हमेशा से आकाशवाणी सुदूर अंचलों में पहुंचाता है। मैं आकाशवाणी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं और दर्शकों को पुनः सादर आमंत्रित करता हूं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत के लिए।
0: धन्यवाद आपको भी।
2: भारत भवन में आज से शुरू होने जा रहे भावानुभाव आयोजन के बारे में हमें जानकारी दे रहे थे भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री प्रेम शंकर शुक्ल। दोस्तों, भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा में नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावों, विचारों और आध्यात्मिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। जब घुंघरुओं की मधुर झनकार ताल से मिलती है, जब कदमों की आहट गूंजती है और जब भाव चेहरे पर आते हैं, तब हमारे भारतीय नृत्य नृत्य नहीं रह जाते बल्कि एक जीवंत कहानी बन जाते हैं।

0: और दोस्तों धीरे धीरे धीरे धीरे हम उस मुकाम पर आ पहुँचें जहाँ हमें आपसे विदा लेनी पड़ती है। तो इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे नमस्कार भोपाल। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में दिल्ली से।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
4: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
4: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने

0: आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी

0: पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया

पर विश्वास करना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब बच्चे को यह भरोसा होता है कि उसकी माँ उसके साथ है, उसे डर नहीं लगता, वह निश्चिंत रहता है। ठीक वैसे ही जब हमें विश्वास होता है कि दिव्य शक्ति हमारे साथ है, हमें संभाल रही है और हमारा मार्गदर्शन कर रही है, तो हमारे अंदर साहस और शांति का उद्गम हो जाता है और हम निश्चिंत फिक्र हो जाते हैं।

दोस्तों, आज हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। तो दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि वो भारत की पीढ़ी जो हम सबको बहुत डांटती थी, कहती थी नल धीरे खोलो पानी बदला लेता है, अन्न नाली में ना जाए, नाली का कीड़ा बनोगे, सुबह सुबह तुलसी पर जल चढ़ाओ, बरगद पूजो, पीपल पूजो, आंवला पूजो, मुंडेर पर चिड़िया के लिए पानी रखा कि नहीं, हरी सब्जी के छिलके गाय के लिए अलग बाल्टी में डालो, अरे कांच टूट गया है उसे अलग रखना, कूड़े की बाल्टी में न डालना, कोई जानवर मुँह न मार दे, ये हरे छिलके कूड़े में किसने डाले। यह पीढ़ी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर पर्यावरण की चिंता करती थी, क्योंकि वह शास्त्रों की श्रुति परंपरा की शिष्य थी। हम चार किताबें पढ़कर उस पीढ़ी की आस्थाओं को छोड़ते जा रहे हैं, और धरती को किस कगार पर हम ले आए हमें सोचना होगा। क्या हमारा नीला आकाश, वो जो गगन, हमें ऐसे ही मिला था जैसे हमने उसको कर दिया है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। मैं हूं आपके साथ साधना और आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। दोस्तों प्रकृति के कण कण में संगीत है और सीख है। प्रकृति की एक बहुत ही सुंदर सीख है कि जो जमीन से निकलता है वह ऊपर की तरफ उठता है, चाहे वह वनस्पति हो, मकान हो, व्यक्ति हो, और जो आसमान से निकलता है वह निश्चित रूप से नीचे ही गिरता है, चाहे बारिश हो, बर्फ हो या कोई वस्तु हो। इसका भाव यह है, ऊंचा उठने की पहली शर्त धरातल से जुड़े रहना है। जिसकी जड़ें नहीं होती वह खड़े नहीं रह सकते हैं। तो हमें प्रकृति के इस सीख को मानते हुए अपने जीवन में सुधार भी करना है और हमें इस जगत को, इस पर्यावरण को सुंदर भी बनाना है।

दोस्तों, ज़िंदगी का सफ़र मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज़ है। न कल में था न कल में है, जीवन मात्र इसी पल में है। ज़िंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, हमारी अनमोल ज़िंदगी भी जाती है।

दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस पर हकीकत कुछ और है। हम पेड़ काट रहे हैं और नया पौधा जो कि हम नर्सरी से लाकर लगा देते हैं, लेकिन उसकी देखभाल हम कितनी करते हैं, ये हमें सोचना होगा। और सोचना होगा कि हमारे जो नदियाँ, नाले और जो पर्वत गंदे हो रहे हैं,

0: अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। इसका शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे इस घंटे की खास खबरों के बाद। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार निवेश फोरम की बैठक कल इंदौर में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल और इंदौर के मेट्रो रेल परियोजनाओं से जुड़े कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल समीक्षा बैठक में कहा कि मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का सहयोग लिया जाए। प्रदेश के 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम 2.2 अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का शेष भाग। दोस्तों, धरती पर हमें कैमरे की फ्लैशलाइट से नहीं, उस मरते हुए पौधे की जिम्मेदारी उठाने से बचाना होगा। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ हम सभी कहते हैं और हमें लगाना भी चाहिए, लेकिन एक मुहिम ये भी है कि पेड़ को बचाने की बातें

भी हमें करना होगी, क्योंकि इस प्रकृति के बाद इस प्रकृति के यदि सही नहीं रही तो हम सभी का जीवन जीवन खतरे में, क्या मुझे तो लगता है जीवन ही नहीं बचेगा। तो बहुत सुंदर जीवन बचाने के लिए हमें प्रकृति का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, हम सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। तो दोस्तों, हम यदि खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को भी खुशी बांटना होगी और हमारे आसपास कुछ ऐसा गढ़ना होगा जो हमें भी खुश रखे और दूसरों को भी खुशी बांटे, और पल पल हम खुश होते रहें और दूसरे भी।

दोस्तों कहते हैं कि पानी और रिश्ते एक जैसे ही होते हैं, इनका रंग ना होता है और ना रूप होता है, फिर भी जीने के लिए ये बेहद ज़रूरी होते हैं।

इसी गीत के साथ आज्ञा दीजिए साधना जैन को सुरमई सवेरा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम समाप्त करने की। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।

सत्याग्रह ऐसा बल है जिसका प्रयोग व्यक्ति भी कर सकते हैं और समुदाय भी। इसका प्रयोग जितना अच्छी तरह राजनीतिक मामलों में किया जा सकता है, उतनी ही अच्छी तरह घरेलू मामलों में भी किया जा सकता है। इसकी सार्वभौम प्रयोज्यता इसके स्थायित्व और अपराजेयता का प्रमाण है। इसका प्रयोग पुरुष, स्त्री, बच्चे सभी समान रूप से कर सकते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये एक ऐसा बल है जिसका प्रयोग दुर्बल लोग उस समय तक कर सकते हैं जब तक कि वे हिंसा का जवाब हिंसा से देने में समर्थ न हो जाएं। सत्याग्रह का बल तो हिंसा, सभी प्रकार की क्रूरता और सभी प्रकार के अन्याय को इस तरह मिटा देता है जैसे अंधकार को प्रकाश। राजनीति में इसका प्रयोग इस अटल सिद्धांत पर आधारित है कि किन्हीं लोगों पर शासन करना तभी तक संभव है जब तक कि वे जाने अथवा अनजाने अपने ऊपर शासन किए जाने के लिए सहमत हैं। मैंने कभी मौलिक सत्याग्रही होने का दावा नहीं किया है। मेरा दावा तो सिर्फ ये है कि सत्याग्रह के सिद्धांत का प्रयोग प्रायः सार्वभौम पैमाने पर किया जा सकता है, किंतु अभी ये देखना और प्रदर्शित करना बाकी है कि क्या ये ऐसा सिद्धांत है जिसे सभी युगों और प्रदेशों के हजारों लाखों लोग आत्मसात कर सकते हैं। सत्याग्रह सार्वभौम प्रयुक्ति का नियम है। परिवार से आरंभ करके इसका विस्तार प्रत्येक क्षेत्र तक किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई जमींदार अपने काश्तकारों का शोषण करता है और उनकी मेहनत के फल से उनको वंचित करके उसे अपने इस्तेमाल में लाता है। काश्तकारों के सविनय विरोध करने पर भी वो उनकी बात नहीं सुनता और आपत्ति करते हुए कहता है कि उसे इतना पैसा अपनी पत्नी के लिए चाहिए, इतना पैसा बच्चों के लिए चाहिए आदि आदि। काश्तकार अथवा उनकी ओर से पैरवी करने वाले ऐसे लोग जिनका कुछ प्रभाव है, उसकी पत्नी से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने पति से बात करे। पत्नी संभवतः कहेगी कि उसे पति द्वारा शोषित धन की अपने लिए आवश्यकता नहीं है। बच्चे भी शायद ऐसा ही कहें कि उन्हें जरूरत होगी तो वे खुद अपनी कमाई कर लेंगे। ये भी मान लीजिए कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है या उसकी पत्नी और बच्चे भी काश्तकारों की खिलाफत करने के लिए एकजुट हो जाते हैं तो काश्तकार उनके सामने झुकेंगे नहीं। अगर जमींदार उन्हें निकालना चाहेगा तो वे निकल जाएंगे, लेकिन वे साफ तौर पर यह बात कह देंगे कि जमीन उसी की है जो उसे जोतता है। जमींदार चूंकि सारी जमीन खुद नहीं जोत सकता, इसलिए उसे काश्तकारों की जायज मांगें माननी ही होंगी। लेकिन हो सकता है कि जमींदार उन काश्तकारों को निकालकर दूसरे काश्तकार रख ले। ऐसी सूरत में अहिंसक आंदोलन छेड़ा जाएगा जो तब तक जारी रहेगा जब तक नए काश्तकार अपनी गलती न मान लें और पहले वाले काश्तकारों के साथ आंदोलन में सम्मिलित न हो जाएं। इस प्रकार सत्याग्रह जनमत को शिक्षित करने की एक प्रक्रिया है जो समाज के सभी तत्वों को अपने में समाहित करती है और अंततः अदम्य बन जाती है। हिंसा इस प्रक्रिया में विघ्न उपस्थित करती है और समूचे सामाजिक ढांचे की सच्ची क्रांति को लंबा कर देती है। गांधी चर्चा में ये था आज का प्रसंग और अब प्रस्तुत है भजन।

0: अनुराग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, लीजिए एक सूचना आपको दे दें। आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना है। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेनर क्रिएटर को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिंग आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों पर समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों पर समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल भोपाल@ प्रसार भारती.gov.in

इन एवं hopyearbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हर दिल जो प्यार करेगा, पिंकी प्रीति और प्रशांत की आवाज़ है। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत। लीजिए अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं दिलवाले फिल्म से, कुमार सानू, अगला अलका याग्निक, अजय देवंग की आवाज़ है। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं दिल्ली का ठग। इस फिल्म में किशोर कुमार को गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है रवि का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: चले आते हैं
1: मेरी जूती से
0: जूता पॉलिश करेगा आह जूता पॉलिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो

0: दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा, लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तुम

0: बताओ हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा छप छप छप छप छप छप छप डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना आज हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना आज हम तो मोहब्बत करेगा।
2: और लीजिए तारे जमी पर, इस फिल्म में आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन को। गीत लिखा है प्रसून जोशी ने, संगीत है शंकर एहसान लायका।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से फिल्म संकेत। अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं तनु वेड्स मनु फिल्म से। कृष्णा की आवाज़ है, राज शेखर ने इसको गीत को लिखा है और कृष्णा ने संगीत दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म में संगीत। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी, आलेख हीरा लाल लोंगरे, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने निमाड़ंचल को बड़ी सौगात देते हुए 4,415 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत एनएच 347 पी के हिवारखेड़ी रोशनी आशापुर रूधी मार्ग को टू लेन और देशगांव जुलवानिया मार्ग को फोर लेन में अपग्रेड किया जाएगा। परियोजना से खंडवा बैतूल खरगोन बड़वानी जिलों में यातायात सुगम होगा, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने हाल ही में वनग्राम आवलिया में वन विभाग और एलएनटी कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

0: कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व कालीभीत परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र सिंह अचालिया ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले अधिक से अधिक युवा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। युवा कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्रों के 18 से 35 साल के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉ. शाह ने कहा कि सरकार युवाओं को और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम खंडवा ने 20,490 कंटूर ट्रेंच बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जिले ने ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कर देश में 5वां स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे खालवा और खंडवा में मानवाधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे तथा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। खंडवा में आयोजित जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों को उर्वरक वितरण के ई टोकन सिस्टम की जानकारी देने और पेयजल योजनाओं के बेहतर संचालन पर विशेष जोर दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने गत दिनों खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रुपए लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। इस परियोजना से 160 आदिवासी महिलाओं को मछली पालन, पशुपालन, बतख पालन और फल सब्जी उत्पादन के माध्यम से रोजगार मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से खरीफ फसलों की बुआई के लिए प्रमाणित और गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग करने की अपील की है। विभाग द्वारा खाद और बीज की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है और नमूनों की जाँच भी कराई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिले भर में मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों और नगरीय निकायों में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। खंडवा में सिंहस्थ 2028 के तैयारियों के तहत पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अगम जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारेगण की उपस्थिति में 60 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रथम बैच को भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में किसानों को जैविक प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य सुधार और कृषि आधारित उद्यमिता की जानकारी दी गई है। वहीं श्रम विभाग ने असंगठित श्रमिकों से 13 जून तक अनिवार्य रूप से ई केवाईसी पूरी कराने की अपील की है। उधर पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर माणिक के स्मारक वाचनालय में संगोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। खंडवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर निगम द्वारा झीलोद्यान और नमो वन क्षेत्र में विशेष वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा तैयार सीड बॉल के उपयोग की भी तैयारी की जा रही है। मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए मध्य प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मत्स्य खेत पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आपने सुनी खंडवा जिले की चिट्ठी, आलेख हीरालाल लोंगरे का, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला संसार।

नमस्कार सखियों, आप सुन रही हैं कार्यक्रम महिला संसार और मैं हूं आपकी रेडियो सखी प्रेक्षा सक्सेना, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा विशेष कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। आज के इस खुशनुमा सफर में हम सुनेंगे आपके पसंदीदा मधुर गीत, साथ ही करेंगे ढेर सारी बातें। तो देर किस बात की, अभी मिलाइए हमारा नंबर 07552660902 और बताइए अपने बारे में और वह गीत जो आप सुनना चाहती हैं। आपकी आवाज़ और आपकी पसंद ही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी पहचान है। सखियों, आज

0: 5 जून है यानी कि आज वह दिन है जिसे हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाइयां। पर सखियों, आज के दिन सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आइए एक संकल्प भी लें कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। हेलो
1: मैम।
0: हेलो, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं रानू गुप्ता बोल रही हूँ, देवास से।
0: अच्छा रानू जी, आप देवास से बोल रही हैं, तो आप बताइए, आपको सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हाँ मैम, मूवी का नाम है होगी प्यार की जीत।
0: होगी प्यार की जीत मूवी का नाम।
1: उसी में एक सॉन्ग है, लाखों आशिक मर जाते हैं।
0: लाखों आशिक मर जाते हैं। तो रानू जी बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आज आपने क्या विशेष किया है पर्यावरण के लिए?
1: विशेष तो वैसे वो तो हम रोज ही करते, जैसे मेरे घर पे पौधे वगैरह लगे हुए हैं
0: जी,
1: तो जैसे उनको टाइम से देखना, मतलब उन जैसे कि पत्ते वगैरह सूख जाते हैं तो उनको हटा देते, उनमें पानी देना,
0: ये तो बहुत अच्छा करती हैं आप।
1: करते हैं,
0: बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे ही आप करते रहिए और सबको भी बताइए। और सुनिए आपका पसंदीदा गीत
1: जी। ओके नमस्ते मैम, और डेडिकेट नंदिनी को रहेगा और आप
0: जी।

0: सखियों, प्रकृति हमें स्वच्छ लगता है। कोई फोन आ रहा है, देखें कौन है उधर।
1: हेलो,
0: नमस्ते मैम। हाँ बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं सागर से।
0: सागर से क्या नाम है आपका?
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ।
0: अच्छा नंदिनी तिवारी जी, आप ये बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मूवी का नाम है कृष्णा कॉटेज।
0: कृष्णा कॉटेज
1: जी।
0: और गाना?
1: और सॉन्ग है हमेशा।
0: हमेशा सॉन्ग है हमेशा। तो ये बताइए, आज पर्यावरण दिवस पर आपने क्या विशेष किया है?
1: जी, पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें, क्योंकि पर्यावरण जो पेड़ पौधों से ही सही रहता है।
0: आपने लगाए हैं कोई पेड़ या पौधे आज?
1: जी, हम लगाते हैं, कभी कभी लगा लेते हैं।
0: अच्छा, तो कभी किसी खास दिन जैसे आपके जन्मदिन पर आप लगाती हैं क्या कोई पौधा?
1: जी बिल्कुल
0: बिल्कुल, लगाना चाहिए। अगर हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं सब अपने अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएंगे तो अच्छा रहेगा पर्यावरण के लिए। वैसे आप, अच्छी बात है कि आप घर में भी आपके पेड़ पौधे तो होंगे ही।

0: जी हमारे घर में भी है और
1: आप,
0: बाहर भी है हमारे यहाँ तो।
1: अरे वाह, तो फिर देखभाल भी आप ही करती हैं उसकी,
0: जी बिल्कुल।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। और कोई गीत सुनना चाहे तो आप कोई और गीत भी बता सकती हैं नंदिनी जी।
0: और कोई गीत फिर ना, आप मूवी का नाम है किक। जी
1: केक, मूवी का नाम है केक, और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
0: हैंगओवर। जी
1: हैंगओवर। अच्छा,
0: और
1: चलिए तो
0: डेडिकेट
1: बहुत अच्छी
0: रानू दीदी
1: बात
0: को
1: है।
0: रहेगा,
1: किसको डेडिकेटेड रहेगा?
0: रानू दीदी को जिनका फर्स्ट कॉल लगा था, और आपको, मेरे
1: ओ
0: पापा को, मेरे भाई सत्यम को।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बाकी अच्छी बात है। अभी ये बताइए आप कि आपको गाने सुनने का काफी शौक है मुझे लगता है।
0: जी, मुझे ना सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता
1: ठीक
0: है,
1: है, तो फिर
0: न्यू
1: इसी
0: ना
1: बात पर,
0: न्यू सॉन्ग ज्यादा अच्छे लगते हैं।
1: ओके, तो इसी बात पर आप सुनिए आपका पसंदीदा सॉन्ग
0: जी
1: जी।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
1: मैम, मैं ललिता मंडलिक बोल रही इंदौर से। मैं
0: अच्छा, आप इंदौर से ललिता जी बोल रही हैं। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम बूंद जो बन गई मोती पिक्चर का गाना सुनना चाहती हूँ
0: बूंद जो बन गई मोती,
1: जी।
0: और गाना कौन सा है?
1: हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। जी
0: हरी हरी वसुंधरा पे,
1: मैम,
0: बहुत ही सुंदर गाना आपने तो चुना है। तो आप ये बताइए कि जब हरी वसुंधरा की आप बात कर रही हैं, तो आज पर्यावरण दिवस की आपको बधाइयाँ,
1: जी
0: और
1: मैम आपको
0: पर्यावरण
1: भी।
0: दिवस पर आप क्या कर रही हैं?
1: हम पर्यावरण दिवस पे देखो हमारे पास भूमि तो नहीं है, लेकिन हम हमारी तरफ से पर्यावरण को दूषित करने से रोकते हैं।
0: जी,
1: मैं प्लास्टिक का कम उपयोग करती हूँ,
0: बहुत अच्छी
1: पानी
0: बात
1: का
0: है ये।
1: दुरुपयोग कम करती हूँ।
0: जी
1: आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सब्जी धोने का, बर्तन धोने का पानी समेट के रखती हूँ और फिर उसको किसी भी रूप में, मतलब पौधों में या काय में भी उपयोग करती हूँ मैम।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है ललिता जी, इसके लिए तो आप बधाई की पात्र हैं। और ऐसे ही आप सबको भी जागरूक कीजिए कि
1: मैम मैं
0: जिस
1: कोशिश करती हूँ लेकिन इंसान सुनता नहीं है, आप क्या कर सकते हैं।
0: सही बात है, लेकिन हमें कोशिश तो करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी प्रयास रंग जरूर लाते हैं,
1: जी
0: ये
1: मैम,
0: ज़रूर
1: अपना
0: होता
1: अपना
0: है।
1: अनुशासन लागू रखते हैं मैम, दूसरा करे या नहीं करे उसको नहीं, पर अपन खुद, मैं स्वयं करती हूँ अपने आप पे।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। और
1: जी
0: यदि
1: मैम,
0: कोई और गीत आपका पसंदीदा हो तो आप वो भी बता सकती हैं।
1: या तो फिर आप राम तेरी गंगा मैली का
0: यदि
1: सुना दीजिए,
0: यदि
1: उसने पहाड़ों का।
0: अच्छा, इसका गाना बजाते हैं हम इस
1: मैम मैं
0: फिल्म
1: आप कौन बात कर रहे हैं।
0: में प्रेक्षक

0: सक्सेना बोल रही हूँ
1: जी,
0: आकाशवाणी
1: मैं
0: से।
1: पहली बार जुड़ी हूँ मैम भोपाल से।
0: अच्छा,
1: जी मैं इंदौर से 25 साल से रेडियो सुन रही हूँ।
0: अरे बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: जी मैम, पर अभी आपसे पहली बार
0: तो
1: मतलब मेरे
0: हम
1: बात
0: आपको
1: हुई।
0: इसी
1: जी मैम,
0: जो आपने दिया है, ये कौन चित्रकार है, यहाँ से शुरू है ये गाना क्या?
1: हाँ ये इसमें आएगा मैम ये।
0: जी, ठीक है। तो बस आप सुनिए अपना पसंदीदा गीत और पर्यावरण
1: बहुत
0: दिवस
1: बहुत
0: की आपको एक
1: धन्यवाद
0: बार फिर से बधाइयाँ।
1: जी, शुक्रिया शुक्रिया।
0: जी।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: कौन बात कर रही हैं आप?
1: नमस्ते। मैं सपना बात कर रही हूँ, गुना से।
0: एक मिनट, फिर से आप नाम बोलिए अपना।
1: मैम, मैं सपना बात

0: अच्छा, गुना से सपना जी बात कर रही हैं। तो आप सबसे पहले अपना पसंदीदा गीत बता दीजिए हमें।
1: गाने के बोले हम आपके हैं कौन,
0: हम आपके हैं कौन, फिल्म हम आपके हैं कौन,
1: ये मौसम का इसका जादू है मितवा।
0: कौन सा?
1: ये मौसम का जादू
0: है मितवा।
1: मौसम बहुत अच्छा हो रहा है।
0: आप थोड़ा जोर से बोलिए। मौसम तो अच्छा हो रहा है, आपको पर्यावरण दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। और इस मौसम को अच्छा रखने के लिए आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करती हैं?
1: मैम मैं ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत पेड़ पौधा का ध्यान रखती हूँ और एक पौधा भी लगाया है मैंने
0: जी,
1: उसी पर ध्यान देती हूँ ज़्यादातर।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सुनिए।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: होता है वो कार्यक्रम, अभी ये महिला कार्यक्रम चल रहा है। हेलो, पर्यावरण की रक्षा में छोटे छोटे प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे प्लास्टिक का उपयोग बंद करना, एक छोटा पौधा लगाना, पानी की बचत करना और आसपास स्वच्छता बनाए रखना। ये छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को सुरक्षित और हरा भरा बनाने का संकल्प लें। सखियों, आइए आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम अपनी भूमिका को भी समझें। महिलाओं को प्रकृति से विशेष जुड़ाव रहा है। घर की व्यवस्था को लेकर पानी, ऊर्जा और संसाधनों के संतुलित उपयोग तक महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान दे सकती हैं। घर में प्लास्टिक का कम उपयोग, कपड़े या जूट के थैले अपनाना, इस तरह से भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: हाँ दीदी, मैं दिनेश पाल बोल रहा हूँ।
0: हमें कोई महिला हो घर में तो आप उनसे बात कराइए।
1: महिला से बात करवाएं?
0: जी
1: जी, महिला तो दीदी मेरे पास नहीं है।
0: ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, धन्यवाद फोन लगाने के लिए। रसोई के जैविक कचरे से खाद बनाकर पौधों में उपयोग करें। छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें। कागज का उपयोग सोच समझ कर करें। पेड़ पौधों की विशेष देखभाल करें, विशेषकर गर्मियों के मौसम में उन्हें नियमित पानी दें। अपने घर की छत या बालकनी में पक्षियों के लिए पानी का पात्र अवश्य रखें। प्रकृति की रक्षा कोई बड़ा काम नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की छोटी आदतों का नाम है। तो सखियों, आज हमने आपसे बातें की, आपके पसंदीदा गीत सुने। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। महिलाओं को प्रकृति से विशेष जुड़ाव रहा है। घर की व्यवस्था से लेकर पानी, ऊर्जा और संसाधनों के संतुलित उपयोग तक महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान दे सकती हैं। घर में प्लास्टिक का कम उपयोग करें, रसोई में जैविक कचरे से खाद बनाना, पानी और बिजली की बचत करना तथा बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम और जागरूकता विकसित करना, ऐसे छोटे छोटे कदम हैं जो महिलाएं उठा सकती हैं। तो सखियों, आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय देने के लिए हमें पत्र अवश्य लिखें। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम महिला संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड है 462002। तो सखियों, इसी के साथ अपनी रेडियो सखी प्रेक्षा सक्सेना को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्ते मैडम।
0: आप कौन बोल रहे हैं?
1: सिंह ग्राम पिपलिया से। हाँ
0: आपके घर में कोई आपकी बहन हो या आपकी माता जी हो तो उनसे बात कराइए।
1: माता जी तो बुजुर्ग हैं मैडम जी, तो वो बात नहीं कर पाती हैं ज़्यादा।
0: आपकी वाइफ हो घर में तो उनसे बात करवाइए। कोई भी महिला सदस्य अगर आपके घर में हो तो आप उनसे बात करवाइए।
1: क्या कुछ है आज विषय है क्या?
0: ये महिला कार्यक्रम है आकाशवाणी का, तो इसमें हम महिलाओं से बात करते हैं, तो आप महिलाओं से बात, महिलाएं अगर कोई हो घर में तो उनसे बात करवाइए।
1: जो फोन करेंगी सुने नहीं है प्रोग्राम,
0: नहीं
1: जो रिकॉर्डिंग हो तो अभी नहीं हो रही है।
0: 11 बजे से

बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला संसार। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित रामस्वरूप रतोनिया का तीन ताल में तबला वादन।

धान धक धक धक धक धक नग धक धक धक धक धक धक धक धा नग धक धक धक धक धक धक धक धा नग धक धक धक धक धक धक धक धा धा धा धा धा धान धक धक धक धक धक नग धक धक धक धक धक धक धक धा नग धक धक धक धक धक धक धक धा नग धक धक धक धक धक धक धक धा धा धा धा ने धा धान धक धक धक धक धक नग धक धक धक धक धक धक धा नग धक धक धक धक धक धक धा नग धक धक धक धक धक धक धा धा

0: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे पंडित राम स्वरूप रतोनिया का तीन ताल में तबला वादन। हारमोनियम पर लहरा दे रहे थे सलीम अल्लाह वाले। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित सभी लोगों के प्रयासों की सराहना भी की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब से कुछ देर में भोपाल में आयोजित पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव राव गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि उनके नेतृत्व में संघ ने हर क्षेत्र में जनता को जागरूक करते हुए राष्ट्रीय चेतना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। प्रदेश के 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। और मानसून की दस्तक से पहले प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में तेज हवाएं चलने और बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज का कार्यक्रम छाया पाठक की प्रस्तुति है।
2: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं छाया पाठक। श्रोताओं, हमसे बातचीत करने के लिए हमारा फोन नंबर है 2660902, भोपाल का STD कोड 0755। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से, और कार्यक्रम का प्रसारण होता है अगले दिन 11 से 12 बजे के बीच। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से।
3: हेलो।
2: हेलो
3: जी मैडम, नमस्ते।
2: नमस्ते,
3: समद सिंह बात कर रहा हूँ, MP धार से।
2: समद सिंह,
3: सौमद सिंह जी।
2: अच्छा, एकाद मत नहीं है, सीधे सौमत है।
3: सौमत है मैडम, बिल्कुल। एकदम सही बात कही आपने, सीधे सौ मत।
2: एकाद मत नहीं है, सीधे सीधे सौ मत है। चलिए, आपके नाम के पीछे कुछ आपने कभी पूछा नहीं कि भाई ऐसा नाम क्यों रखा?
3: अब कभी सोचा तो नहीं, मतलब यूं जनरल तो ख्याल आया, लेकिन कभी घर वालों से पूछा नहीं।

0: भाई इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है मेरे हिसाब से,
1: हाँ नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल
0: है
1: सही
0: ना,
1: है।
0: सीधे ये मत से मतलब नहीं है, विचार से सौ
1: नहीं नहीं
0: मत।
1: नहीं मैं समझता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: चलिए,
1: मेरी किनसे बात हो रही है? अच्छा
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ
1: अच्छा है जी, चलिए
0: जी।
1: अच्छा लग रहा है
0: आज
1: आपसे बात करके।
0: जी आज कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने।
1: जी बिल्कुल, तो
0: हाँ
1: आप मुझे सुनवाइए। अभी अभी सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच से गई हैं, तो एक इनका गीत है रफी साहब के साथ में है, मोहब्बत इसको कहते हैं, फिल्म का गीत है वो। वो गीत आप मुझे सुनवाइए। खयाम साहब ने इसका संगीत निर्देशन किया है, और
0: इसका कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: ठहरिए होश में आलू आलू तो चले जाइएगा।
0: अरे बहुत बढ़िया गाना आपने पसंद किया
1: हाँ वही तो कहा मैंने,
0: आज
1: मोहब्बत इसको कहते हैं, फिल्म का गीत है ये।
0: कार्यक्रम का आरंभ भी इतने अच्छे गीत से हो जाए तो फिर कार्यक्रम का मज़ा दुगना हो जाता है ना।
1: जी,
0: मोहब्बत इसको
1: बिल्कुल।
0: कहते हैं, ठहरिए होश में आऊँ तो चले जाइएगा।
1: हाँ
0: जी
1: ठहरिए होश में आलू तो चले जाइएगा।
0: आपने फिल्म देखी है?
1: नहीं मैडम, मैं फिल्में सुनता हूँ। मैं शायद आपको याद नहीं होगा, पहले भी आपसे बात हुई है, मैं
0: हाँ हाँ
1: मतलब
0: हुई है हुई
1: है ना।
0: जी जी
1: हाँ,
0: हाँ
1: तो मेरा
0: जी
1: संगीत का क्षेत्र है और मैं टोटली ब्लाइंड हूँ मैं। तो
0: जी जी जी
1: हम लोग को जब कोई भी फिल्म को हमें मतलब सुनते हैं, तो हम उसको बिल्कुल ऐसे इस हिसाब से सुनते हैं कि हम लगता है कि हम उसको देख रहे हैं।
0: देख रहे हैं, फील करते हैं उसको
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: बिल्कुल
1: और
0: जी
1: अब आप यूं समझें कि एक म्यूजिक का तो एक अपना जादू है, क्योंकि आप दूसरे रूम में अगर बैठे हैं और अगर कोई म्यूजिक चल रहा है, तो म्यूजिक खुद अपनी कहानी कह देता है कि सीन क्या चल रहा होगा,
0: पहले के गीत इसी तरह बनते थे
1: है ना।
0: सारा। हाँ हम महसूस करते थे उन गीतों को, समझते थे, जैसे सारी पूरी एक कहानी बयां हो जाती थी।
1: बयां हो जाती थी
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: आजकल के गीतों में वो बात नहीं है
1: हाँ वो तो है, जीता जागता संगीत
0: जी
1: का अपना जादू था, जो सारा चढ़कर बोलता था हमेशा।
0: जी जी जी
1: तो मैं इस गीत को मेरे आ, आ, मेरी श्रीमती जी हैं अनसुईया जी, मेरे मित्र हैं ब्रजमोहन जी, और भी मेरे जो चाहने वाले हैं, उन सबको मैं सुनवाऊंगा आपके माध्यम से इस गीत को। जी
0: बिल्कुल सुनिएगा। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार, जी नमस्कार।
2: ठहरिए होश में।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, अपना नाम बताएंगे?
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम।
0: जी, आज कार्यक्रम है, फोन करें गीत सुने।
1: हाँ जी बिल्कुल मैडम जी, आज
0: हाँ।
1: जैसे कि कार्यक्रम को जब रिकॉर्डिंग हो रही है, कल 5 जून है, विश्व सड़क पर्यावरण संरक्षण
0: पर्यावरण
1: दिवस मैडम
0: सुरक्षा, जी, उस
1: जी।
0: बारे में कुछ
1: पर्यावरण को
0: कहेंगे?
1: बचाना है हमें, और जो पेड़ है, एक पेड़ माँ के नाम, वो अभी बारिश का समय आने वाला है, तो सभी श्रोता मित्र और देशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक पेड़ या पौधा जो भी अपने गार्डन है आसपास, वहाँ जरूर लगाएं। आज एक एक पढ़कर लगाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों पेड़ लग जाएंगे, और इस पर्यावरण से जो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो परिवर्तन आ रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही है, दिन प्रतिदिन जो वाहन है बहुत ज्यादा हो गए, जिससे का धुआं निकलता है, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है।
0: जी।
1: अगर पेड़ अधिक से अधिक रहेंगे तो उससे पर्यावरण को भी हमें बचाना है, और जगह जगह आपके पास में गार्डन है कहीं पर, तो वहां पर पेड़ पौधे लगाना है मैडम
0: कहीं ना
1: जी।
0: कहीं तो लगाएं पेड़। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। पेड़ पौधों के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जिनसे हम पर्यावरण बचा सकते हैं।
1: हाँ जी मैडम जी
0: जी
1: बिल्कुल। अभी अपन जहाँ कॉलोनी में रहते हैं, कहीं भी आज नई कॉलोनी का निर्माण होता है तो वहां पर गार्डन जरूर बनाया जाता है, तो आसपास जब आप घर के सामने चाहते हैं कि हमारे गार्डन हो, तो उस गार्डन में आपको पौधा भी लगाना है, उसकी देख रेख भी करना है, जैसे हम हमारे छोटे बच्चे का देख रेख करते हैं, वैसे उस पौधे का भी देख
0: देखभाल
1: रेख
0: जरूरी
1: करेंगे
0: होती
1: तो
0: है।
1: वो बढ़ सकता है, धीरे धीरे बढ़ाएगा, उसको सिर्फ 4-5 साल सीखने की आवश्यकता है मैडम
0: जी, चलिए,
1: जी मैडम।
0: आपके विचार सब तक पहुंचे होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। कुछ श्रोता तो जागेंगे इससे। बताएं,
1: हाँ जी
0: आज
1: मैडम
0: कुछ
1: बिल्कुल।
0: पर्यावरण से ही संबंधित गीत सुनना चाहेंगे क्या?
1: हाँ मैडम जी, गीत है, फिल्म का नाम है, आपको थोड़ा सर्च मारना पड़ेगा, थोड़ा पुराना गाना है, गाने के फिल्म का नाम है एक बार फिर।
0: एक बार फिर।
1: हाँ,
0: जी
1: और गीत के बोल हैं, ये पौधे ये पत्ते ये फूल ये हवाएं दिल को लुभाए, मन कहे

0: हेलो,
1: हेलो
0: फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी, नमस्कार
0: नमस्कार।
1: जी। मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ीले बोल रहा हूँ
0: देवीदास जी
1: जी।
0: जी बताएं कुछ अपने बारे में।
1: बढ़िया है मैडम जी, अरे मौसम बदल रहा है। हाँ
0: मौसम बदल रहा है, कुछ ठंडक हुई आपके यहाँ?
1: वही ना मैडम जी, एक दो बार हुई है अभी।
0: कल बारिश हुई आपके यहाँ?
1: हाँ,
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज कौन सा गीत आप पसंद करना चाहते हैं?
1: मुझे सुनना है मैडम जी, फिल्म का नाम है सरगम,
0: सरगम का।
1: जिसके बोले कोयल बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली।
0: जी, कोयल
1: ये
0: तो
1: मुझे सुनना
0: गर्मियों में ज़्यादा बोलती है।
1: है। हाँ अभी भी कोयल बोल रही है मैडम जी।
0: अच्छा, अभी कोयल बोल रही है, उसी को देख करके आपने गीत सुनना चाह रहे हैं,
1: हाँ
0: ये
1: उसको
0: वाला?
1: देखकर मैंने गीत चुना है
0: जी चलिए, तो सुनवाएंगे कल आपको ये गीत। नमस्कार।
1: जी।

0: हेलो जी,
1: हेलो।
0: नमस्कार मैम। राम बाबू मालवीय, कोलार रोड, भोपाल।
1: भोपाल से ही बोल रहे हैं आप? भोपाल
0: हाँ
1: से
0: जी,
1: बहुत कम फोन लगते हैं हमारे पास।
0: हाँ, भोपाल से लगाते कम है क्योंकि मीडियम में कम सुनते हैं, अपने एफएम के ज्यादा सुनते ना विविध भारती।
1: हाँ, ये जरूर हो गया,
0: हाँ
1: पर
0: ये है,
1: अब
0: और
1: जब
0: कुछ
1: से
0: भी नहीं होता
1: मोबाइल पे
0: जिस
1: आने
0: दिन
1: लगा है तो श्रोता,
0: एफएम सीट पे, जिस दिन एफएम सीट पे मीडियम वेव भी चलने लगेगा तो बहुत ज्यादा आएंगे भोपाल से।
1: हाँ वो तो है, पर अब मोबाइल में सुविधा उपलब्ध हो गई है तो अब कोई दिक्कत तो है नहीं, कहीं भी
0: ना इतना
1: कैसे
0: कोई
1: भी आप सुन
0: वो
1: सकते
0: मतलब
1: हैं।
0: वो क्या आजकल सुनते नहीं ना भोपाल वालों को, आपको याद है ना क्या
1: तो आप किस में सुनते
0: चाहिए
1: हैं?
0: जी। मैं ऐप के माध्यम से सुनता हूँ, रेडियो भी है मेरे पास।
1: अच्छा, रेडियो भी है आपके पास?
0: हाँ है ना, मीडियम वेव भी सुनता हूँ उसी से।
1: चलें बताएं आज गीत कौन सा सुनेंगे।
0: इसकी फिल्म का टाइटल सॉन्ग इसके है जी
1: इश्क फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनेंगे।
0: जी
1: ठीक है, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
0: जी मैम, नमस्कार।

0: हेलो,
1: आदरणीय दीदी, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार। किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी दीदी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति। जी,
0: शारदा प्रजापति जी।
1: शारदा प्रसाद प्रजापति
0: जी हाँ, अच्छा जी, बताएं क्या करते हैं आप?
1: दीदी, मैं घर पर रहता हूँ। आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और थोड़ी दृष्टिहीनता का शिकार हूँ, इसलिए घर पर रहते हुए आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ।
0: तो कुछ काम तो होगा आपका, कुछ
1: नहीं, मैं
0: व्यवसाय
1: कुछ
0: कोई?
1: काम नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो सुनना हूँ।
0: अच्छा, तो घर में कौन कौन है आपके?
1: मेरे दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, और बेटे दोनों सीनियर इंजीनियर हैं और अपना काम करते रहते हैं और हमारा भरण पोषण करते हैं।
0: अच्छा, तो आपने काम से विश्राम ले लिया मतलब, है ना?
1: जी, बिल्कुल,
0: अवकाश पे चल
1: मैं पूरी
0: रहे हैं।
1: तरह से सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहा हूँ।
0: हाँ, पूरे सेवानिवृत्ति का पूरा आनंद ले रहे हैं
1: जी
0: जी।
1: जी
0: बताएं आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है गीत गाता चल। जसपाल सिंह साहब ने गीत गाया है, गीत गाता चल और साथी गुनगुनाता चल।
0: टाइटल सॉन्ग
1: जी,
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्ते।
1: जी। नमस्ते मैम जी।
0: हाँ, नाम बताएं अपना।
1: मैं अरविंद अग्रवाल जी,
0: अरविंद अग्रवाल,
1: श्रीनगर
0: कहाँ से?
1: जिला महोबा उत्तर प्रदेश से। जी
0: श्रीनगर से। श्रीनगर जिला महोबा। अच्छा, आप महोबा से बोल रहे हैं, यूपी से बोल रहे हैं।
1: जी
0: चलिए, वहाँ पे आप क्या काम करते हैं?
1: मेरी किराने की दुकान है, वहीं बैठ के आपको सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा, और कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: बस केवल फोन इन जी,
0: सिर्फ फोन इन, ऐसा क्यों?
1: और इतना टाइम नहीं है, बच्चे भी ले लेते हैं मोबाइल, चार्ज में भी लगाना पड़ता है फिर।
0: फोन से कार्यक्रम जब हम सुनते हैं तो उसमें कुछ टाइम थोड़ी देना पड़ता है। कहीं से भी सुने, रेडियो में सुने, श्रोता इसमें
1: रेडियो में नहीं आता ना आपका भोपाल सीधा, छतरपुर रिले करता है ग्यारह
0: नहीं।
1: बजे
0: वो तो आपने ठीक कहा,
1: जी।
0: लेकिन जब हम फोन से भी सुनते हैं उसके लिए हमें अलग से टाइम थोड़ी देना है। वो चलता रहे अपने, भले चार्जिंग पे भी लगा है।
1: नहीं वो तो बनता नहीं है, अंदर लगाए हैं चार्जिंग का, सुनते
0: अच्छा, अंदर है।
1: हैं छतरपुर बनना है, चिंतन है, ये सुन लेते हैं जी।
0: वो भी तो यहाँ से आता है, सुबह आकाशवाणी भोपाल से। वंदना चिंतन सब यहाँ से भी आता है। उसे भी कभी सुनिए, ठीक है? तो गीत आपको जब बहुत पसंद है तो जो गाना आप आज सुनना चाहें जरा गुनगुना के भी बताएं।
1: जी हमराज फिल्म का है तुम मेरी जिंदगी में,

0: भाई जिंदगी बदल दी जी।
1: नई वाली हमराज मेरी जिंदगी में
0: पहली बार
1: आकर।
0: लक्ष्य खन्ना मनीष वो अमीषा पटेल।
1: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
0: नमस्कार मैम, धन्यवाद फोन लेने के लिए।

0: हेलो, फोन करें, गीत
1: नमस्कार
0: सुने।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कोरा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह
1: जी मैडम, और
0: जी।
1: मैं ड्यूटी परेड में हूँ मैडम, और आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ। और यहाँ तो मौसम कल पानी गिरा मैडम, और यहाँ तो एकदम उमस गर्मी भी है, धूप भी है, और हवा भी चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है मैडम। इस टाइप का मौसम बना है, और बादल भी किनारे किनारे किया है मैडम। मौसम में तो

0: परिवर्तन हुआ है यहाँ मैडम।
1: आप कोरबा में ही रहते हैं?
0: चिरमिरी कुरासिया कालरी, चिरमिरी कुरासिया
1: अच्छा,
0: कालरी, जिला
1: चिरमिरी।
0: कोरिया छत्तीसगढ़।
1: अच्छा, छत्तीसगढ़ में। तो ये क्या जिला है?
0: जी कोरिया जिला है
1: कोरिया जिला है।
0: जी।
1: तो आपके यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है।
0: जी मैडम यहाँ तो गर्मी खूब पड़ी मैडम। कल तो मेरे को लगता है कल कल शायद नौतपा भी समाप्त हुआ है। कल परसों
1: हाँ, परसों हुए नौतपा, कल।
0: परसों परसों परसों परसों
1: जी
0: नौतपा
1: जी
0: समाप्त हुआ है।
1: हाँ,
0: बहुत
1: परसों
0: गर्मी
1: नौतपा।
0: पड़ रहा था मैडम।
1: गर्मी बहुत थी, पर कल थोड़ी बारिश हुई है। आपके इधर भी शायद हुई होगी।
0: जी इधर हुई है,
1: उससे
0: पानी
1: उससे
0: गिरी है,
1: थोड़ी सी
0: गिरा है
1: ठंडक तो आ गई।
0: जी।
1: बताएं, आज गीत बारिश
0: फिल्म
1: से
0: का नाम है
1: संबंधित ही
0: सर,
1: सुनेंगे?
0: फिल्म का नाम है सर,

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: जी, नमस्ते मैडम, मैं जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ।
0: कार्यक्रम में
1: मुझे
0: स्वागत
1: गाना
0: है
1: सुनना है
0: आपका।
1: मैडम।
0: हाँ, गाना सुनवाने के लिए ही हम बैठे हैं। बताएं
1: जी
0: कौन
1: जी
0: सा
1: जी
0: गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये कर्तव्य पिक्चर का, जिंदा
0: कर्तव्य का।
1: मामा से प्यारा मेरा मामा।
0: जी, आप मामा बन गए लगता है।
1: जी मैंने आज पहली बार फोन लगाया। राजू अग्रवाल जी ने मेरे को नंबर दिए है देवास से। उन्होंने
0: हाँ
1: नंबर दिया था कि 10:30 बजे से 11 बजे तक की फरमाइश होती है, मतलब
0: हाँ
1: तो मैंने आज पहली बार फोन लगाया है।
0: पहली बार लगाया, पहली बार में लग गया।
1: जी,
0: बहुत
1: मैडम पहली
0: भाग्यशाली
1: बार
0: हैं आप
1: लगाया,
0: तो,
1: पहली बार।
0: नहीं तो लोगों का तो दिन भर लगाते रहते हैं, लगता नहीं है फोन। कई श्रोताओं की
1: जी
0: यही शिकायत रहती है कि हम हमेशा फोन लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन लगता नहीं है।
1: हाँ,
0: जी, चलिए, आपको पहली बार में लग गया, अब आप 1 हफ्ते बाद लगाएंगे,
1: जी मैडम,
0: है ना? ठीक है,
1: जी, थैंक
0: चलिए, नमस्कार।
1: यू मैडम।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी। पकड़ो मां इसको।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं
1: हाँ जी, मैं श्रीपाद जाकरे बोल रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। पुणे
0: जी?
1: से बोल रहा हूँ मैं,
0: हाँ, पुणे
1: महाराष्ट्र से।
0: महाराष्ट्र से
1: श्रीपाद
0: बोल रहे हैं। नाम फिर से बताएं अपना।
1: जाकरे, श्रीपाद
0: श्रीपद जाखड़े
1: जाकरे। हाँ जी,
0: जी, पुणे में रहते हैं आप?
1: हाँ जी, पुणे में रहते हैं। पुणे में वृद्धाश्रम में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं मैडम जी।
0: तो वहाँ कार्यक्रम सुनते हैं आप, आकाशवाणी मध्य प्रदेश?
1: हाँ, बहुत दूर का तो नहीं आता है, कभी कभी आता है। मतलब
0: तो वहाँ कब से रह रहे हैं आप आश्रम में?
1: आश्रम में रह के मुझे 11 साल हो गए मैडम जी। हम वैसे इंदौर भोपाल के रहने वाले हैं,
0: भोपाल के रहने वाले हैं तो
1: इंदौर।
0: आपके आप अकेले हैं?
1: हाँ, यहाँ आश्रम में तो अकेले रहते हैं ना, अभी घर में कोई नहीं है। अभी
0: वैसे आपके परिवार में और कोई?
1: कोई नहीं है, अभी सब चले गए, जब भी तो आश्रम में रहना पड़ रहा है मैडम।
0: जी,
1: मजबूरी है,
0: तो
1: वर्क लाइफ है
0: आश्रम में अच्छा
1: थोड़ा।
0: लगता है आपको?
1: हाँ जी, हाँ
0: आपको अच्छा लगता है, आपके साथी, आपकी हम उम्र सब रहते होंगे तो, है ना?
1: वैसे तो हमसे सभी बड़े ही हैं, मैं ही सबसे छोटा हूँ
0: जी,
1: उम्र में।
0: चलिए, तो ये जो भी आप गीत आज सुनेंगे वो सबको सुनाइएगा
1: जी,
0: और
1: जरूर
0: सबको भी
1: सुनाऊंगा।
0: कहिएगा फोन लगाने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताएं कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: हाँ, मुझे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में शिकारी फिल्म का गाना सुनना है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाया हुआ है।
0: उसके तो बहुत से गाने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने गाए।

0: आपको शिकार
1: मैंने
0: करने को आए, शिकार हो गए
1: शिकारी
0: बोवा।
1: नहीं, शिकारी फिल्म का
0: हाँ शिकारी का ही ये गाना है, तो आप बताएं कौन सा सुनेंगे।
1: मतलब। हाँ जी, अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल
0: जी
1: क्यों मेरा तड़प रहा है, ये वाला गाना है।
0: ठीक है, सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत, सबको सुनवाइएगा
1: शुक्रिया।
0: आप ये गीत, और सब लोगों को भी प्रेरित करिएगा।
1: आप कौन बोल रहे हैं मैडम जी?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: हाँ ये तो हम तो जैसे बहुत रोज में फोन करते हैं, तो हमको सुनने को मिलेगा ना कल?
0: बिल्कुल मिलेगा, कल आप सुनेंगे आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी, एक बात कहना चाह रहे हैं आपसे, निवेदन है, मतलब हमारा सुनवाइएगा, कारण पहले हमारा 3-4 बार ऐसा हुआ है कि हमारा बजाया ही नहीं, प्रसारण हुआ ही नहीं
0: नहीं,
1: हमारा।
0: कई बार ऐसा होता है देखिए कि श्रोता, हम जैसे कुछ एक्स्ट्रा में भी कॉल हम रिसीव कर लेते हैं, कभी किसी का कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण उनका नहीं ले पाते हैं, या कभी समय ज़्यादा हो जाता है, 1 घंटे का टोटल प्रोग्राम बनता है हमारा, तो कभी समय ज़्यादा हो जाता है, कोई गीत लंबा हो जाता है, तो इस वजह से कई बार कोई श्रोता छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इंटेंशनली नहीं लेते हम,
1: वो 3-4 बार हुआ है, तो अभी
0: नहीं,
1: मतलब टाइम क्या है वैसे आपका रिकॉर्डिंग का,
0: ग्यारह
1: आपको
0: से
1: इतना
0: बारह आपको सुनवाएंगे कल ये गीत।
1: मिलेगा ना सुनने
0: जी
1: को
0: बिल्कुल
1: आप?
0: बिल्कुल मिलेगा आपको, बिल्कुल सुनवाएंगे।
1: ओके, हाँ
0: हाँ 11 से 12 पूरा सुनिएगा।
1: जी,
0: चलिए,
1: जरूर,
0: फ़ोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।

0: आज्ञा दीजिए छायापाठक को कार्यक्रम से नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक कल इंदौर में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक भी शामिल होंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया और पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान की काका मेगाहारा हॉकी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को साधना जैन का नमस्कार और विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। पहला गीत हमने आपके लिए लिया है ब्लैकमेल फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण ने इसका गीत लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया है। इस गीत को पसंद किया है सोनागिर दतिया से शशि जैन, श्रेयांश जैन, विपिन जैन और खंडवा से बबली वंदना जैन, डॉक्टर प्रीति प्रतीति जैन, संदीप जैन और माघदी जैन ने। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश, और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। इस समय दोपहर के 12:06:07 हुए हैं। अगला गीत हमने लिया है बंदनी फिल्म से। एसडी बर्मन ने इस गीत को गाया है, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है एसडी बर्मन ने। इस गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने बहुत दूर से। दोस्तों, जब हम मोबाइल ऐप पर आ गए हैं तो बहुत दूर दूर से भी, सात समंदर पार से भी लोग हमें

0: सुन रहे हैं और अपनी फरमाइश हमारे लिए भेज रहे हैं। तो इस गीत का बंदिनी फिल्म को सुनना चाहा है बॉस्टन यूएसए से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन, डॉक्टर प्रियंक जैन, डॉक्टर पुनीता जैन, आर्य अंकुर जैन। आपने बॉस्टन यूएसए से ये गीत पसंद किया है। इसी गीत को पसंद किया है प्रीत बिहार दिल्ली से ज्योतिषाचार्य बिंदु जैन, पंडित अशोक जैन शास्त्री, नमन जैन, शुभम जैन ने। तो आप सभी के पसंद पर बंदनी फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: पूरे माजी

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश है। सूरज फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। गीत लिखा है हसरा जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। इसकी फरमाइश इस गीत के बाद हम आपको बताएंगे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश साधना के साथ। अगला गीत हमने लिया है धरती फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश इस तरह से है, अशोकनगर से ममता राकेश जैन, कोटा से सरोज सुरेश योगी, रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने, पालीताना से शशि जैन ने इस गीत को पसंद किया है। इन दोनों गीतों को पसंद किया था हमारे इन सभी श्रोताओं ने। राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, उपाध्याय नगर देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी, और मोहसिनपुरा देवास से जमील खान, इमरान और फुरखान ने इसी गीत को पसंद किया है। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल बागवान गोविंद, सालग राम, दशरथ बागवान और लोकेंद्र वर्मा ने इसी गीत को पसंद किया है।

और लीजिए, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म में आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी को। गीत लिखा है मजरू ने, संगीत है आर डी बर्मन का। इस गीत को पसंद किया है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। और इसी गीत को पसंद किया है सिंधी कैंप पक्की खोली अकोला से आशा संतानी, श्यामली संतानी।

अभी आप सुन रहे थे साधना के साथ आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम अंतराल के बाद है।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिसकियों का भाग 10।
2: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की 10वीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, सारे और मुश्ताक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फाता के न चाहने पर भी उनका मिलना जारी रहता है। सारे बगावत पर उतर आती है और रसूल के जुल्म सहने से इनकार कर देती है। मुश्ताक सायरे को तलाक दिलवाने के लिए वकील के पास जाता है। और अब आगे

0: मुश्ताक, कानूनी तौर पर तलाक की कोई वजह होनी चाहिए।
1: तो तलाक की वजह है? सारिया खुद चाहती है कि वो रसूल के साथ ना रहे।
0: ये कोई सटीक वजह नहीं, कुछ और सोचना होगा।
1: वकील साहब, जब सारिया उसके साथ रहना ही नहीं चाहती तो इससे ज्यादा तलाक की और क्या वजह होगी?
0: तलाक के लिए कोई ठोस वजह चाहिए भाई, इसके बिना तलाक संभव नहीं है।
1: वकील साहब, रसूल से सारे प्यार नहीं करती, रसूल सारे को मारता पीटता रहता है, क्या ये बड़ी वजह नहीं है तलाक के लिए?
0: ये तो सारे कह रही है, रसूल क्या कहता है हमें ये भी जानना होगा। एक पक्ष की बात पर हम केस नहीं जीत सकते।
1: वकील साहब, रसूल सारे को तलाक नहीं देगा।
0: अगर रसूल तलाक को राजी नहीं तब तो मुश्किल है, क्योंकि रसूल सारे का शौहर है और उसके कहे पर ही अदालत कार्रवाई करेगी।
1: लेकिन वकील साहब, रसूल अच्छा आदमी नहीं है, उसके कई औरतों से शहर में ताल्लुकात है, वो नशा करता है, मारपीट करता है, क्या इस वजह पर सारे को तलाक नहीं मिल सकता?
0: देखो मुश्ताक, मर्द अगर घर से माह दो माह के लिए बाहर रहे तो ऐसा संभव है, फिर भी आपको सबूत के तौर पर उन औरतों को अदालत में गवाही के लिए लाना होगा। अगर वो औरतें ये कबूल करें कि रसूल से उनके संबंध हैं, तो शायद तलाक मिल जाए। लेकिन एक दिक्कत और होगी, अगर रसूल ये साबित कर दे कि सारे उसके शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं करती और वो इसलिए उन औरतों से संबंध रखता है, तो सारे को तलाक नहीं मिल सकता।
1: लेकिन वकील साहब, ये सब साबित कैसे होगा?
0: अच्छा एक बात बताओ, सारे का कोई बच्चा है?
1: नहीं।
0: सारे कभी गर्भवती हुई?
1: नहीं।
0: सारे ने कभी रसूल को औरतों के साथ हमबिस्तर होते देखा है?
1: वकील साहब, ये लोग कहते हैं, सारे ने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम ये जानते हैं कि रसूल के ताल्लुकात औरतों से हैं।
0: मुश्ताक, अदालत सबूत देखती है, अगर तुम सबूत ला सको तभी ये संभव है, और बिना सबूत के अदालत सारे को तलाक नहीं दिला सकती।
1: वकील साहब, तो क्या अदालत सारे के जज्बात को नहीं सुनेगी?
0: मुश्ताक साहब, अदालत भावनाओं पर नहीं चलती, अदालत सबूत देखती है, और बिना सबूत के अदालत कोई फैसला नहीं करती। अगर आप चाहते हैं कि सारे का तलाक हो जाए तो ठोस सबूत के साथ आइए, तभी तलाक हो सकता है।
1: ठीक है वकील साहब, अच्छा मैं चलता हूं।
0: ठीक,
1: खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
1: वकील साहब ने तो मना कर दिया, अब ऐसा करता हूं कि मौलवी साहब के पास जाता हूं, देखता हूं उनकी क्या राय है। हाँ ये ठीक रहेगा।

0: अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब।
1: वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे।
0: मौलवी साहब, एक जरूरी मसले पर आपसे मशवरा लेना था।
1: आओ आओ बैठो। कहो क्या बात है?
0: वो तलाक के सिलसिले में।
1: तलाक? किसका तलाक?
0: सारे और रसूल का।
1: तलाक कौन देना चाहता है?
0: जी सारे
1: है? और रसूल?
0: रसूल नहीं चाहता मौली साहब।
1: ओ तो ये मुश्किल है। देखो भाई, रसूल की इजाजत के बगैर सारे को तलाक नहीं मिल सकता।
0: लेकिन मौलवी साहब, सारे उसके साथ नहीं रहना चाहती।
1: देखो, एक बार निकाह हो जाने के बाद जब तक मर्द ना चाहे तलाक नहीं मिल सकता।
0: सारे उसके साथ खुश नहीं है मौलवी साहब, और रसूल कई औरतों से ताल्लुकात रखता है और सारे से अच्छा सलूक भी नहीं करता।
1: देखो भाई, हमारे इस्लाम धर्म

0: के कानून के मुताबिक तलाक मर्द की इच्छा पर मुनसर करता है, और एक मर्द अगर चार निकाह भी कर ले तो भी वो जायज है। जायज है, औरतों को पाक साफ होना चाहिए। ऐसे में सारे को तलाक नहीं मिल सकता। अरे हम इस्लाम मजहब के खिलाफ नहीं जा सकते। और सुनो, औरतों का अपना धर्म है, उसे निभाना चाहिए। और अगर कोई औरत उसे नहीं निभाती तो धर्म उसकी रक्षा नहीं कर सकता। और जहां तक मैंने सुना है, सारे रसूल को छोड़कर किसी और के साथ रहना चाहती है। अरे अरे, ये तो मजहब के खिलाफ है। एक औरत को ऐसी आजादी नहीं दी जा सकती।
1: कोई और रास्ता है मौलवी साहब?
0: देखो भाई, अगर सारे का खामिंद उसे तलाक देने को राजी हो तभी हो सकता है, लेकिन उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो तलाक नहीं माना जाएगा।
1: तो क्या एक औरत को आजादी से रहने का हक नहीं है?
0: देखो मुश्ताक, एक औरत की आजादी उसके परिवार वालों के हाथ होती है। उसका खामिंद अगर चाहे तो आजादी दे, नहीं तो उसके कहने पर चले। ये हमारा इस्लाम मजहब कहता है, और हम उसी मजहब पर चलते हैं। और सुनो, इस्लाम मजहब को छोड़कर हम कोई और बात नहीं कर सकते। और अगर कोई औरत हमारे मजहब के खिलाफ जाती है तो हमारा मजहब सख्त सजा की वकालत करता है।
1: अच्छा मौलवी साहब, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।

0: तो क्या हमारा मजहब एक औरत को जुल्म सहने के लिए ऐसे छोड़ सकता है? सारे तुम यहां?
1: आओ अंदर आओ।
0: तुम्हारी ये हालत?
1: वो
2: रसूल ने मारा है बेटा, लेकिन अब ठीक है। मुश्ताक बेटे, तलाक की क्या बात हुई? कब तक काम हो जाएगा?
0: अब्बू, जब तक रसूल तलाक देने को राजी नहीं होता, तब तक तलाक नहीं हो सकता। हमें रसूल से कबूल करवाना होगा कि वो सारा को तलाक दे।
2: बेटा, मदरसे में जाकर मौलवी साहब से कुछ मशवरा करते, शायद वो हमारी कुछ मदद करें।
0: मैं उनसे मिल चुका हूं अब्बू। उनका कहना है कि अगर रसूल तलाक देना चाहे तभी सारे को तलाक मिल सकता है। वो हमारे बीच मजहब को आड़े ला रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी नहीं मिल सकते अब्बू।
2: तब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है बेटा, कि हम रसूल से बात करें।
0: ठीक है अब्बू, ये काम आप खुद करें तो बेहतर होगा।
2: हां बेटा, मैं खुद ही रसूल से बात करता हूं।

0: ऐसा हरगिज नहीं हो सकता।
1: क्या?
2: लो चाय पियो।
1: देखो रसूल, मैं साफ साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि तुम सारे को तलाक दे दो।

0: मैं कितनी बार कह चुका हूं कि ऐसा नहीं हो सकता।
1: अम्मा मियां पागल हो गए हो क्या? अपनी बेटी को तलाक दिलवाओगे?
2: हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मुझे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अरे, तुमने तो सारे को जीते जी मारने का काम किया है, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा।
0: मैं सारे को तलाक नहीं दे सकता।
2: रसूल, सारे अब तुम्हारी बीवी बनकर नहीं रह सकती। सारे तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए अब तुम सारे को तलाक दे दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
0: जब तक सारे को मैं तलाक ना दूं, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और सारे को पाने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। फाता, फाता तुम क्यों नहीं बोलती? मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया है, और इसी लालच में तुमने अपनी बेटी सारे का निकाह मुझसे करवाया, और अब तलाक देने को कहती हो?
2: देखो रसूल, अगर तुम सारे को तलाक देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ।
0: सारे का हुस्न तो मेरा हो ही गया था, अब उसे छोड़ने के लिए देखो भाई, कम से कम 10,000 रुपए दो तो मैं सारे को तलाक दे दूंगा।
2: ठीक है, मैं जल्दी ही 10,000 रुपए तेरे हाथ में दूंगा।
0: तो ठीक है, जिस दिन पैसा दोगे उसी दिन तलाकनामे पर दस्तखत करूंगा मैं।
2: ठीक है, मैं अभी जाके मुश्ताक को बताता हूँ कि हमें जल्द से जल्द 10,000 रुपयों का इंतजाम करना होगा, ताकि हमें इस नामुराद से छुटकारा मिल सके। चाहता हूँ

0: मुश्ताक बेटा।
1: हाँ अम्मी।
0: खाना खा ले।
1: अम्मी रख दो, मैं खा लूंगा, पहले काम खत्म कर लूं।
0: अरे क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी सेहत का तो ख्याल कर।
1: अम्मी मुझे जल्द ही 10,000 रुपए जमा कर रसूल को देने हैं।
0: मुश्ताक बेटा, मुझे तो लगता है रसूल सबको झांसा दे रहा है, वो ठीक आदमी नहीं है बेटा।
1: अम्मी उसने सारे को तलाक देने के बदले 10,000 रुपए मांगे हैं।
0: अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे बेटा, जल्दी से सारे का तलाक हो जाए, पर अपनी सेहत का भी तो ख्याल रख। चल खाना खा ले।
1: अम्मी तू बस अल्लाह से दुआ कर कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं।
0: हाँ, अल्लाह तेरी मुराद जल्द पूरी करेगा। तू सिर्फ सारे को ही नहीं बचा रहा बेटा, बल्कि उस जैसी कई औरतों के लिए एक नया रास्ता बना रहा है। लोग रिश्तों पर यकीन करें, उनमें एतबार बढ़े और वो एक दूसरे के जज्बात समझने की कोशिश करें, तो फिर किसी भी औरत की हालत सारे जैसी नहीं होगी।
1: अम्मी कोशिश तो मेरी यही है, पर पहले पैसे का इंतजाम हो जाए।
0: अकेला कितने पैसों का इंतजाम कर पाएगा, इसमें तो बहुत देर हो जाएगी बेटा।
1: अम्मी मेरे साथ हसन मियां भी तो हैं, वो भी पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे मेरा काम और आसान हो जाएगा।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हसन भाई जान ने भी बहुत दुख देखे हैं, चलो अब उन्हें भी थोड़ी राहत मिल जाएगी।
1: अम्मी अब तू जा, थोड़ी देर सो ले, अभी मुझे बहुत काम करना है।
0: ठीक है, पर खाना खा लेना।
1: हाँ हाँ खा लूंगा।
0: हाँ
1: तू जा।
0: रख दिया है।

0: सलाम अब्बू।
1: वालेकुम सलाम। अरे मुश्ताक, आओ बेटा आओ, कैसे हो?
0: मैं ठीक हूं अब्बू, आप कैसे हैं?
1: खैरियत है?
0: अब्बू, आपने जैसा कहा था, मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब हमें रसूल को पैसा देकर तलाकनामे पर उसके दस्तखत ले लेने चाहिए।
1: मैंने भी कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है बेटा।
0: अब्बू, फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए।
1: हाँ, मैं अभी उसके पास जाता हूँ और तलाक नामे पर उसके दस्तखत लेकर आता हूँ।
0: अब्बू, आज मेरे लिए बहुत ही मुबारक दिन है।
1: हाँ बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे और सारे के लिए भी मुबारक दिन है। आज से सारे के दुखों का अंत हो जाएगा। आज वो रसूल के जुल्म और सितम से मुक्त हो जाएगी।
0: अब्बू, ये आप जैसे पाक दिल अब्बू की दुआ है कि हम फिर से एक बार मिल पाएंगे।
1: हाँ बेटा, ये तो तुम्हारी और सारे की पाक मोहब्बत है जो एक बार फिर तुम दोनों एक हो रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बत को बरकरार रखे। अच्छा बेटा, तो मैं रसूल के पास जाता हूँ और उसे पैसे देकर आता हूँ।
0: हाँ, मैं आपका यही इंतजार करता हूं।
1: ठीक है बेटा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। इस मुबारक दिन का इंतजार मुझे भी था। जाता हूँ बेटा।
0: इंशाल्लाह। तलाकनामे पर दस्तखत तो करवा लिए, लेकिन सारे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। सुनो भाई,
2: हाँ
0: तुम एक काम करोगे?
2: रसूल भाई, जैसा कहो करूंगा।
0: तुम्हें एक आदमी को खत्म करना है।
2: भाई, पैसा खर्च करो तो काम हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस काम में माहिर हैं।
0: लेकिन इस काम को गुप्त तरीके से करना होगा कि हम पर किसी को शक भी ना हो।
2: इन वादियों में ऐसी घटना आम बात हो गई है। आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा।
0: तो ठीक है, काम के बाद पैसे मिल जाएंगे। फिलहाल ये रखो।
2: ठीक है, लेकिन मारना किसको है
0: सारे और मुश्ताक को।
2: भाई? लेकिन सारे तो आपकी बीवी है।
0: बीवी थी, मुझसे तलाक लेकर उस मुश्ताक से निकाह कर बैठी। आज तक औरतों को अपने पैर की जूती के नीचे रखता आया हूं, पर इस सारे ने मुझसे तलाक लेकर मुश्ताक से निकाह कर लिया।
2: ये तो बहुत बुरी बात है, एक औरत की इतनी हिम्मत कि मर्द के फैसलों के खिलाफ जाए। अरे, उसे तो घर का काम करना है और शोहर की देखभाल करनी चाहिए, और वो आपको छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। ये तो बहुत बुरा है। आप फिक्र ना करें, हम आपका काम करवा देंगे।
0: ठीक है, अब जाओ, काम होने के बाद मिलना।
2: लेकिन वो लोग मिलेंगे कहाँ?
0: हसन भट्ट की कोठरी में वो दोनों होंगे। आज ही उनका काम तमाम कर दो।
2: ठीक है, हो जाएगा।
0: जाओ।

0: कौन? मुश्ताक, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी।
1: सारे सारे, आज हम एक बार फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे।
0: अब मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं?
1: नहीं सारे, नहीं। बस हमने अपनी परेशानियों को खुलकर नहीं रखा, और यही वजह थी कि हमारे बीच दूरियां

0: सॉरी।
1: अब ऐसा कभी नहीं होगा मुश्ताक, मैं तुमसे वायदा करती हूँ। अब हम अपने परिवार को संभालने की कोशिश करेंगे।
2: सारे परिवार की ताकत को समझो। अगर तुम्हारे अब्बू और मेरे अम्मी अब्बू ने हमारी मदद ना की होती तो शायद हम कभी ना मिल पाते।
1: हाँ मुश्ताक, ये मुझे एक खौफनाक ख्वाब सा लगता है, पर अब ऐसा नहीं होगा मुश्ताक। हम एक रहेंगे, हम हर हाल में एक रहेंगे, मैं वायदा करती हूँ मुश्ताक।
2: सारे हमें एक दूसरे पर एतबार रखना होगा, तभी हम अपने ताल्लुकातों में आने वाले पलों को अपने हिसाब से रख पाएंगे। हाँ। और इसी से हमारे बीच कभी दूरियां नहीं आएंगी।
1: आप ठीक कहते हैं मुश्ताक, पर एक बात मैं जानती हूँ कि आपका प्यार जहाँ भी होगा वहाँ हम हर मुश्किल को आसान कर लेंगे। पर वायदा करो कि तुम मुझ पर भरोसा रखोगे और मुझे इसी तरह प्यार करते रहोगे।
2: सारे मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और इसके लिए मुझ पर किसी का दबाव नहीं है, और मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा।
1: मुझे विश्वास नहीं होता कि हम फिर से एक हैं। हमारे जीवन में ये मुबारक दिन भी आएगा, मैं तो इसका विश्वास ही खो बैठी थी मुश्ताक।
2: आज हमारे लिए मुबारक दिन है, बहुत मुबारक दिन।
1: मुश्ताक, आज अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मैं कभी की मर गई होती।
2: सारे इस मुबारक घड़ी में ऐसे तो ना बोलो।
1: आप नहीं जानते मुश्ताक, ये दिन मैंने किस तरह गुजारे हैं।
2: वो सब एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। सारे अब हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है, और पुराने दिनों को याद कर यूं दुखी होने की जरूरत नहीं है।
1: मुश्ताक, अगर मुझे आपका प्यार ना मिला होता तो रसूल के जुल्म और उसके लिए जख्मों को मैं कभी ना सह पाती।
2: छोड़ो भी ये सब बातें, अब हमें नई जिंदगी शुरू करनी है। और ये देखो, ये लाल रंग का फैन मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से तैयार किया है। जाओ जाओ, जल्दी से इसे पहन लो।
1: इसे आपने बनाया है?
2: हाँ सारे, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: इसके क्या जरूरत थी?
2: नहीं, तुम्हें हो या ना हो, पर मुझे थी। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूँ।
1: ऐसा ना कहो।
2: क्यों ना कहूँ, आखिर तुम मेरी बीवी हो।
1: मुश्ताक, आप अब मेरा साथ कभी ना छोड़ना। मैं अपने रास्ते से भटक गई थी और उसका नतीजा मैं भुगत चुकी हूँ।
2: अरे अरे सारे, तुम रो रही हो।
1: नहीं मुश्ताक, मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं।
2: तुम ऐसा ना सोचो सारे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
1: ये आपका ही तो विश्वास है कि सारे आज आपके सामने खड़ी है, वरना मैं तो कभी की हिम्मत हार चुकी थी।
2: ओहो सारे, अब यूं ही बातें करती रहोगी या ये फिर पहनकर भी दिखाओगी?
1: हाँ, मैं अभी इसे पहनकर आती हूँ, बस अभी आई।
2: सच कहूँ सारे, इस जोड़े में तुम बिल्कुल रानी लग रही हो। खुदा किसी की नजर न लगाए।
1: ओहो, देखो तो कौन आया है।
2: हाँ देखता हूँ।
3: तुम मुश्ताक हो?
2: जी कहिए।
3: और घर में कौन कौन है?
2: घर में मैं और मेरी बीवी सारे है।
4: मुश्ताक,
3: भी मारो।
2: सारे
4: मुश्ताक,

0: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां की 10वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। भारत और लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम की बैठक कल इंदौर में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन देशों के वरिष्ठ राजनयिक भी शामिल होंगे। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया और पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बने। और देखिए आपके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान सजाने हम लेकर एक बार फिर हाजिर हैं, आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा। तो स्वीकार कीजिए हेमलता खरे का प्यार भरा नमस्कार। वृक्ष, नदियाँ और ये नीला आकाश धरती माँ का है मानो आशीर्वाद। जो करे निस्वार्थ प्रेम उससे, उसे प्रकृति सब कुछ दे देती है, अपने आंचल में हमें ममता से ढक लेती है। हाँ बहनों, प्रकृति ने स्वच्छ पर्यावरण के रूप में हमें मानो अपना आशीर्वाद दिया है। ये पर्यावरण ही है जो हमारा संरक्षण करता है, हमें जीवन देता है। मगर हम ही ना जाने क्यों स्वार्थवश पर्यावरण का विनाश करने में लगे हुए हैं। प्रकृति तो अपना प्यार दुलार हम पर लुटाती ही है और हमें यह सीख देती है कि खुशियाँ बांट देने से खुशियाँ कम नहीं होती। प्रकृति का हर रंग एक नई कहानी सुनाता है, जो दिल से महसूस कर सके वही समझ पाता है। आज हम अपनी खुशी के खातिर न केवल पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि अपने अस्तित्व को ही समाप्त करने में लगे हुए हैं। हाँ बहनों, यही वजह है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने, उसकी सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तभी से यह समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का एक मंच रहा है। वास्तव में पर्यावरण प्रकृति का हिस्सा है और मानव जीवन प्रकृति के साथ अनुकूलता में ही

संभव है। हम प्रकृति के पोषण और संरक्षण के साथ ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, न कि उसे क्षति पहुंचाकर। इसीलिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी अच्छी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, साथ ही हमारी बुरी आदतें जैसे पानी प्रदूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की कटाई, प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण को प्रभावित करता है, जिसका नतीजा हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना ही पड़ता है। तो बहनों, आज केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना होगा। पौधारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, हरित क्षेत्र बढ़ाने होंगे और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर भी रोक लगानी होगी। हमारे पूर्वज प्रकृति को ईश्वर स्वरूप मानकर पूजते थे, उसका संरक्षण करते थे, मगर आज आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी संस्कृति और संस्कार मानो भूलते से जा रहे हैं। हमें एक बार फिर अपनी सनातन संस्कृति की ओर लौटना होगा, अपनी परंपराओं की ओर लौटना होगा, तभी हम पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य निभा पाएंगे, प्रकृति का ऋण चुका पाएंगे। तो क्यों ना सहेज कर रख लें इस प्रकृति को आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। और आज बदलते परिवेश और बदलते समय में क्यों ना एक बार फिर संवार लें हम ये रिश्ते, ये मौसम और ये पल।

0: अभी बहनें सुन रही थीं मोनाली ठाकुर के स्वर में लुटेरा फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया था अमित त्रिदेव ने। खिलते हुए फूलों में रंग हजार नजर आते हैं, खिलते हुए फूलों में रंग हजार नजर आते हैं, प्रकृति के खूबसूरत से नज़ारे सीधे दिल में उतर जाते हैं। सुबह की ठंडी हवा जब चेहरे को छू जाती है तो रूह तक में एक नई ताजगी सी उतर आती है। हाँ बहनों, ईश्वर ने प्रकृति के रूप में अनमोल धरोहर हमें सौंपी है और प्रकृति की ये खूबसूरती हमारे मन को सुकून देती है, शांति देती है। आज हर मन अवसाद, तनाव और निराशा से भरा है और हर कोई शांति चाहता है, सुकून चाहता है, और हमें ये सुकून मिलता है प्रकृति की छाया में, प्रकृति की पनाहों में। मेघ के साये में पर्वतों की बाहों में, मेघ के साये में पर्वतों की बाहों में सुकून यहाँ बसता है प्रकृति की पनाहों में। और यदि हम प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करें तो शायद कुछ पल के लिए ही सही तनाव से दूर रह सकते हैं। आज हम छोटे छोटे घरों, बालकनी या योगा सेंटरों तक सीमित हो गए हैं। काम के दबाव और समय की कमी ने हमें प्रकृति से दूर सा कर दिया है, तो चलिए थोड़ा सा समय ही सही खुद के लिए जरूर निकालें। तो चलिए फिर से एक बार प्रकृति की ओर लौटिए। खुला आसमान आपका इंतजार कर रहा है और सूरज, चांद, सितारे आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। पंछियों की चहचहाट आपकी मेडिटेशन प्रक्रिया में सुधार करेंगे। खुले आसमान के नीचे ध्यान लगाने का अर्थ है प्रकृति की गोद में बैठकर ध्यान लगाना। दुनिया भर के विशेषज्ञ कहते हैं इस तरह ध्यान से तनाव कम होता है। यह आपके मन को स्थिर करने और एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करता है और वहीं यह प्रकृति के साथ आपका एक गहरा संबंध स्थापित करता है और यही दृष्टिकोण हमें सकारात्मक बनाता है और एक सकारात्मक सोच हमारे पूरे जीवन को सुंदर बनाती है। एक शांत और खुली जगह पर बैठें जहां आप प्रकृति को महसूस कर सकें। आंखें बंद करके चित्त को शांत होने दें, आसमान को महसूस करें, खुले विशाल आकाश के नीचे खुद के व्यक्तित्व को महसूस करें। हवा की सरसराहट, पंछियों की आवाज़ें, प्राकृतिक प्रतिध्वनियाँ, इन्हें जज करने की बजाय इन्हें अपने ध्यान का हिस्सा बनाएं। सुबह ध्यान में सूर्य की गर्माहट और रात में चांद की शीतलता को गहराई से महसूस करें। अब धीरे से आंखों को खोलें और आकाश की ओर देखें और महसूस करें कि मन को एकाग्र करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो रोज सूरज, चांद, सितारों पर ध्यान केंद्रित करें और प्रकृति से कहें धन्यवाद। कहीं बर्फ की चादर, कहीं हरियाली का नज़ारा है, कहीं बर्फ की चादर, कहीं हरियाली का नज़ारा है, कुदरत का हर एक रंग यहाँ कितना प्यारा है। धरती का श्रृंगार है वृक्ष, जीवन का आधार है वृक्ष, ऋषि मुनियों की इस धरती पर ईश्वर का अवतार है वृक्ष। हाँ बहनों, हमारी संस्कृति में वृक्षों को हमेशा से ही देव स्वरूप मानकर पूजा जाता रहा है। तो चलिए इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हम आपको सुनवा रहे हैं ये वार्ता, वृक्ष हमारे पूज्य। वार्ताकार हैं सर्व मंगला रिचारिया।
1: बहनों, भारतीय संस्कृति में वृक्षों का विशेष महत्व है क्योंकि वे हमारे जीवन के प्राण हैं। पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में पेड़ पौधों को बड़ा पवित्र और देवता के रूप में माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में से सिर्फ पृथ्वी पर ही मानव जीवन है और उसकी वजह है पंच तत्वों से इसका निर्माण होना। पंच तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है वायु, और वायु हम प्राप्त करते हैं हरे भरे वृक्षों से। ईश्वर ने हमारी पृथ्वी को भरपूर प्राकृतिक वातावरण से सुसज्जित किया है। सारी धरती को हरियाली यानी हरे भरे वृक्षों की कीमती सौगात प्रदान की है, जिसकी बदौलत मानव एक स्वस्थ जीवन जी पाता है। जब से वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पौधों में भी जीवन होता है, लोक विश्वासों में दृढ़ता आई है। इसलिए पाप और पुण्य की अवधारणा भी इसके साथ जुड़ गई और देवतुल्य वृक्षों का संरक्षण पुण्य व उनका विनाश करना पाप स्वरूप समझा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य वृक्षों का आरोपण करता है, वृक्ष परलोक में उसका पुत्र होकर जन्म लेता है, और जो वृक्षों के पुष्पों को दान करता है वह समृद्धशाली होता है। आदि काल से ही मानव का प्रकृति के साथ गहरा संबंध रहा है। मनुष्य ने प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया और इन वृक्ष

वृक्षों के मीठे मीठे फलों को खाकर अपनी भूख को शांत किया और सूर्य की तपन से बचने के लिए इन्हीं वृक्षों को अपना आश्रय बनाया। सबसे महत्वपूर्ण प्राणदायिनी वायु यानी ऑक्सीजन भी इन्हीं वृक्षों से लेकर मानव ने अपनी निरंतरता को जीवित रखा। जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ता गया, वैसे वैसे वृक्षों का उपयोग भी बढ़ता गया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वृक्षों की उपयोगिता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अगर इस जगत में पेड़ पौधे न होते तो कुछ भी न होता। जी हाँ, वृक्षों के महत्व एवं गौरव को समझाते हुए हमारे पूर्वजों ने भी इसकी उपयोगिता एवं आराधना पर बल दिया है। बहनों, हमारी धार्मिक सभ्यता में हर वृक्ष की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। जैसे वट सावित्री के अवसर पर स्त्रियां अटल सौभाग्य देने वाले वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ती है। इसी तरह से पीपल के वृक्ष में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पर जल चढ़ाने से व इसकी पूजा करने से संतान सुख मिलता है। इसके तने पर सूत लपेटना व परिक्रमा लगाने का विधान शास्त्रों में भी बताया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक रखने से मानव जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयां दूर होती हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी इसे 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष बताया है। बहनों, इसके अतिरिक्त तुलसी की नित्य पूजा करके जल चढ़ाना, उसके पास दीपक जलाकर रखना भारतीय नारियों का एक धार्मिक कृत्य है। तुलसी को विष्णु भगवान की प्रिया मानकर इसकी पूजा की जाती है। तुलसी दल का भी विशेष महत्व माना जाता है। यह अकाल मृत्यु तक को हर लेती है। यहाँ तक कि हम अपनी हर पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करते हैं। ऐसा भी कहा गया है, जब तक पूजा और प्रसाद में तुलसी पत्र न रखा जाए तो भगवान भी उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। बहनों, हम देखते हैं कि तुलसी का कितना महत्व है। इसके अतिरिक्त इसे औषधि के रूप में भी माना जाता है। तुलसी का उपयोग हम दवाइयों एवं लेप के रूप में भी करते हैं। प्रतिदिन 5 पत्ती तुलसी की खाने से हम बीमारी से दूर रहते हैं। सर्दी खांसी में भी तुलसी की पत्ती की चाय बनाकर पीने से खांसी सर्दी दूर हो जाती है। यहाँ तक कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी खाने की वस्तुओं एवं पानी में तुलसी डाल देने से अशुद्ध नहीं होता है। बहनों, हम देखते हैं कि हर वृक्ष का अपना अलग अलग महत्व है और हर जगह वृक्ष को अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। जैसे गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके पत्ते पर भोजन करना शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि केरल जैसे राज्य में भोजन थालियों में न परोसकर केले के पत्ते में खाना शुभ माना जाता है। इसी तरह से अशोक अष्टमी के दिन अशोक वृक्ष की पूजा दुख को मिटाकर आशा को पूर्ण करने के लिए की जाती है। बहनों, इसके अलावा आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास मानकर कार्तिक मास में इसकी पूजा परिक्रमा करके स्त्रियां सुहाग का वरदान मांगती हैं तथा कार्तिक महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना भी शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आम के वृक्ष के पत्ते, मंजरी, छाल और लकड़ी यज्ञ और अनुष्ठानों में उपयोग की जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि वृक्षों का उपयोग धार्मिक दृष्टि ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नीम। नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसकी हर एक चीज उपयोगी है। जैसे नीम की पत्ती हम दवाई के रूप में करते हैं, ये कीटाणु नाशक होती है। साथ ही नीम की छाल एवं नीम की दातुन भी उपयोग में लाते हैं तथा नीम की पत्ती को चबाकर खाने से हमारे रक्त की शुद्धि होती है। अतः हम देखते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। औषधि के रूप में एवं धार्मिक दृष्टि से ये अपनी महत्वता बताते हैं। यहाँ तक कि ये हमें खाद्य पदार्थ तथा हमारे जीने के लिए उपयोगी प्राणवायु प्रदान करते हैं। अतः वृक्ष हर रूप में हमारे लिए उपयोगी है। बहनों, इन उपयोगों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वृक्षों का विनाश होता जा रहा है। आज मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए वृक्षों की कटाई करता जा रहा है। कभी आपने ये सोचा है कि वृक्षों का दिन प्रतिदिन कटना हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या बना सकता है? अगर प्राथमिक स्तर पर इसका परिणाम देखें तो हमारे लिए आवश्यक प्राणवायु ऑक्सीजन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस जिसे वृक्षों द्वारा अवशोषित किया जाता है वह वृक्षों के कटने से बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं और ऐसी ही समस्याएं आगे चलकर बहुत बड़ी हानि का कारण बन सकती है। जैसे हम देख रहे हैं कि वृक्ष के कटने से वर्षा भी अनियमित होती जा रही है, क्योंकि वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत वृक्ष

0: की है। वृक्ष ही बारिश का काम करते हैं, को आकर्षित करते हैं, और जब वृक्ष ही न होंगे तो प्रकृति का असंतुलित होना स्वाभाविक है। अतः हम सभी यह जानते हुए भी अपनी शक्तियों को बढ़ावा देते जा रहे हैं और जिससे हमें जीवन मिलता है उसको हम काटते जा रहे हैं। बहनों, अपनी थोड़ी सी ज़रूरतों के लिए हम पृथ्वी का विनाश करते जा रहे हैं। आज जिस तरह से अपने लाभ के लिए वृक्षों को काटकर प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है, बिना यह सोचे कि आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। बहनों, जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वृक्ष लगातार कम होते जा रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, तथा प्रदूषण, अनियमित वर्षा जैसे कई कारण सामने आते जा रहे हैं। अगर आज का मानव चाहे तो वह इस संतुलन को बिगड़ने से बचा सकता है, जैसे वृक्ष की कटाई कम करके, वृक्षारोपण करके। अतः वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी ही नहीं बल्कि हमारा जीवन ही है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करें। अतः इसी प्रवृत्ति को प्रबल करके इसकी वृद्धि और संरक्षण में सहयोग करें। इसके अलावा हम हर माध्यम से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी को वृक्ष आरोपित करने के लिए जागरूक करें और उन्हें इससे होने वाली समस्याओं के बारे में बताएं, जिससे आने वाले वक्त में हम अकाल तथा महामारी जैसे प्रकोपों से बच सकें। बहनों, अतः हम यह प्रण करें कि जितने वृक्ष काटे जाएं उससे ज़्यादा लगाए भी जाएं, ताकि प्रकृति की सुरक्षा के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता भी सुरक्षित रहे। कहा जाता है कि वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है, तो क्यों न हम वृक्ष लगाकर असंतुलित होते पर्यावरण और पृथ्वी के विनाश के संकट को कम करने में सहयोग करें। इसके अलावा हमारी हिंदू सभ्यता में ऐसे कई वृक्ष जैसे बेल, जामुन, महुआ, छेवला, पलाश की पूजा की जाती है और भी बहुत से उपयोग में लाया जाता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम वृक्षों को काटने से बचाएं, ताकि हमारी प्रकृति फिर से वैसी ही सुंदर और सुसज्जित दिखे।
1: अभी बहनें सुन रही थी ये वार्ता वृक्ष हमारे पूज्य। वार्ताकार थी सर्वमंगला रिछारिया। और लीजिए अब सुनिए पहली फिल्म का ये गीत सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री और साथियों के स्वर में। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है MM करीम ने।

बहनों, हर किसी को साफ सफाई बेहद पसंद होती है। साफ सुथरा घर, सलीके से सजा हर सामान हमारे मन को खुश कर देता है और हम बहनों को तो साफ सफाई बेहद पसंद होती है। मगर आवश्यकता से अधिक साफ सफाई की आदत कभी कभी समस्या भी बन जाती है, या यूं कहें ओवर क्लीनिंग की आदत कभी कभी थकान और अवसाद का कारण बन जाती है। घरेलू महिलाएं हों या फिर कामकाजी, ये प्रभाव कई स्तरों पर दिखाई देते हैं। जैसे दिनचर्या पर प्रभाव, शारीरिक मानसिक थकान, तनाव, चिंता, साथ ही नींद और मनोदशा भी प्रभावित होती है। साथ ही परिवार से दूरी भी देखने को मिलती है। अधिक साफ सफाई की वजह से दूसरों को काम ना करने देना या किसी का भी काम ना पसंद आना, इसके अलावा ओवर क्लीनिंग की वजह से सामाजिक अलगाव भी देखने को मिलता है। जैसे समारोहों और यात्राओं से बचना क्योंकि घर गंदा ना हो जाए, ऐसी सोच हमारे मन पर हावी हो जाती है और अक्सर तनाव का कारण बनती है। इन आदतों से आत्मविश्वास भी कम होने लगता है, जो कभी सुकून का प्रतीक हुआ करता था वही चिंता का कारण बन जाता है। घर की सफाई को लेकर बच्चों पर भी हम प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे वे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। घर है, घर में लोग हैं तो गंदा तो होगा ही, तो साफ सफाई करें मगर तनाव ना लें। सफाई जब मन की शांति छीनने लगे तब रुक कर जरूर सोचें। घर तभी सुंदर है जब तक उसमें ऊर्जा, प्रेम और संतुलन है। यदि अधिक सफाई की आदत आपको उलझन में डाल रही है तो मनोचिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। साथ ही अधिक समय सफाई को ना देकर परिवार के साथ समय बिताएं। योग, ध्यान, प्राणायाम के लिए भी समय निकालें। घर जीने के लिए होता है, दिखाने के लिए नहीं। थोड़ा बिखराव जीवन का हिस्सा है, विफलता का नहीं। बहनों, साफ सफाई तो बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, मगर खुद को तनाव देकर नहीं। घर को स्वच्छ सुंदर जरूर बनाएं, मगर अपनों के साथ मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुस्कुराने से मन के नकारात्मक विचार निकल जाते हैं और मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए घर की साफ सफाई के साथ साथ मन की सफाई पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि मन और मकान को समय समय पर साफ करना जरूरी होता है, वरना मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की बातें जमा हो जाती हैं। इसीलिए बहनों, अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, क्योंकि सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर, और तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें और खुश रहें। फिलहाल अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अगली मुलाकात तक के लिए अब अनुमति दीजिए हिमलता खरे को। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।

0: आकाशवाणी है ना।
1: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
0: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
2: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ पर्यावरण गीत। पहले सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक के स्वर में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा ये गीत। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कुछ पर्यावरण गीत। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं सतीश भूतानी। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है। इनकी आवाज में आज आप सुनेंगे गीत, गजल और भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सतीश भूतानी के गाए हुए कुछ गीत, भजन और गजल। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

0: कवि श्री राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हर शनिवार शाम 7 बजे

0: बजकर 45 मिनट से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियाँ।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, जब पेड़ मुस्कुराते हैं तो ऋतुएं गुनगुनाती हैं, और जब नदियां बहती हैं तो जीवन का संगीत सजता है। हरियाली धरती का श्रृंगार है, नदियां उसकी धड़कन और आकाश उसका विस्तार है। प्रकृति का ये अनुपम काव्य जीवन के होठों पर गीत सजाता रहे, इसी कामना के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर सुनिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

पेड़ों की छाओं में शीतलता है, फूलों की खुशबू में जीवन का उत्सव है। जब वृक्ष खिलखिलाते हैं तब जीवन गुनगुनाता है। नदियों की कलकल, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों का मधुर गान, यही तो वो संगीत है जिसके सुरों पर जीवन मुस्कुराता है।

0: Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth.
1: तो श्रोताओं, फूलों की सुगंध, बादलों की छांव और वृक्षों का स्नेह मनुष्य को मिलता रहे, इसी कामना के साथ आइए संकल्प लें कि धरती को हम उतना ही सुंदर बनाकर रखें जितनी सुंदर ये हमें विरासत में मिली है। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं। सूरत में वे 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं शाम को दमन में नामो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और नामो अस्पताल सहित करीब 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एयर ट्रंक कंपनी भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे भारत क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक केंद्र के रूप में और मजबूत होगा तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में भी पौधरोपण, संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
2: आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई। अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति संध्या वंदन, दीप प्रज्वलन के साथ, सूर्योदय देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ, अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में माचना नदी घाट पर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं रायसेन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण किया गया, जबकि गुना में एनसीसी इकाइयों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं सतना के बगहा में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर में 9 जून से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। अब रुक करते हैं

मौसम का प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी हैं। झाबुआ में सुबह तेज बारिश हुई, जबकि सीहोर, रायसेन और कई अन्य जिलों में भी मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने आज भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, श्योपुर सहित 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। केरल में मानसून 4 जून को पहुंच चुका है और प्रदेश में मानसून के 20 से 22 जून तक के बीच दस्तक देने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में मलेरिया निरोधक माह के तहत कल बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है संदेश के साथ एक प्रचार रथ को रवाना किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियंका नुंगो ने नर्मदापुरम प्रवास के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण तथा बैंक ऋण से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम 3.0 के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 1 जुलाई को होगी। और प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि छोटे तालाब जिनका किसी नदी से कोई संबंध नहीं है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत

0: तटस्थ रखा गया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से CAPF कर्मियों द्वारा लगभग 6 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं।
4: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगा

0: करने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया

0: गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
1: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
2: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर भोगी है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, दोपहर 2:30 का ये वक्त जबकि कुछ फुर्सत जिंदगी चुरा ही लेती है, जी हाँ, तो इन फुर्सत के लम्हों में आइए कुछ सुरीले नगमे आपकी ही फरमाइश पर आप तक भेजते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है सरस्वती चंद्र फिल्म से, आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। अनुरोध आप सबका है। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। निम्भोरा से अशोक देशमुख, शरद देशमुख, बबन जोशी, शिवाजी चौक बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ, अमोग वाघ। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। घंटाघर चौक खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। और ये खत आया हुआ है सोनुआ झारखंड से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदिनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत। खतो किताबत की सदा रस्म को जारी रखना, भूल न जाना हमें, याद हमारी रखना।

आपकी फरमाइश की अगली पेशकश हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता, गौरव और गरिमा शर्मा, नेपानगर से सुदर्शन शाह, ताविश शाह, कुंज शाह, पल्लवी, सुरभि, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जूंधले और आरती जूंधले, और ये खत आया हुआ है मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल की ओर से। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं पालकी फिल्म का गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। मुंह छिपाना था तुम्हें पहले ही रोज, अब किया पर्दा तो क्या पर्दा किया।

0: श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत बस कुछ ही पलों बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: इस अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है बहू बेगम। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की हैं, बोल साहिर लुधियानवी के और धुन रोशन की। अनुरोध आप सबका है। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता साहू, नेतराम और भूपेंद्र साहू। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। इसी गीत को पसंद करते हैं डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया। ग्राम सौगा मगरलोड धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन। और प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से ये हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं बहू बेगम फिल्म का ये गीत। ता उम्र तेरा इंतजार कर लेंगे, मगर ये रंज रहेगा कि जिंदगी कम है।

आगे बढ़ें उसके पहले एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों और आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in और hopairbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई। और अब आइए एक बार फिर गीत संगीत की ओर चलें। आपको सुनवाते हैं हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। कमर कॉलोनी बड़वाह से ये चिट्ठी आई है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की ओर से। आदर्श नगर मालोट पंजाब से ये खत आया हुआ है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा इसके लिखने वाले हैं। सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव और संदीप पाटिल की ये चिट्ठी है। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन की भी यही फरमाइश है। बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये चिट्ठी आई हुई है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को फिल्म बॉयफ्रेंड में। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। उनकी नजर की जुम्बिश से बन जाते हैं शोले शबनम, सारी दुनिया भूल गई है, याद करें अब किस किस को हम।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं। सूरत में वे 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एयर ट्रंक कंपनी भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0

अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में माचना नदी के घाट पर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इंदौर में 9 जून से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी छतरपुर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30, रात 8:35 और रात 9:45। शाम 6:00 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। रात 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कार्यक्रम। खेल जगत कार्यक्रम में रात 9:30 पर आप सुनेंगे नावेद इशरत की वार्ता फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026। आपकी फरमाइश प्रसारण समय रात 10:00 और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित राम स्वरूप रतौनिया का तबले पर बजाया रूपक ताल। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर किसान भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज किसान भाई सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का निर्धारित क्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्स, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल वेब्स OTT और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5:00 अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

एच पर ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ पर्यावरण गीत। कलाकार चंद्रभूषण पाठक, रमेश बाबू सोनी और रामनाथ अहिरवार। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए कुछ गीत, भजन और गजल। कलाकार सतीश भूतानी। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सतीश भूतानी के गाए हुए कुछ गीत, गजल और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कारवां फिल्म का ये गीत है और इसके बाद आप सुनेंगे आप आए बहार आई इस फिल्म का गीत।
1: प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हा।

झुक गया आसमान, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, शैलेंद्र का लिखा गीत और संगीत शंकर जयकिशन का। इसके बाद आप सुनेंगे अनजाना फिल्म का गीत।

कश्मीर की गली। कार्यक्रम का अगला गीत हमने इस फिल्म से लिया है। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जनभागीदारी का आह्वान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और इससे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी

0: प्रोग्राम 3.0 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और नॉर्वे शतरंज के नौवे दौर में प्रज्ञानंदा रमेश बाबू ने भारत के ही विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर खिताब की दौड़ में अपनी दावेदारी बरकरार रखी है। इस जीत के साथ प्रज्ञानंदा के 15 अंक हो गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हसीना मान जाएगी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे मेरे सनम फिल्म का गीत।

मेरे सनम फिल्म का ये गीत है मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है और संगीतकार ओ पी नैयर।

लता मंगेशकर की आवाज में। अगला गीत आप सुनेंगे, फिलहाल आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी को फिल्म राजकुमार में। अगला गीत पड़ोसन फिल्म से होगा।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए धारावाहिक सिसकियां की 10वीं कड़ी।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की 10वीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, सारे और मुश्ताक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फाता के न चाहने पर भी उनका मिलना जारी रहता है। सारे बगावत पर उतर आती है और रसूल के जुल्म सहने से इनकार कर देती है। मुश्ताक सायरे को तलाक दिलवाने के लिए वकील के पास जाता है। और अब आगे

0: वकील साहब, तो क्या रसूल और साराय का तलाक हो जाएगा?
1: मुश्ताक, कानूनी तौर पर तलाक की कोई वजह होनी चाहिए।
0: तो तलाक की वजह है? साराय खुद चाहती है कि वो रसूल के साथ ना रहे।
1: ये कोई सटीक वजह नहीं, कुछ और सोचना होगा।
0: वकील साहब, जब साराय उसके साथ रहना ही नहीं चाहती तो इससे ज्यादा तलाक की और क्या वजह होगी?
1: तलाक के लिए कोई ठोस वजह चाहिए भाई, इसके बिना तलाक संभव नहीं है।
0: वकील साहब, रसूल से सारे प्यार नहीं करती, रसूल सारे को मारता पीटता रहता है, क्या ये बड़ी वजह नहीं है तलाक के लिए?
1: ये तो सारे कह रही है, रसूल क्या कहता है हमें ये भी जानना होगा। एक पक्ष की बात पर हम केस नहीं जीत सकते।
0: वकील साहब, रसूल सारे को तलाक नहीं देगा।
1: अगर रसूल तलाक को राजी नहीं तब तो मुश्किल है, क्योंकि रसूल साराय का शौहर है और उसके कहे पर ही अदालत कार्रवाई करेगी।
0: लेकिन वकील साहब, रसूल अच्छा आदमी नहीं है, उसके कई औरतों से शहर में ताल्लुकात है, वो नशा करता है, मारपीट करता है, क्या इस वजह पर साराय को तलाक नहीं मिल सकता?
1: देखो मुश्ताक, मर्द अगर घर से माह दो माह के लिए बाहर रहे तो ऐसा संभव है, फिर भी आपको सबूत के तौर पर उन औरतों को अदालत में गवाही के लिए लाना होगा। अगर वो औरतें ये कबूल करें कि रसूल से उनके संबंध हैं, तो शायद तलाक मिल जाए। लेकिन एक दिक्कत और होगी, अगर रसूल ये साबित कर दे कि सारे उसके शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं करती और वो इसलिए उन औरतों से संबंध रखता है, तो सारे को तलाक नहीं मिल सकता।
0: लेकिन वकील साहब, ये सब साबित कैसे होगा?
1: अच्छा एक बात बताओ, सारे का कोई बच्चा है?
0: नहीं।
1: सारे कभी गर्भवती हुई?
0: नहीं।
1: सारे ने कभी रसूल को औरतों के साथ हम बिस्तर होते देखा है?
0: वकील साहब, ये लोग कहते हैं, सारे ने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम

0: अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब।
1: वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे।
0: मौलवी साहब, एक जरूरी मसले पर आपसे मशवरा लेना था।
1: आओ आओ बैठो। कहो क्या बात है?
0: वो तलाक के सिलसिले में।
1: तलाक? किसका तलाक?
0: सारे और रसूल का।
1: तलाक कौन देना चाहता है?
0: जी सारे
1: है? और रसूल?
0: रसूल नहीं चाहता मौली साहब।
1: ओ, तो ये मुश्किल है। देखो भाई, रसूल की इजाजत के बगैर सारे को तलाक नहीं मिल सकता।
0: लेकिन मौलवी साहब, सारे उसके साथ नहीं रहना चाहती।
1: देखो, एक बार निकाह हो जाने के बाद जब तक मर्द ना चाहे तलाक नहीं मिल सकता।
0: सारे उसके साथ खुश नहीं है मौलवी साहब, और रसूल कई औरतों से ताल्लुकात रखता है और सारे से अच्छा सलूक भी नहीं करता।
1: देखो भाई, हमारे इस्लाम धर्म के कानून के मुताबिक तलाक मर्द की इच्छा पर मुनसर करता है, और एक मर्द अगर चार निकाह भी कर ले तो भी वो जायज है। जायज है। औरतों को पाक साफ होना चाहिए। ऐसे में सारे को तलाक नहीं मिल सकता। अरे, हम इस्लाम मजहब के खिलाफ नहीं जा सकते। और सुनो, औरतों का अपना धर्म है, उसे निभाना चाहिए। और अगर कोई औरत उसे नहीं निभाती तो धर्म उसकी रक्षा नहीं कर सकता। और जहां तक मैंने सुना है, सारे रसूल को छोड़कर किसी और के साथ रहना चाहती है। अरे अरे, ये तो मजहब के खिलाफ है। एक औरत को ऐसी आजादी नहीं दी जा सकती।
0: कोई और रास्ता है मौलवी साहब?
1: देखो भाई, अगर सारे का खामिंद उसे तलाक देने को राजी हो तभी हो सकता है, लेकिन उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो तलाक नहीं माना जाएगा।
0: तो क्या एक औरत को आजादी से रहने का हक नहीं है?
1: देखो मुश्ताक, एक औरत की आजादी उसके परिवार वालों के हाथ होती है। उसका खामिंद अगर चाहे तो आजादी दे, नहीं तो उसके कहने पर चले। ये हमारा इस्लाम मजहब कहता है, और हम उसी मजहब पर चलते हैं। और सुनो, इस्लाम मजहब को

0: छोड़कर हम कोई और बात नहीं कर सकते, और अगर कोई औरत हमारे मजहब के खिलाफ जाती है तो हमारा मजहब सख्त सजा की वकालत करता है।
1: अच्छा मौलवी साहब, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।

0: तो क्या हमारा मजहब एक औरत को जुल्म सहने के लिए ऐसे छोड़ सकता है? सारे तुम यहां?
1: आओ अंदर आओ।
0: तुम्हारी ये हालत
1: वो
2: रसूल ने मारा है बेटा, लेकिन अब ठीक है। मुश्ताक बेटे, तलाक की क्या बात हुई? कब तक काम हो जाएगा?
0: अब्बू, जब तक रसूल तलाक देने को राजी नहीं होता तब तक तलाक नहीं हो सकता। हमें रसूल से कबूल करवाना होगा कि वो सारा को तलाक दे।
2: बेटा, मदरसे में जाकर मौलवी साहब से कुछ मशवरा करते, शायद वो हमारी कुछ मदद करें।
0: मैं उनसे मिल चुका हूं अब्बू। उनका कहना है कि अगर रसूल तलाक देना चाहे तभी सारे को तलाक मिल सकता है। वो हमारे बीच मजहब को आड़े ला रहे हैं, ऐसे में हम कभी भी नहीं मिल सकते अब्बू।
2: तब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है बेटा, कि हम रसूल से बात करें।
0: ठीक है अब्बू, ये काम आप खुद करें तो बेहतर होगा।
2: हाँ बेटा, मैं खुद ही रसूल से बात करता हूं।

0: ऐसा हरगिज नहीं हो सकता।
1: क्या?
2: लो चाय पियो।
1: देखो रसूल, मैं साफ साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि तुम सारे को तलाक दे दो।
0: मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता।
2: अम्मा मियाँ, पागल हो गए हो क्या? अपनी बेटी को तलाक दिलवाओगे?
1: हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मुझे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अरे, तुमने तो सारे को जीते जी मारने का काम किया है, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा।
0: मैं सारे को तलाक नहीं दे सकता।
1: रसूल, सारे अब तुम्हारी बीवी बनकर नहीं रह सकती। सारे तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए अब तुम सारे को तलाक दे दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
0: जब तक सारे को मैं तलाक ना दूं, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और सारे को पाने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। फाता, फाता तुम क्यों नहीं बोलती? मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया है, और इसी लालच में तुमने अपनी बेटी सारे का निकाह मुझसे करवाया, और अब तलाक देने को कहती हो?
1: देखो रसूल, अगर तुम सारे को तलाक देने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ।
0: सारे का हुस्न तो मेरा हो ही गया था, अब उसे छोड़ने के लिए देखो भाई, कम से कम 10,000 रुपये दो तो मैं सारे को तलाक दे दूंगा।
1: ठीक है, मैं जल्दी ही 10,000 रुपये तेरे हाथ में दूंगा।
0: तो ठीक है, जिस दिन पैसा दोगे उसी दिन तलाकनामे पर दस्तखत करूंगा मैं।
1: ठीक है, मैं अभी जाके मुश्ताक को बताता हूँ कि हमें जल्द से जल्द 10,000 रुपयों का इंतजाम करना होगा, ताकि हमें इस नामुराद से छुटकारा मिल सके। चाहता हूँ

0: बेटा।
1: हाँ अम्मी।
0: खाना खा ले।
1: अम्मी रख दो, मैं खा लूंगा, पहले काम खत्म कर लूं।
0: अरे क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी सेहत का तो ख्याल कर।
1: अम्मी मुझे जल्द ही 10,000 रुपए जमा कर रसूल को देने हैं।
0: मुश्ताक बेटा, मुझे तो लगता है रसूल सबको झांसा दे रहा है, वो ठीक आदमी नहीं है बेटा।
1: अम्मी उसने सारे को तलाक देने के बदले 10,000 रुपए मांगे हैं।
0: अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे बेटा, जल्दी से सारे का तलाक हो जाए, पर अपनी सेहत का भी तो ख्याल रख। चल खाना खा ले।
1: अम्मी तू बस अल्लाह से दुआ कर कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं।
0: हाँ हाँ, अल्लाह तेरी मुराद जल्द पूरी करेगा। तू सिर्फ सारे को ही नहीं बचा रहा बेटा, बल्कि उस जैसी कई औरतों के लिए एक नया रास्ता बना रहा है। लोग रिश्तों पर यकीन करें, उनमें एतबार बढ़े और वो एक दूसरे के जज्बात समझने की कोशिश करें, तो फिर किसी भी औरत की हालत सारे जैसी नहीं होगी।
1: अम्मी कोशिश तो मेरी यही है, पर पहले पैसे का इंतजाम हो जाए।
0: अकेला कितने पैसों का इंतजाम कर पाएगा, इसमें तो बहुत देर हो जाएगी बेटा।
1: अम्मी मेरे साथ हसन मियां भी तो हैं, वो भी पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे मेरा काम और आसान हो जाएगा।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हसन भाई जान ने भी बहुत दुख देखे हैं, चलो अब उन्हें भी थोड़ी राहत मिल जाएगी।
1: अम्मी अब तू जा, थोड़ी देर सो ले, अभी मुझे बहुत काम करना है।
0: ठीक है, पर खाना खा लेना।
1: हाँ हाँ खा लूंगा।
0: हाँ,
1: तू जा।
0: रख दिया है।
1: सलाम अब्बू।
2: वालेकुम सलाम। अरे मुश्ताक, आओ बेटा आओ, कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ अब्बू, आप कैसे हैं?
2: खैरियत है।
1: अब्बू आपने जैसा कहा था, मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब हमें रसूल को पैसा देकर तलाक नामे पर उसके दस्तखत ले लेने चाहिए।
2: मैंने भी कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है बेटा।
1: अब्बू फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए।
2: हाँ मैं अभी उसके पास जाता हूँ और तलाक नामे पर उसके दस्तखत लेकर आता हूँ।
1: अब्बू आज मेरे लिए बहुत ही मुबारक दिन है।
2: हाँ बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे और सारे के लिए भी मुबारक दिन है। आज से सारे के दुखों का अंत हो जाएगा, आज वो रसूल के जुल्म और सितम से मुक्त हो जाएगी।
1: अब्बू ये आप जैसे पाक दिल अब्बू की दुआ है कि हम फिर से एक बार मिल पाएंगे।
2: हाँ बेटा, ये तो तुम्हारी और सारे की पाक मोहब्बत है जो एक बार फिर तुम दोनों एक हो रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बत को बरकरार रखे। अच्छा बेटा, तो मैं रसूल के पास जाता हूँ और उसे पैसे देकर आता हूँ।
1: हाँ, मैं आपका यही इंतजार करता हूँ।
2: ठीक है बेटा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। इस मुबारक दिन का इंतजार मुझे भी था। जाता हूँ बेटा।

0: तलाकनामे पर दस्तखत तो करवा लिए, लेकिन सारे मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा।
1: सुनो भाई।
2: हाँ?
1: तुम एक काम करोगे?
2: रसूल भाई जैसा कहो करूंगा।
1: तुम्हें एक आदमी को खत्म करना है।
2: भाई पैसा खर्च करो तो काम हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस काम में माहिर हैं।
1: लेकिन इस काम को गुप्त तरीके से करना होगा कि हम पर किसी को शक भी ना हो।
2: इन वादियों में ऐसी घटना आम बात हो गई है। आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा।
1: तो ठीक है, काम के बाद पैसे मिल जाएंगे। फिलहाल ये रखो।
2: ठीक है, लेकिन मारना किसको है?
1: सारे और मुश्ताक को।
2: भाई लेकिन सारे तो आपकी बीवी है।
1: बीवी थी, मुझसे तलाक लेकर उस मुश्ताक से निकाह कर बैठी। आज तक औरतों को अपने पैर की जूती के नीचे रखता आया हूं, पर इस सारे ने मुझसे तलाक लेकर मुश्ताक से निकाह कर लिया।
2: ये तो बहुत बुरी बात है, एक औरत की इतनी हिम्मत कि मर्द के फैसलों के खिलाफ जाए। अरे उसे तो घर का काम करना है और शोहर की देखभाल करनी चाहिए, और वो आपको छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। ये तो बहुत बुरा है। आप फिक्र ना करें, हम आपका काम करवा देंगे।
1: ठीक है, अब जाओ, काम होने के बाद मिलना।
2: लेकिन वो लोग मिलेंगे कहाँ?
1: हसन भट्ट की कोठरी में वो दोनों होंगे। आज ही उनका काम तमाम कर दो।
2: ठीक है, हो जाएगा।
1: जाओ।

0: कौन? मुश्ताक, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी।
1: सारे सारे, आज हम एक बार फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे।
0: अब मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं?
1: नहीं सारे, नहीं। बस हमने अपनी परेशानियों को खुलकर नहीं रखा और यही वजह थी कि हमारे बीच दूरियां बढ़ी।
0: अब ऐसा कभी नहीं होगा मुश्ताक, मैं तुमसे वायदा करती हूँ। अब हम अपने परिवार को संभालने की कोशिश करेंगे।
1: सारे, परिवार की ताकत को समझो। अगर तुम्हारे अब्बू और मेरे अम्मी अब्बू ने हमारी मदद ना की होती तो शायद शायद हम कभी ना मिल पाते।
0: हाँ मुश्ताक, ये मुझे एक खौफनाक ख्वाब सा लगता है, पर अब ऐसा नहीं होगा मुश्ताक। हम एक रहेंगे, हम हर हाल में एक रहेंगे, मैं वायदा करती हूँ मुश्ताक।
1: सारे सारे, हमें एक दूसरे पर एतबार रखना होगा, तभी हम अपने ताल्लुकातों में आने वाले पलों को अपने हिसाब से रख पाएंगे। हाँ। और इसी से हमारे बीच कभी दूरियां नहीं आएंगी।
0: आप ठीक कहते हैं मुश्ताक, पर एक बात मैं जानती हूँ कि आपका प्यार जहाँ भी होगा वहाँ हम हर मुश्किल को आसान कर लेंगे। पर वायदा करो कि तुम मुझ पर भरोसा रखोगे और मुझे इसी तरह प्यार करते रहोगे।
1: सारे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और इसके लिए मुझ पर किसी का दबाव नहीं है और मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा।
0: मुझे विश्वास नहीं होता कि हम फिर से एक हैं। हमारे जीवन में ये मुबारक दिन भी आएगा, मैं तो इसका विश्वास ही खो बैठी थी मुश्ताक।
1: आज हमारे लिए मुबारक दिन है, बहुत मुबारक दिन।
0: मुश्ताक, आज अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मैं कभी की मर गई होती।
1: सारे, इस मुबारक घड़ी में ऐसे तो ना बोलो।
0: आप नहीं जानते मुश्ताक, ये दिन मैंने किस तरह गुजारे हैं।
1: वो सब एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। सारे, अब हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है और पुराने दिनों को याद कर यूं दुखी होने की

0: ये जरूरत नहीं है
1: मुश्ताक। अगर मुझे आपका प्यार ना मिला होता तो रसूल के जुल्म और उसके लिए जख्मों को मैं कभी ना सह पाती।
0: छोड़ो भी ये सब बातें, अब हमें नई जिंदगी शुरू करनी है।
2: और ये देखो, ये लाल रंग का फैन मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से तैयार किया है। जाओ जाओ, जल्दी से इसे पहन लो।
1: इसे आपने बनाया है?
2: हाँ सारे, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: इसकी क्या जरूरत थी?
2: नहीं, तुम्हें हो या ना हो, पर मुझे थी। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूँ।
1: ऐसा ना कहो।
2: क्यों ना कहो, आखिर तुम मेरी बीवी हो।
1: मुश्ताक, आप अब मेरा साथ कभी ना छोड़ना। मैं अपने रास्ते से भटक गई थी और उसका नतीजा मैं भुगत चुकी हूँ।
2: अरे सारे, तुम रो रही हो?
1: नहीं मुश्ताक, मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं।
2: तुम ऐसा ना सोचो सारे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
1: ये आपका ही तो विश्वास है कि सारे आज आपके सामने खड़ी है, वरना मैं तो कभी की हिम्मत हार चुकी थी।
2: ओहो सारे, अब यूं ही बातें करती रहोगी या ये फेरे पहन कर भी दिखाओगी?
1: हाँ, मैं अभी इसे पहन कर आती हूँ, बस अभी आई।
2: सच कहूँ सारे, इस जोड़े में तुम बिल्कुल रानी लग रही हो। खुदा किसी की नजर ना लगाए।
1: ओहो, देखो तो कौन आया है।
2: हाँ देखता हूँ।
3: तुम मुश्ताक हो?
2: जी कहिए।
3: और घर में कौन कौन है?
2: घर में मैं और मेरी बीवी सारे है।
4: संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां की 10वीं कड़ी। ये आकाशवाणी भोपाल है, हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों बाद।

0: मीडियम वेव 188.32 यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंच गए हैं, जहां वे आज 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

इनमें सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। वे आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पौधा लगाया और लार्सन एंड ट्रूबो के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से विश्व पर्यावरण दिवस पर जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा कि पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और वन्य जीव हमारे जीवन के आधार हैं। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम 3.0 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी हैं। मौसम विभाग ने भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के खास युववाणी कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, साथ ही भेंट वार्ता और होंगे मनोरंजन के लिए गीत भी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारी इस चर्चा के साथ, जिसका विषय है विश्व पर्यावरण दिवस। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 1972 में की गई थी और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सन 1973 को मनाया गया था। यह दुनिया भर में सबसे बड़ा पर्यावरण जागरूकता मंच है, जिसमें 140 से अधिक देश आधिकारिक रूप से भाग लेते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वच्छ हवा, पानी और सुरक्षित जैव विविधता के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी गंभीर समस्याओं को नियंत्रित करने पर इस दिन विशेष मंथन होता है। हर वर्ष एक खास थीम निर्धारित की जाती है, जैसे प्लास्टिक प्रदूषण का अंत, ताकि एक निश्चित लक्ष्य पर काम किया जा सके। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए इस दिन व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह सिर्फ सरकारों का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य तय करता है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और कचरे का उचित निपटान करें। यह दिन हमें वनों, प्राकृतिक संसाधनों और लुप्त प्राय जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का संदेश भी देता है। स्कूलों, कॉलेजों और कॉरपोरेट कार्यालयों में रैलियों, निबंध प्रतियोगिताओं और सेमिनारों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। इसका मूल मंत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा ग्रह बचाना है, ताकि वे भी सुरक्षित वातावरण में सांस ले सकें। साथियों, ये तो थी हमारी एक छोटी सी चर्चा विश्व पर्यावरण दिवस पर। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेकर चलते हैं आपको वार्ता की ओर। वार्ता का विषय है रील्स बनाम रियल और हमारा युवा। वार्ताकार हैं अदिति शुक्ला। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त

अदिति और आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 675 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आज हर युवा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, रील्स की दुनिया, जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। यही रील्स की दुनिया का हमारे रियल लाइफ में क्या असर पड़ता है, आज हम बात करेंगे रील्स वर्सेस रियल की। दोस्तों, आज का समय डिजिटल युग का समय है। मोबाइल फ़ोन अब केवल बातचीत का साधन नहीं रह गया है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया है। सुबह आँख खुलते ही लोग सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं और रात को सोने से पहले आखिरी बार भी मोबाइल ही देखते हैं। इन सब के बीच जो खाली समय मिलता है वो भी मोबाइल देखने में ही चला जाता है। और इस सब में सबसे ज़्यादा अगर युवाओं को कोई चीज़ आकर्षित कर रही है तो वो है सोशल मीडिया रील्स। कुछ सेकंड की छोटी छोटी वीडियोस आज लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। मनोरंजन, फैशन, डांस, कॉमेडी, फिटनेस, शिक्षा, यात्रा, खाना बनाना, हर तरह की जानकारी अब रील्स के माध्यम से ही मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम रील्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर रील्स धीरे धीरे हमें नियंत्रित करने लगी हैं? क्या यह केवल मनोरंजन है या फिर हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं? आइए आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। श्रोताओं, अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो लोगों के पास खाली समय में करने के लिए अलग अलग चीज़ें हुआ करती थीं। कोई किताबें पढ़ता था, कोई दोस्तों के साथ समय बिताता था, कोई खेल खेलता था या फिर परिवार के साथ बैठकर बातें किया करता था। लेकिन आज की स्थिति काफ़ी बदल गई है। जैसे ही लोगों को खाली समय मिलता है वे तुरंत मोबाइल खोलकर रील्स देखने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि केवल 2 मिनट के लिए मोबाइल खोलते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल गया। यही रील्स की सबसे बड़ी ताकत है। ये वीडियो इतनी तेजी से बदलती है कि हमारा दिमाग लगातार नई चीज़ें देखने का आदि हो जाता है। वैसे रील्स का सकारात्मक पक्ष भी है। आज बहुत से युवा अपने हुनर को दुनिया के सामने ला पा रहे हैं। छोटे शहरों और गांवों के युवा भी अपनी प्रतिभा दिखाकर पहचान बना रहे हैं। कोई गाना गाकर लोकप्रिय हो रहा है, कोई डांस से लोगों का दिल जीत रहा है, तो कोई शिक्षा से जुड़ी जानकारी देकर दूसरों की मदद कर रहा है। आज कई शिक्षक भी रील्स के माध्यम से कठिन विषयों को आसान भाषा में समझा रहे हैं। फिटनेस ट्रेनर्स स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहे हैं। छोटे व्यवसाय करने वाले लोग अपने काम का प्रचार कर रहे हैं। यानी रील्स केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि रोजगार और अवसर का भी मंच बन चुकी है। कई युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना करियर बनाया है। कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर्स बने, कुछ वीडियो एडिटर्स, तो कुछ डिजिटल मार्केटर्स और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इससे यह साफ है कि अगर सही तरीके का उपयोग किया जाए तो सोशल मीडिया युवाओं के लिए नए अवसर के दरवाजे खोल सकती है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। रील्स की दुनिया जितनी आकर्षक दिखाई देती है, वास्तविक जीवन उतना आसान और परफेक्ट नहीं होता। सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों की जिंदगी का केवल एक अच्छा हिस्सा दिखाई देता है। महंगे कपड़े, शानदार होटल्स, घूमना फिरना, लग्जरी गाड़ियाँ, हमेशा खुश रहने वाले चेहरे, ये सब देखकर कई युवाओं को लगता है कि उनकी जिंदगी दूसरों से कम अच्छी है। धीरे धीरे तुलना करने की यह आदत आत्मविश्वास को कमज़ोर करने लगती है। लोग सोचने लगते हैं कि वो दूसरों जितने सफल या सुंदर नहीं हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली जिंदगी

0: पूरी सच नहीं होती। कैमरे के पीछे का संघर्ष, तनाव और मेहनत भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। आज कई युवा केवल लाइक्स और व्यूज़ पाने के लिए अपनी असली पहचान बदलने लगे हैं। कुछ लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो केवल लोगों का ध्यान खींचे, और दूसरों की नकल करते करते वो अपनी असली पहचान खोने लगे हैं। दोस्तों, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि अब लोग किसी भी खूबसूरत जगह पर या तो घूमने जाएं या फिर परिवार के साथ बैठें, कैमरा पहले खुल जाता है। धीरे धीरे हम अपने पलों को जीने की जगह उसे रिकॉर्ड करने में ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं। इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ रहा है। पहले परिवार के लोग साथ बैठकर बातें किया करते थे, लेकिन अब कई घरों में सभी लोग एक ही कमरे में बैठकर भी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। दोस्ती भी अब ऑनलाइन चैट और इमोजी तक सीमित होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। हर समय फोन चेक करना, नोटिफिकेशन का इंतजार करना और दूसरों से अपनी तुलना करना तनाव और चिंता को बढ़ा सकता है। कई युवाओं में अकेलापन की भावना भी बढ़ रही है। श्रोताओं, हमें यह समझना होगा कि तकनीक हमारे लिए ही बनी है, हम तकनीक के लिए नहीं। मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग तभी तक अच्छा है जब तक वह हमारी ज़िंदगी को आसान बनाए, ना कि हम पर हावी हो जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग संतुलित तरीके से करें। अगर आप रील्स देखते हैं तो अपने समय की सीमा तय करें। हर समय फ़ोन हाथ में रखने की आदत को कम करें। दिन का कुछ समय मोबाइल के बिना बिताने की कोशिश करें। दोस्तों और परिवारों के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत करें, किताबें पढ़ें, खेल कूद में हिस्सा लें, संगीत सुनें और प्रकृति के बीच में समय बिताएं। अपनी वास्तविक ज़िंदगी को सोशल मीडिया की दुनिया से ज़्यादा महत्व दें। और सबसे ज़रूरी बात, खुद की तुलना किसी और से मत करिए। हर व्यक्ति की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। दोस्तों, रील्स की दुनिया हमें मनोरंजन, जानकारी और अवसर देती है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम उसका उपयोग समझदारी से करें। तकनीक तभी फायदेमंद है जब हमारे नियंत्रण में रहे। हमें डिजिटल दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच सही संतुलन बनाना सीखना होगा, क्योंकि असली खुशियाँ लाइक्स और व्यूज़ में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए समय, सच्ची दोस्ती, अच्छे स्वास्थ्य और मन की शांति में होती है। तो आइए हम सब भी यह संकल्प लें कि सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, लेकिन उसे अपनी जिंदगियों पर हावी नहीं होने देंगे। रील्स देखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, लेकिन अपने वास्तविक जीवन और रिश्तों को कभी नहीं भूलेंगे। इसी संदेश के साथ मैं अदिति आप सभी से विदा लेती हूँ। यह कार्यक्रम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: दोस्तों, अभी हमने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था रील्स बनाम रियल और हमारा युवा, जिसमें वार्ताकार थी अदिति शुक्ला। आइए साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं हमारी अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है प्राकृतिक खेती। यह खेती रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और बाहरी आदानों यानी इनपुट्स पर निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य जैविक कचरे और प्राकृतिक पोषक तत्वों का उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य और सूक्ष्म जीवों को पुनर्जीवित करना है। इसमें फसलों की वृद्धि और कीट नियंत्रण के लिए गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन से बने जीवामृत तथा बीजामृत का प्रयोग होता है। यह प्राकृतिक दृष्टिकोण किसानों की खेती की लागत को लगभग शून्य कर देता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। यह विधि पर्यावरण के अनुकूल है, जो भूमिगत जल को प्रदूषित होने से बचाती है और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। खेत की नमी को बनाए रखने और खरपतवार को रोकने के लिए मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों से ढकने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रणाली में पानी

पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, जिसमें वर्षा जल का अधिकतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है। प्राकृतिक तरीके से उगाई गई उपज रसायन मुक्त, पौष्टिक और मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। इसमें कम से कम जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और केंचुए जैसे मित्र जीवों को नुकसान नहीं पहुंचता। इसमें मुख्य फसल के साथ अन्य सहायक फसलें और पेड़ भी उगाए जाते हैं, जो मिट्टी की नाइट्रोजन क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा प्राकृतिक खेती पर। आइए श्रोताओं, आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना ये था फिल्म रश से, जिसके गायक थे ऐश किंग, मुअज्जम और रिजवान अली खान, जिसके गीतकार थे आशीष पंडित और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं हमारी अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है गांव के विकास में युवाओं की भूमिका। युवा किसान वैज्ञानिक तरीकों, जैविक खेती और ड्रम सीडर या ट्रैक्टर जैसे उन्नत उपकरण

उपकरणों का उपयोग करके कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। गांव में युवाओं द्वारा ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं जैसे आधार अपडेट, बिल भुगतान के बारे में जागरूक किया जा सकता है। शिक्षित युवा अपने गांव के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन और मार्गदर्शन देकर शिक्षा का स्तर ऊपर उठा सकते हैं और ड्रॉपआउट दर को कम कर सकते हैं। युवा बढ़ईगिरी, सिलाई, कंप्यूटर जैसे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके अन्य ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। युवा स्वच्छता अभियान चलाकर शौचालय निर्माण को प्रेरित करके और स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर गाँव को बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त गांव का अभियान चलाकर युवा पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। स्थानीय उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, शहद, अचार को ऑनलाइन माध्यमों और सोशल मीडिया से जोड़कर युवा उन्हें उचित बाजार दिला सकते हैं। गांव में खेल के मैदानों का विकास करके और टूर्नामेंट आयोजित कर युवा पीढ़ी को नशे और गलत आदतों से दूर रखा जा सकता है। युवा ग्राम पंचायत और सरकारी अधिकारियों के बीच की कड़ी बनकर ग्रामीणों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं। युवा वर्ग बाल विवाह, दहेज प्रथा और लिंग भेद जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा या संकट के समय युवा दल वॉलंटियर के रूप में आगे आकर गाँव की सुरक्षा और राहत कार्यों में भी अहम योगदान दे सकते हैं। कुछ इन कार्यों के द्वारा गाँव के विकास में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन सकती है। युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी गाँव के विकास में युवाओं की भूमिका विषय पर। आइए अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी हमने ये जो गीत सुना ये था फिल्म बॉबी से, जिसमें आवाज़ थी शैलेंद्र सिंह की, जिसके गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए साथियों, अब आपको दे देते हैं रोजगार सूचना भी। एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है ग्रुप बी एंड सी। पदों की संख्या है 12,256, जिसमें आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 32 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.ssc.gov.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम खरे को। नमस्कार।

0: ही तो सुना है हमने, सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
6: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5:33 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक का ये गीत। शंकर महादेवन और अलैजा मेंडोंजा की आवाज़ें हैं। जावेद अख्तर का लिखा यह गीत, जिसे संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म लव आजकल से। इरशाद कामिल के लिखे बोल प्रीतम का संगीत और आवाज़ें हैं मास्टर सलीम, नीरज श्रीधर और सूजी क्यूकी।

वाजिद, ममता शर्मा और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म दबंग 2 से। समीर अंजान के लिखे बोल और साजिद वाजिद का संगीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। आइए सुनते हैं फिल्म बर्फी से। श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज़ें हैं। स्वानंद किरकिरे की शब्द रचना और इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

मोहित चौहान की आवाज़ में सुना आपने इरशाद कामिल का लिखा ये गीत फिल्म रॉकस्टार से। इस गीत को संगीत दिया था एआर रहमान ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है और गैस सप्लाई चेन चरमरा रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों की साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से सामना कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास को पर्यावरणीय संवेदनशीलता और दीर्घकालिक सतत विकास की अवधारणा के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आधुनिक सड़क एवं परिवहन नेटवर्क के निर्माण के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देना है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई माह में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद यह वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन अगले महीने की 31 तारीख तक खुले रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं जो 15 मार्च से शुरू हुई हैं वे केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी और प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और इनसे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
0: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
0: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
1: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
0: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
1: और डोंडी दोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
0: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
0: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
0: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
0: जी,
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
0: जी,
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
0: जी,
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
0: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
0: क्या बात है!
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
0: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
0: जी।
1: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
0: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता
0: जी।
1: है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी,
1: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं,

0: सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करी।
4: खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज,
1: महाराज
5: बताइए।
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज, बहुत कृपा।
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
0: इसमें संदेह नहीं है महाराज।

0: आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
0: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
2: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
3: हुआ? मेरे साथ मिला, मुझे भी नकली हो सकता है
2: यार। क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम
3: कैसे
2: हो
3: सकता है? नकली ही ना तो सकता,
2: नकली कैसे आ गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
0: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ लें महाराज।
1: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
0: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
0: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूं। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
4: महाराज की जय! महाराज की
5: जय!
4: महाराज की
5: जय!
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
8: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलड़ू मैं चल चलू।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं।

पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है विश्व पर्यावरण दिवस पर पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसी विषय पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ये दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि आत्म मंथन का अवसर है। हमारी प्रकृति कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि हम उससे जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, इस बार का विषय जलवायु पर केंद्रित है, प्रकृति की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार भोपाल द्वारा राजधानी भोपाल में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में पर्यावरण संरक्षण और हरित वातावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने को लेकर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 11 बजे से हुई, जहां पर उपस्थित अतिथियों साथ ही

भोपाल की प्रथम नागरिक माननीय महापौर श्रीमती मालती राय ने भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के प्रांगण में पौधारोपण किया। पौधारोपण

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसी विषय पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ये दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि आत्म मंथन का अवसर है। हमारी प्रकृति कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि हम उससे जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, इस बार का विषय जलवायु पर केंद्रित है, प्रकृति की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा राजधानी भोपाल में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में पर्यावरण संरक्षण और हरित वातावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने को लेकर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 11 बजे से हुई, जहां पर उपस्थित अतिथियों साथ ही भोपाल की प्रथम नागरिक माननीय महापौर श्रीमती मालती राय ने भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के प्रांगण में पौधारोपण किया। पौधारोपण के संबंध में हमें जानकारी दी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के मीडिया ऑफिसर मोहम्मद रेहान ने।
1: आज आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून, और ये दिवस हम सबको ये याद दिलाता है कि हमें जागरूक रहना चाहिए अपने पर्यावरण के प्रति, क्योंकि पर्यावरण आज एक ऐसी विश्व की समस्या है कि जो भविष्य के लिए अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ देना है, अगर उनको अच्छी हवा और अच्छा पानी और अच्छा पर्यावरण देना है, तो आज हमें जागरूक होना पड़ेगा। और इसी जागरूकता के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अपना कार्य कर रहा है और प्रत्येक वर्ष मानव संग्रहालय पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। PIB और मानव संग्रहालय के सहयोग से आज हमने अभी पौधारोपण का कार्य किया, और इसमें हमने लगभग 100 पौधे लगाए हैं मानव संग्रहालय में सबने मिलकर, और इसके पश्चात दिन भर और भी कार्यक्रम चलेंगे।
0: सर, जो पौधे लगाए हैं वो किस किस्म के पौधे?
1: बहुत अच्छा सवाल है। पौधे हम ऐसे चुनते हैं, लगाते हैं जो पर्यावरण के प्रति जो है जो साफ हवा दें। इसमें पीपल बहुत महत्वपूर्ण पौधा होता है, नीम करंज का पेड़ लगाया है, जामुन का पेड़ है, बरगद के पेड़ हैं, और इसी तरीके से हमने और भी जो ऐसे पौधे जो पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, इस तरीके के पौधे हमने यहाँ पर रोपित किए हैं।
0: इसके बाद अगले चरण में विषय विशेषज्ञों के साथ में पर्यावरण पर केंद्रित वार्ता हुई। वार्ता के संबंध में जानकारी हमसे साझा की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के PRO श्री हेमंत सिंह परिहार ने।
2: ऑल इंडिया रेडियो को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। ये पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पिछले कई वर्षों से इस पर्यावरण दिवस को बृहद स्तर पर मनाता है। इस बार भी हम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के सहयोग से इस कार्यक्रम को यहाँ किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भोपाल की प्रथम नागरिक महापौर नगर निगम श्रीमती मालती राय ने सुबह वृक्षारोपण कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनके साथ ही आज कार्यक्रम में जो मनीष गौतम जी डायरेक्टर PIB हैं वो थे, पराग मांदले जी असिस्टेंट डायरेक्टर, आकाश उपाध्याय जी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जो विशिष्ट अतिथि जो आए थे, जो पर्यावरणविद हैं, जो इस विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी, डॉक्टर योगेश दुबे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रोफेसर हैं, उन्होंने दैनिक जीवन में पर्यावरण संरक्षण के ऊपर अपनी बात रखी। वो पर्यावरणविद तो हैं ही, लेकिन उनका कहना है कि पर्यावरण के बारे में जितनी भी बातें सेमिनार में संगोष्ठियों में बोली जाती हैं, उन बातों को लोग अपने जीवन में यदि अमल में लाएं तो पर्यावरण का ज़्यादा संरक्षण होगा। वो खुद बताते हैं कि आपको अपने दैनिक जीवन में कम से कम एनर्जी का उपयोग करना चाहिए, प्लास्टिक का तो उपयोग न के समान करना चाहिए, इवन खाने में भी वही चीज़ खानी चाहिए जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो वो प्रैक्टिकल पर्यावरणविद हैं, तो उनकी बातों के लोगों ने अनुसरण किया, और कार्यक्रम के अंत में उनके द्वारा एक शपथ भी दिलाई गई कि आज एक हम शपथ लें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण शुद्धि के लिए हम काम करेंगे, हम जल का संरक्षण करेंगे, हम पानी को बचाएंगे। प्रोफेसर दुबे का कहना था कि लोग, कई सारे लोग एक मोबाइल एक साल रखते हैं, दूसरा मॉडल आया था दूसरा ले लेते हैं, कई सारी चीज़ें अनावश्यक रूप से खरीदते रहते हैं। केवल जरूरत के अनुसार ही चीज़ों का उपयोग करें, न कि अनावश्यक चीज़ों का संग्रह करें, ये विशेष बात आज आई। उसके साथ ही डॉक्टर मीना अग्रवाल एसोसिएट प्रोफेसर मैनेट कॉलेज भोपाल, उन्होंने ऊर्जा संरक्षण से

0: और पर्यावरण संवर्धन के ऊपर बात करी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा का संरक्षण कैसे करना है, ऊर्जा को कैसे बचाना, उसके ऊपर कई सारी टिप्स उन्होंने दी। साथ ही प्रोफेसर गिरीश जोशी, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से आए थे, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में आज की क्या जरूरत है उसके ऊपर प्रकाश डाला। साथ ही प्रोफेसर तरुण सेन, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने जागरूकता कार्यक्रमों में सोशल मीडिया की भूमिका के ऊपर जवाब डाला। लोग सोशल मीडिया का यूज तो करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का यदि सार्थक यूज करें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, उससे भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। और मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर अमिताभ पांडे ने भी अपनी शुभकामनाएं आज के दिन सभी लोगों को दी। और चूंकि वो आज श्रीनगर में एक बड़े प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, तो वहां से लगातार कार्यक्रम की फीडबैक ले रहे थे, और हमारे बीच में जितने भी लोग आए, जितने भी पत्रकार आए, सभी ने इस प्रोग्राम को बहुत सार्थक बताया। तो मैं पुनः आप सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और एक संदेश देना चाहूँगा कि जल है तो जीवन है और जल है तो कल है, तो जल को बचाने का प्रयास करें।
1: अतिथियों से हमने जाने उनके विचार पर्यावरण संरक्षण को लेकर। सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण के लिए हमारे साथ में है
2: मायसेल्फ डॉक्टर मीना अग्रवाल। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर एट मैनेज भोपाल इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग।
1: किस तरह से ऊर्जा संरक्षण किया जाना चाहिए और क्यों जरूरी है?
2: ऊर्जा संरक्षण आज तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस से हम आज नहीं, बहुत पहले से भी, 1971 का जो ऑयल क्राइसिस आया, वहां से हम सबको पता लगा कि भाई एनर्जी के रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो फिर हमको एनर्जी तो सेव करना ही पड़ेगा, कंजर्व तो करना ही पड़ेगा, और हमेशा ही डिमांड तो बढ़ती जा रही है, अभी एवर इंक्रीजिंग डिमांड है, एंड अवर सोर्सेस के नॉट उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संसाधन जो है, एनर्जी रिसोर्सेज जो है, वो तो सीमित ही है, लिमिटेड है। कुछ रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे अभी 50 साल में, कुछ रिसोर्सेज 100 साल में, तो इसलिए हम लोग नए नए संसाधनों का खोज करते हैं, एक तरफ ऊर्जा के लिए कि जिससे ऊर्जा की जो डिमांड है वो पूरी हो सके, बट हमको साथ साथ मैनेज करना भी जरूरी है, कंजर्व करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसे हम ऊर्जा को बचाएंगे तो फिर हम उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कंजर्वेशन का एक ही रहता है कि भाई आपका कंफर्ट से हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कंफर्ट तो रहे बट विद अवेयरनेस रहे, यूटिलाइज तो करना है बट मिसयूज नहीं करना है, तो इसलिए कंजर्व करें, जितना हम बचत कर सकते हैं बचत करें, तभी हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा पाएंगे। सस्टेनेबल लिविंग की बहुत ज़रूरत है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, अदरवाइज हमारे पृथ्वी पे कुछ बचेगा ही नहीं, हम ही लोग सब खत्म कर देंगे तो कैसे चलेगा, इसलिए ऊर्जा संरक्षण हर तरीके से आवश्यक है।
1: केंद्र सरकार की हरित वसुंधरा को लेकर क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं
3: पराग मांदले, असिस्टेंट डायरेक्टर केंद्रीय संचार ब्यूरो भोपाल। आज यहाँ पर पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा किया गया। इसमें पर्यावरण से जुड़ी हुई केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी भी जानकारी दी गई। उनमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि ग्रीन इंडिया मिशन है, इसके अलावा नगर वन योजनाएं हैं, जो शहरों में एक छोटा सा वन या ऑक्सीजन सेंटर तैयार करने का हम कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से, उस तरह की ये योजना है। मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में 94 जगहों पर इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा दुनिया का जो सबसे बड़ा जन अभियान है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, वो एक पेड़ माँ के नाम का है, जो 2024 में शुरू किया गया था, और इसमें अब तक जो है कम से कम 263 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नमामि गंगे परियोजना जो है वो शुरू की गई है। इसके अलावा नदियों में जो सीवेज का पानी जाता है तो वो शुद्ध होकर परिष्कृत होकर जाए, उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अलग अलग नदियों के बनाए जा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत भी अभी तक 138 STP जो है वो पूरे हो चुके हैं और टोटल 218 STP पर काम चल रहा है। इसके अलावा जो वेटलैंड होता है, आर्द्र भूमि, उसके संरक्षण के लिए और उसी के साथ में मैंग्रोव के संरक्षण के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा जो हमारे वन्य जीव हैं, जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त हो रहे हैं, तो उनके संरक्षण के लिए भी अलग अलग योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई है। उसमें से जो सबसे चर्चित योजना हम सब जानते हैं कि जो चीता है, जो हमारे यहाँ से खत्म हो चुका था पूरी तरह से, तो उसको वापस लाने के लिए यह पहला ऐसा योजना थी कि किसी जंगली मांसाहारी पशु का स्थानांतरण अंतर महाद्वीपीय स्तर पर किया गया हो। तो उसमें दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से और बोत्सवाना से चीते लाए गए थे, और अब धीरे धीरे उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी तरह से प्रोजेक्ट टाइगर में भी लगातार बाघ अभयारण्यों को बढ़ाने और साथ में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए भी काम चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन लाइफ जैसे प्रोग्राम भी चला रहे हैं। तो कुल मिला के हर स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण भी हो और संवर्धन

0: भी हो, इसके लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है।
1: हमारी भारतीय संस्कृति में किस तरह से पर्यावरण को जोड़ा गया है जिसे आम जन पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए बता रहे हैं।
2: मैं गिरीश जोशी हूँ। मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव के पद पर काम करता हूँ। नमस्कार सभी को। और आज पर्यावरण दिवस है। हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण यह विषय इतना पुराना है जिसकी कल्पना आज की पीढ़ी को नहीं हो सकती। दरअसल हमारे माना गया कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, मतलब ये पृथ्वी मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ या पुत्री हूँ। चूंकि हमारा लालन पालन पोषण यही होता है, हम जो भी भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, यानी हमारे पोषण के लिए जो आवश्यक होता है सब धरती देती है। इसलिए अपनी जन्मदात्री माँ के बाद उसको हमने महत्व दिया। उसके जो अंग है जैसे नदी है, पहाड़ है, वृक्ष है, उन सबके प्रति भी फिर हमारी भावना बदल जाती है। भाव हमारे संस्कृति में डाला गया, इसीलिए डाला गया था मुझे लगता है, ताकि हम जो अपरोक्ष रूप से जो पर्यावरण संरक्षण का विषय है ये हमारे प्रैक्टिस में इजीली आ जाए। हमारे बुजुर्ग हमको सिखाते थे कि उठते से ही अगर धरती पर भी पैर रख रहे हैं तो हम एक श्लोक कहा करते थे, मैं उठा हूँ और मैं पैर आप पे रखने जा रहा हूँ, मैं इस गलती के लिए आपसे पहले से ही क्षमा याचना करता हूँ। यहाँ से हमारा पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा शुरू होता था। फिर हम जब बाहर निकलते थे, भगवान सूर्य को देखते थे, तो सूर्य को अर्घ देने की हमारे यहाँ परंपरा थी, दीपदान की हमारे यहाँ परंपरा थी। बट इस पर्यावरण में हर चीज के प्रति हमारे भीतर श्रद्धा का भाव पैदा किया गया, आचरण में लाया गया। क्योंकि हम लोग भारतीय लोग सामान्य रूप से बड़े भाव प्रधान होते हैं और हमारी भावना जो है वो धार्मिकता से ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होती है। तो उन भावनाओं के आधार पर हर प्रैक्टिसेस को, जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप देखें जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को ही एड्रेस करती थी, उसी से जोड़ा गया था। इसलिए आप देखेंगे एक हमारे ऋग्वेद में श्लोक है, देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति है। हम अगर ऋग्वेद ग्रंथ को 5000 साल पहले भी हमारी संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण के लिए कितनी बड़ी बात कही गई थी। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, वृक्षारोपण का महत्व कितना बड़ा बताया गया था हमारे यहाँ शास्त्रों में। मत्स्य पुराण में एक श्लोक है, 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक झील होती है और 10 झीलों के बराबर एक पुत्र होता है और ऐसे 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। तो हमारे वृक्ष की महिमा इतनी बड़ी बताई गई है। तो वृक्षारोपण की महिमा क्या है ये हम अपने संस्कृति से इसको समझ सकते हैं। हम सब लोग जो बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं उनसे बने हुए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, लेकिन इन 5ों तत्वों का किस तरह से समन्वय करना, सारे आयाम हमारी संस्कृति में समाहित कर दिए गए थे। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, ग्लोबलाइजेशन के पहले या वाहनों के आने के पहले किसी प्रकार के प्रदूषण की समस्या न होने के बाद भी पर्यावरण की चिंता हम करते थे, लेकिन आज जब इतना बड़ा विषय आ गया है इसलिए दुनिया के लोग अब भारत की तरफ देख रहे हैं, उसको आचरण में लाए, जो धीरे धीरे अभी आचरण से दूर होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम एक बेहतर मार्ग दुनिया को बता सकते हैं।
1: इस पूरे आयोजन को लेकर पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक श्री मनीष गौतम का मानना है,
3: विश्व पर्यावरण दिवस में महत्वपूर्ण रूप से उन नीतियों की चर्चा की गई है, उन मिशंस की चर्चा की गई है जिसको कि केंद्र सरकार के नीति आयोग ने मान्यता दे रखी है। नीति आयोग की मानना है कि जब तक लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक बिहेवियरल चेंज नहीं लाएंगे, लोग अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक पर्यावरण सुधार या संरक्षण कहीं सिर्फ कार्यक्रम तक सीमित होकर नहीं रह जाए। तो अब ये पर्यावरण संरक्षण सिर्फ हमारा अधिकार या हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि अब ये हमारी जिम्मेदारी बन गई है। आज का जो प्रमुख वार्ता का जो आउटकम है वो सिर्फ इतना ही रहा कि अब हम पर्यावरण को अपने स्वास्थ्य से जोड़ेंगे, पर्यावरण को अपने व्यवहार से जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि पर्यावरण अब हमारी जिम्मेदारी के रूप में सामने आए, न कि केवल सिर्फ अधिकार के रूप में कार्यक्रमों तक सीमित रहे। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि निश्चित रूप से इसके जो परिणाम हैं वो प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि पूरे देश का ग्रीन कवर बढ़ा है, तो ग्रीन कवर बढ़ाने की तरफ जो सरकार का प्रयास है इसमें अगर जनता का सहयोग मिल जाए तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पेड़ जितने कट रहे हैं उससे कहीं अधिक संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं जो कि बड़े हो रहे हैं। और एक बात और तथ्य वो यह था कि सिर्फ वृक्ष लगाए नहीं जाएंगे बल्कि उनको संरक्षित या उनको सुरक्षित रखने का भी प्रयास करेंगे लोग, ताकि वृक्ष आगे बढ़े, और यही संदेश है।
1: सर, PIB का ये जो आयोजन रहा है ये कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं आज के दिन?
3: देखिए, PIB अपने नियमित कार्यक्रमों की श्रृंखला में वार्ता और वार्तालाप अलग अलग जगहों पर जाकर करती है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम भोपाल में रखा। और मध्य प्रदेश के लगभग आधे से अधिक जिलों में पहुंचकर हमारे यहाँ से वार्तालाप के कार्यक्रम होंगे, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं, उसकी प्रमुख अधिनियम, उसकी उपलब्धियों, उसकी जानकारी जो आम जनता तक हम लोग मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज होता है जनता और सरकार के बीच में। तो मीडिया के लोगों को शामिल करके ही ये पूरी एक्सरसाइज की जाती है, वार्तालाप किया जाता है, ताकि उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ ये सारी जानकारी

0: जानकारी जो है वो आम जनता तक पहुंच सके, तो उसमें वही कार्य पीआईबी ने आज भी किया।
1: सर, जो गेस्ट आए उन्होंने जो अपने वक्तव्य दिए उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
0: जो गेस्ट बुलाए गए थे वो अपने अपने विषयों में स्किल्ड थे, मास्टर थे और उनकी भरपूर जानकारी थी। उन्होंने उस फील्ड में बहुत गहराई के साथ काम किया, तो जिनका फील्ड में काम होता है, चाहे वो अभ्यारण्यों में काम किया हो, चाहे वो गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास काम किया हो या फॉरेन गए हों, इन लोगों की जो पहुंच, जो समझ है वो उनकी विशेषज्ञता के रूप में आज मीडिया के साथ में कनेक्ट होती हुई दिखाई पड़ी। तो जो उनके आउटकम्स थे, जो उन्होंने जो फाइंडिंग्स निकाली, जो उन्होंने अपने फीडबैक दिए, अपनी बात रखी, मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को जरूर श्रेयस्कर लगेंगे और इसका प्रभाव भी कुछ दिनों बाद दिखाई पड़ेगा।
1: श्रोताओं, इस तरह से ये आयोजन संपन्न हुआ और इससे कुछ बातें जो निकल कर सामने आई हैं वो ये हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम खुद से ही शुरुआत करें, जिससे धरती बची रहे और हरियाली भी बनी रहे। इसी के साथ इस रेडियो रिपोर्ट को संपन्न करते हैं। आज्ञा दीजिए जूही राव को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पर पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म दम लगा के हईशा से। मोनाली ठाकुर की आवाज़, वरुण ग्रोवर की शब्द रचना और अनु मलिक का संगीत।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सलीम मर्चेंट की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म कुर्बान से। निरंजन अयंगर के बोल और सलीम सुलेमान का संगीत। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। श्रोताओं, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए ये सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटेस्ट आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharati.gov.in एवं hopairbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इसे गंदे पानी का मैनेज

0: इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमरीका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबनन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। अब से कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। रात्रि 8 सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष महिला सशक्तिकरण। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:35 और 9:45 पर। कार्यक्रम खेल जगत आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर और रात्रि 10 सुनिए पीएम मोदी के 12 साल पर विशेष कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे रूपक ताल पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया का तबलावादन 10:30 पर। श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी शनिवार 6 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर।

फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। लोक संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे बीना ठाकुर और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान लोक और फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 9:45 पर। सुबह 10:05 पर सुनिए फिल्म में गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम गीत सागर और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे तोड़ी राग पर कादिर खान का सारंगी वादन 10:30 पर। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आकाशवाणी मध्यप्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे सुबह 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12:00 और दोपहर 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार का पहला अंक आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2:00 शाम 5:33 6:30 और 8:35 पर। शाम 6:00 सुनिए आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर डॉक्टर सी आर मेहता से विशेष भेंटवार्ता। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण 7:21 पर किया जाएगा। शाम 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8:00 सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति। कार्यक्रम साहित्य भारती का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।

और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में ऋषिकेश गंगुरड़े का ख्याल गायन सुनिए रात्रि 10 बजे। इसका प्रसारण भी आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे कल यानी 6 जून 2026 शनिवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने आकाशवाणी परिसर में पौधा लगाया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ। और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़

0: रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सूरत पहुंचे श्री मोदी ने कहा कि गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा में कई साल पहले ही बड़े कदम उठा लिए थे और देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क भी यहीं के पाटन जिले में लगाया गया था।
1: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
0: सूरत के बाद श्री मोदी दमन भी जाएंगे, जहां करीब 2,970 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य और विमानन क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा वे लक्षद्वीप के लिए कई अहम समुद्री परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। इस लेख में श्री यादव ने पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जनभागीदारी की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्यस्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। डॉक्टर यादव ने भोपाल स्थित अपेक्स बैंक परिसर में हरित सहकार अभियान की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कोलारस की चीनी फैक्ट्री को दोबारा चालू करने और किसानों को MSP से अधिक दाम दिलाने का ऐलान भी किया।
2: हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शकर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही, एक नहीं दो दो लगाएंगे। आप गन्ना भी लगाओ और अब तो पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही है।
0: वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में माचना नदी के घाट पर पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में वन विभाग परिसर में वृहद पौधरोपण किया गया। वहीं बुरहानपुर के शाहपुर में नगर परिषद ने 2,000 से अधिक पौधे लगाए, जबकि रायसेन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ग्रामीणों से खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाने की अपील की। गुना में NCC ने जागरूकता रैली निकाली और सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन ने पौधरोपण किया। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान बताए गए। वहीं देवास, अशोकनगर, इंदौर, शिवपुरी और धार में भी जिला प्रशासन की अगुवाई में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और अगले महीने की 31 तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला के ऐतिहासिक पुष्पबंता पैलेस को हेरिटेज होटल में बदलने की परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह और पूर्व राजघराने के सदस्य प्रद्योत विक्रम माणिक्य भी मौजूद रहे। इस परियोजना से त्रिपुरा और पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन को नई गति मिलेगी। बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। वृद्धाश्रमों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर और सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। युवाओं और बुजुर्गों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए

अंतर पीढ़ी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। डिंडौरी के पाटनगढ़ गांव के गोंडी चित्रकारों की कला अब अमेजन ई कारीगर प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर तक पहुंचेगी। इसके लिए आजीविका ग्राम संगठन और डॉट्स एंड डैशेस संस्था के बीच MOU साइन किया गया है। गांव के 157 परिवार सीधे इस कला से जुड़े हैं, जिसमें 85 महिला और 72 पुरुष कलाकार शामिल हैं। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इस कला को GI टैग दिलाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भोपाल में बाल्य कल्याण समिति के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 134 प्रतिभागी 4 बैचों में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम, मिशन वात्सल्य योजना और संकटग्रस्त बच्चों की पहचान जैसे विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है। रायसेन जिले के सेमरी गांव की बेटी अंजना यादव ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से समत्व भवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस अद्भुत उपलब्धि के लिए अंजना को बधाई दी और उनके हौसले की तारीफ की। इंदौर में 9 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। इस सम्मेलन में इंदौर को वैश्विक स्तर पर अपनी कृषि और नवाचार उपलब्धियां प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि ऐसे छोटे तालाब जिनका किसी नदी से संबंध नहीं है, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा 2 दिवसीय पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन 6 और 7 जून को देवास में किया जाएगा। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने आज जिले में खाद वितरण व्यवस्था, ई टोकन प्रणाली और जैविक खेती को बढ़ावा देने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और झाबुआ में 7 जून को समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरगन ने आकाशवाणी परिसर में लगाया पौधा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: फिल्मी गीत भी सुनवाने हैं। भैया कल 4 तारीख थी और कल केरल मानसून आ चुको है और मौसम विभाग को कहबो है कि 10 से 15 तारीख नो अपने मध्य प्रदेश में भी बरसात शुरू हो जाए। तो हम सब किसान भाइयों के लाने खरीफ की फसलों की बुआई की तैयारी में लग जाने हैं। कैसे के टेम पे बुआई हो पाए ये लाना जरूरी है कि आप पहले जो चीज़ें होते हैं वे सारी बातें होते हैं जो आदान सामग्री होते हैं वे सब व्यवस्थित करके रख ले, अच्छे बीज खाद इन सब की व्यवस्था करके रखें और कृषि यंत्र सुधार के रखें, खेतों की तैयारी करके रखें। कैसे के भैया मौसम जो है वो जासाल बरसात तो सामान्य होने हैं, मानो फिर भी हम सबके लाने तैयार रहने कि अगर कभू ऐसो भाव के लंबे लंबे ब्रेक लग गए, मतलब के थोड़े थोड़े दिन को बीच में बरसात रुक गई, तो हम बाहिसाब से अपने खेत में एक कहूँ छोटो सो तालाब भी बना के रखें कि बरसात को पानी जो है उतने इकट्ठा हो जाए तो हमें बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो जीवन रक्षक सिंचाई भी हम कर सकें। बात भैया है आज विश्व पर्यावरण दिवस की। सबको पता है, दिन भर से आपने अखबारों में पढ़ लो है, टीवी पे देख लो है और रेडियो पे तो आप सुन ही रहे हो। कहबे को हम आओ जो ही है, मतलब कि भैया विश्व पर्यावरण दिवस मनाओ क्यों जा रहा है, जा बात हम सबको जानबे की जरूरत है। हमने जे हिसाब से जे पेड़ों को काटो है, कंक्रीट की सड़कें बना डारी हैं, पक्के पक्के मकान बना डारे हैं, जमीनें जो हैं वे कम हो जा रही हैं, जंगल कम हो जा रहे हैं, पहाड़ छोटे हो जा रहे हैं, ऐसे हो जो रहो है कि मौसम में बदलाव हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है हमारी गलतियों से। हमने जो जे हिसाब से पूरा धुआं उड़ाव है, पराली जलाते हैं भैया जाको भी असर होते, मोटरसाइकिल चला रहे ट्रैक्टर चला रहे, बेर बेर कही जाते हैं कि गाड़ी की सर्विसिंग ढंग से कराओ नहीं तो उसमें जो निकलते धुआं वो भी नुकसानदेह है। और पर्यावरणविद तो जा भी कह रहे हैं कि जो हम अपनी जो उद्योग है उनसे निकले वो धुआं, किसान जे तरीके से रासायनिक खादों को प्रयोग कर रहे हैं, वे सब जो है पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। और पर्यावरण अगर प्रदूषित होत रहे तो इंसान की आदमी की जीव की जिंदगी छोटी होत रहे और छोटी होबे के साथ साथ दुखदाई होत रहे। कैसे कि जिंदगी छोटी हो रही चलो बातों मान ली, मनोबा जिंदगी भी रोग बीमारियों से भरी रहे तो और कष्ट की बात है। तो आज से 60 साल पहले जरा चल के देखो कैसी पर्यावरण की स्थिति थी, टेम पे मौसम आते टेम पे मौसम जाते, जा साल देख लो जे हिसाब से धरती तपी है लोग बिल बिल आ गए हैं। और अब मौसम की बारी है तो मौसम में भी अब खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि अल नैनो को एक सिस्टम बन रहा है जैसे कि बरसात में दिक्कत हो सके। तो जिस सब चीज़ें काय हो रही हैं, जिस सब चीज़ें जई मारे हो रही हैं कि हमने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर लो है, हमने अपने पर्यावरण के लाने समझो ही नहीं है, जैव विविधता के लाने हम काम नहीं कर रहे हैं और हम सिर्फ देख रहे हैं कि हम आओ जीवन सुखमय हुए, हम बढ़िया अपने घर के भीतर पंखा चलावें और मस्ती से रहें और दुनिया जाए, तो वह भावना ही तो खराब है। तो हम सब के लाने भैया पर्यावरण को सुधार भी के लाने काम करने हैं, आज हम यही बात को संकल्प लें। अब बारी हो गई है बुंदेली समाचारों की, फिर आगे की बात करें।
1: बुंदेली समाचार।
0: बुंदेली समाचारों के साथ मैं मनोज सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपया से ज्यादा की नई विकास परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करो। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कही कि परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करेंगी। सूरत पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हजीरा को दौरा करो, वहां जाके चल रही औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि एयर ट्रंक कंपनी भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपया को निवेश करेगी और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी। प्रधानमंत्री ने कही कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। उन्होंने कही कि इसे भारत क्लाउड कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग और असिस्टेंट

राम राम स्वीकार हैं ग्राम सभा के सभी श्रोता भैया बहन, मनोज भैया की दो यहाँ जोरे की संजा बिरिया हैं भैया। और आज खूब सारी बातें हमें आपसे करने हैं, विश्व पर्यावरण दिवस पे भी बातें करने हैं और आपकी पसंद के

इंडस्ट्रीज और विश्व केंद्र के रूप में और मौजूद होबे के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इससे पहले पिछले महीना पहले समारोह में 66 लोगों को जो सम्मान दौ जा चुको है, इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत करे गए हैं, जिनमें 5 पद्म भूषण, 13 पद्म विभूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला के ऐतिहासिक पुष्पबंता पैलेस को हेरिटेज होटल में बदलने की परियोजना को शिलान्यास करो।

0: इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत करे गए हैं, जिनमें 5 पद्म भूषण, 13 पद्म विभूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला के ऐतिहासिक पुष्प बंता पैलेस को हेरिटेज होटल में बदल बे की परियोजना को शिलान्यास करो। ई मौका पे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सहाय और पूर्व राज घराने के सदस्य प्रद्योत विक्रम माणिक के भी मौजूद रहे। ई परियोजना में त्रिपुरा और पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यटन दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम दो अभियान को शुभारंभ करो। ई मौका पे 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान करे गए। जो अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए नए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी करी जाएगी। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल के निर्देश पर लोक भवन परिसर में भी पौधरोपण कार्यक्रम को आयोजन करोगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम आयोजित करे गए। बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में माचना नदी के पास पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम भव। बुरहानपुर में शाहपुर में नगर परिषद द्वारा 2000 से ज्यादा पौधा लगाया गया, जबकि रायसेन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृद्ध पौधरोपण करे गए। गुना में एनसीसी इकाई के जागरूकता रैली निकाली गई और जबलपुर मंडल में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करोगे। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लाने 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित करी गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दगो है और उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि ऐसे छोटे तालाब जिनकी नदी से संबंध नहीं है उनमें जो प्रतिबंध लागू नहीं होगा। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी हैं। मौसम विभाग ने आज भोपाल इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी बारिश को अलर्ट जारी करो है। अगले 4 दिन तक मौसम ऐसो ही सुहानो बनो रहेगो। केरल में मानसून 4 जून को पहुंच चुको है और प्रदेश में इके 20 से 22 जून तक दस्तक देवे की संभावना है। जेते आज के बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारों के बाद भैया हम आपके लाने आज एक रिपोर्ट सुनवा रहे हैं। रेडियो रिपोर्ट है जा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित जो कार्यक्रम है और रिकॉर्डिंग सहयोग है अंशु तिलेठे को, संयोजक श्री चंद्रशेखर शर्मा को।
1: प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, इसकी सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए जा रहे कदम से संबंधित विचारों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विचार हम जानते हैं।
2: हम कई कारणों से आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, आज विश्व हमारी तरफ इस नाते से भी देख रहा है और उनको एहसास भी होता है। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से ये प्रकृति का 5 तत्वों का बना हुआ पूरा समूचा, एक तरह से इसको सृष्टि भी कहें, तो सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई है और छोटे छोटे वेद वाक्य में सारी बातें पूरी हो गई। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड बनने के साथ हम ब्रह्मांड पे तो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति या जीवन के लिए संध्या वंदन दीप प्रज्वलन के साथ, हम अगर अब सूर्योदय सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ, हमारी कोई पूजा पाठ से लेकर के भोजन भजन किसी प्रकार की पद्धति में अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है। ये कई सारे उदाहरणों से कई बार प्रकाशित भी हुआ है, बताया भी गया है। जब जगदीश चंद्र बसु जी को नोबेल पुरस्कार मिला, इंग्लैंड के अंदर रॉयल सोसाइटी

0: में वो डेमोंस्ट्रेशन दे रहे थे कि जब वैज्ञानिकों ने इस बात को मान लिया कि हाँ ये पौधों में प्राण होते हैं, तो बड़े लोगों ने उनको हर्षित होकर के बताया कि आप तो आपका दुनिया में नाम हो गया, कितना बड़ा काम आपने कर दिया, भारत के लोग तो आपको कंधे पे उठा करके घुमाएंगे। उनने बहुत अच्छे से बात करके कहा कि भाई ये बात सही है कि आपके सबके सामने मैंने इसको सिद्ध कर दिया है, लेकिन मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान नहीं होने वाला, ये आप लोग ही करने वाले। तो उन्होंने कहा क्यों, आपके भारत के लोग इतने इस तरह से अच्छे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते क्या? लेकिन हमारे लोग तो बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन वहाँ गांव से गांव के लोगों को भी मालूम कि पौधों में प्राण होता है, तो आपको नहीं मालूम था, तो आपको बताने के लिए मैं यहाँ आपके बीच में खड़ा। यहाँ तो इस पूरी चीज़ों को लेकर के भारत की जीवन शैली बहुत आदिकाल से इन सारी बातों को लेकर चलती रही है, इसलिए उसके मामले में कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। और इसी नाते से हम कदम कदम पे देखते हैं, रात के समय पौधों की पत्ती तोड़ने भी परिवार वाले मना करते हैं कि पौधों को सोने का समय हो गया, अभी इनको हाथ नहीं लगाना है। हमारे लिए वैसे तो कई बार अलग अलग प्रकार की बातों से कहा गया है, लेकिन ये बात सही है कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ माना गया है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सर पर यहाँ के सभी प्रबुद्ध पर्यावरणविद प्रकृति चिंतक हृदय में अपने इस पवित्र भाव को धारण करते हुए इस दिवस कुशल नेतृत्व को भी याद करेंगे और अपने अपने तय भूमिका अदा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई।
1: इसी तारतम्य में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी के विचारों को हमने जानना चाहा और हम लेकर आए हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनके विचार आप सभी श्रोताओं के लिए।
2: क्योंकि आज का दिन हम सबके बीच में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण हमें ध्यान में आता है, पहले तो वायु, फिर वृक्ष जो पौधे, फिर आता है जल। वायु की बात तो हमारे माननीय अशोक बड़वाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से, मगर अगर हम वृक्ष की बात करेंगे, पौधे की बात करेंगे, तो आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और मुझे गर्व से कहता हूं मैं कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में जब यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम जब चलता है, तो पूरा मध्य प्रदेश के हमारे चाहे नेता हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, संगठन हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, अन्य सभी साथियों ने चढ़ बढ़कर एक आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाकर इतिहास दर्ज किया है कि आप सबने एक पेड़ माँ का नाम केंद्र पेड़ लगाया। ये हमारा सौभाग्य है, हम सबके जीवन सौभाग्य का दिन है। शायद हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी मध्य प्रदेश के अंदर आएगा कि हमें अपनी माँ के नाम से मिलेगा। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करूंगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि आपके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से अभियान चला है, अब मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में तमाम अभियान चल रहे हैं, मगर एक अभियान और भी बहुत महत्वपूर्ण हम सबके जीवन में है, जल गंगा संवर्धन अभियान। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब मध्य प्रदेश के अंदर चलता है तो आप सोचो, कल्पना करो कि लाखों खेत तालाब और मध्य प्रदेश की ऐसी धरोहर, चाहे वो चंदील काल के तालाब हो, चाहे वो बावड़िया हो, आज मुझे गर्व से मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हम लोग कभी सोचते नहीं थे, ऐसी बावड़ियों का, छोटे छोटे तालाबों का, ऐसे हमारे आपके मार्गदर्शन में हजारों बावड़ियों का निर्माण हुआ ताकि जल का संरक्षण हो सके, जल को हम रोक सके के माध्यम से हम सबको जोड़ने का अवसर मिलता है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से यही आग्रह कहूंगा, पेड़ लगाने के साथ उसकी पानी को हम संरक्षण तो हमारी सरकार के मार्गदर्शन में हो ही रहा है, हम लोग कर ही रहे हैं, मगर हम सबकी जिम्मेदारी भी है, हम चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हम आम व्यक्ति हो, वो संकल्प लेके जाए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कि हम पेड़ की सुरक्षा भी करेंगे, जल का संरक्षण भी करेंगे। मुझे वाले समय में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभियान चल रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ेगा, और हम लोग जो हमारी इच्छा है, हम लोग जो सोच रहे हैं, वो हम पुनः एक बार विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।
1: आज के इस कार्यक्रम में पुरस्कृत हमारे कृषक भाई की मेहनत और समर्पण को हम उन्हीं के मुख से जानते हैं, समझते हैं कि किस तरह उनके छोटे छोटे प्रयासों से उन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने का वीड़ा उठाया। आइए जानते हैं।
3: मैं विवेक सिंह राठौर हूँ सर, मैं पर्यावरण से जुड़ा हूँ। मैं बचपन से, हमारे घर में क्या है कि हमारे जो बहन थे तो उन्हें छोटे छोटे पौधे लगा रखे थे, तो हमने प्रेरणा वहाँ पाई। बाकी हमारे गांव में एक तालाब था, तो तालाब में क्या है सर, एक वो जैसे गांव की भाषा में कलम डाला खेलते थे, ऊपर चढ़ के ऊपर नीचे उठते थे, तो वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली होगी। तो वहाँ से मेरे मैंने आज दिनांक 5,48,900

0: 34 पौधे जो कर्सों की निजी भूमि में लगाए जो खारिज के जंगल, वो तो अपनी जगह है ही सही। बाकी मैंने कहा कि ये जंगल तो है ही है, कौन नहीं अपन ऐसा करें जो एक निजी रोपण भी हो जाए तो उनकी कोई सांस की कोई पैसे लगे ना कुछ नहीं, सुरक्षा भी बरबारी हो जाए काश्तकार कर लेंगे। बाकी हुक्म निवेदन है कि इसके अलावा काश्तकार को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ, जो एक सांस की जंगल जो कटने जा रहे थे वो बचे है ना, अपनी पाठ बल्ली जो अपने निर्मित करी खुद ही अपने मतलब उनने मतलब ये मतलब उपयोग करी, इस कारण से जंगल का भी बड़ा। और इसके मैंने एमपी तक भी निपट नहीं रहा, मैं राजस्थान में भी ये प्रक्रिया अपने जो थे बहुत से लोग क्या पहले मूली काटते थे, आदिवासी लोग क्या है कि जंगल में जाके मूली काट के बेचते थे, मैंने उनको क्या करा बीज से जोड़ा उनको पौधे तैयार कराए, जहाँ पानी का साधन था तो वहाँ तो मैंने बेड तैयार कराए, जहाँ पानी का साधन उनके नहाने धोने की जगह होती थी ना जो पानी जाता वहाँ पे मैंने पौधे तैयार करे बीज से, वो पौधे मतलब हाट बाजार में बिकवा के उनको अर्जित आय पैदा करी, वो शेष पौधे उनकी निजी भूमि में लगाए जो काफ़ी वृक्षों के मामले में हो गए हुकुम। तो और सभी कलेक्टर महोदय फॉरेस्ट अधिकारी महोदय ने जो मैंने लगाए पौधे जो वृक्ष बने सबने सत्यापन करा, अभी गत वर्ष 4 जुलाई 2024 में कलेक्टर साहब बातम साहब ने मैंने एक रोजर नदी जो निकलती है पिरुदा से वो मैंने उन्हें दोनों सिरों पे रोकने की कोशिश करी, दोनों साइड पे मैंने पौधे लगा के वृक्ष बनाए, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि चलो हमें बताओ, तो 4 जुलाई 2024 में कलेक्टर साहब ने वो रोजर नदी जो बहती दोनों सिरों पे भूमि कटाव रोकने का मतलब तो उनने 1 किलोमीटर जो मतलब घूम के उन्हें निरीक्षण करा, तो उन्हें बेहतर बजाय मेरे को सम्मानित करा इसके लिए। और हम इसके लिए संभाग लेवल के कलेक्टर महोदय कितनी बार में संभाग गोल्ड मेडल मिला हो, मेरे को ग्रीन आइडल अवार्ड मिला, और आप लोग भी मेहरबान।
1: हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने स्तर पर क्या प्रयास करके वो पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं?
0: किसान भाई मेरे लिए एक देवता, एक मतलब क्योंकि मेरे को उनने संभाला है नहीं, उनने मतलब क्या मेरे मतलब कार्यशैली को उनने संवारा, उनने मेरी बात मानी, और अपनी निजी भूमि में जो मेरे कहने से अनुसार जो अपनी भूमि मतलब जो शेष भूमि जो छोड़ के उनने वृक्षारोपण करे जो वृक्षों के रूप में पड़ती है, तो मैं सबसे बड़ा मेरे साथ में अभी भी कर्षक भाई अभी आए हुए मेरे सभी बोलो सभी मतलब आज भी मेरे साथ में मैं कुछ लोगों को लाए जो मैंने मतलब रोपण करा रखा उनका,
1: मतलब अपने स्तर पे कर संरक्षण कर सकते पर्यावरण
0: पर्यावरण सब मैंने मेरा फोकस होगा सबसे ज्यादा मैं मतलब कर्षक भाई को ही देता हूँ, मतलब जो मेरी बातें उनने सर से स्वीकार करी, और विकट परिस्थिति में भी मतलब भूमि का टुकड़ा छोड़ के उनने पहले तो हुक्म थोड़ा सा ही हुआ कि झाड़का वाला है, कौन झाड़का लगा है, मतलब शुरुआत में मेरे को बहुत कठिनाई शुरुआत में करे झाड़के तो मतलब छुप जाते लोग, तो मैंने मतलब पर्यावरण पेड़ पौधे सबसे उनको बताया मैंने चलो अपन क्या है कि ये बेड़ा कर सके उठा सकते जो अपन क्या पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण देंगे जो मतलब पूरी दुनिया को मतलब संचालित करेंगे, तो मतलब क्यों नहीं ऐसे पुनित कार्य में अपन तो कुछ एक जोड़ा और हुक्म में जैसे मेरा फोकस ये रहा जैसे कहीं होटल पे गया तो जब होटल में 4 आदमी बैठे हैं वहाँ तो सक्सेस नहीं होता उससे बन क्योंकि वो तो मजा के रूप में लेते हैं, तो मैंने कहा ये मतलब ये तरीका है ये ठीक नहीं, तो मैंने सीधा मतलब लोगों के घर पे जाना शुरू करा, मैंने भैया आपके मतलब जमीन वगैरह कोई पौधे के नहीं है, तो मैंने क्या करा हुक्म जैसे थोड़ा सा मैं आपको से कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा ये रहा कि भैया आपके गांव का क्या नाम है कि धावड़ा दे धावड़ा का वृक्ष मतलब धावड़ा दे, तो मैंने धावड़ा दे वृक्ष कहाँ है ना, नाम तो
1: वृक्ष के नाम
0: वृक्ष के नाम से गांव में रखा जाता था, तो मैंने कहा धावड़ा दे, मैंने धावड़ा के वृक्ष कहाँ या कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्यों नहीं जैसे मतलब तो धावड़ा के जो अपने जो एक नामकरण बना वो तो चीज़ें होना चाहिए, जैसे गुलरी पाड़ा मतलब आंबा पाड़ा मतलब क्या खेरिया पाड़ा, ये हुक्म क्या है कि वृक्षों के नाम से गांव रखे तो मैंने वो तो आज देख भी नहीं रहे, तो इस प्रकार से मैंने और हुक्म एक मैंने ये देखा क्या है कि प्रजातीय मतलब वृक्षों के नाम से जो अपने दीवार के आसपास देवी पूजा होती है ना वृक्षों के नाम से, जैसे मैं राठौड़ हूँ तो हमारे नीम की पूजा होती है, तो मैंने ऐसे लोगों को बहुत जोड़ा, मैंने चलो आपकी कहीं पूजा हो गया फलाने तो मैंने ये पेड़ लगा हुआ, तो मतलब इससे मतलब प्रेरणा मिली तो ये मतलब वृक्ष बढ़ते गए हुक्म
1: और
0: जी हुक्म
1: और भावना से जोड़ा
0: मतलब क्या मैंने धार्मिकता से जोड़ा चारों तरफ से मैंने क्या है जी हुक्म, और अभी भी मेरा लक्ष्य है अभी मैं करीबन इसी मतलब साल इसी बरसात में करीबन 4-6 हजार पौधे मैं फिर लगाऊंगा, और मेरा रेशा हर साल हुक्म ये रहा है 4-5 हजार पौधे मतलब मैं हर वक्त में लगाता हूँ, और जहाँ तक मेरी जीवन है वहाँ तक मैं ये पुनित कार्य मैं करता रहूंगा।
2: हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के अधीक्षण यंत्री श्री हनुमत सिंह मालवीय जी, वो हमें बताएंगे कि किस तरह प्रदूषण मुक्त होकर हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, आइए जानते हैं उनके विचारों को।
3: जैसा कि आपको विदित है विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि विश्व पर्यावरण चिंतन के ऊपर हुई थी उसमें भारत सरकार द्वारा भी भाग लिया गया था, जिसमें हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा भाग लिया गया था। उस समय से ये तय किया गया कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा

0: और उसका प्रतिवर्ष यूएन द्वारा एक थीम दी जाएगी। इस वर्ष की थीम जो दी गई है, इंस्पायर्ड नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर, और हैशटैग दिया गया है नाउ फॉर क्लाइमेट। जैसा कि आप जानते हैं, औद्योगिक विकास और अर्बनाइजेशन की वजह से जल एवं वायु प्रदूषण बहुत बढ़ा है, और इसके वजह से हम देखें तो इसके स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। हमारी आम जनता और जितने श्रोतागण हैं उनसे अपेक्षा है कि वह इन कारणों के निदान के साथ साथ इनसे कैसे निपटा जाए, जिसको हम अडॉप्टेशन बोलते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे आप पाएंगे कि अभी बहुत तेज़ी से बारिश एक साथ हो जाती है, अथवा टेम्परेचर बहुत एकदम से बढ़ जाता है, कभी हवा तूफान आते हैं, तो चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे हमारी खेती बाड़ी, हमारा बिजनेस हो, हम इन सब में इन द्रुतगामी घटनाओं से निपटने के लिए तैयारी करनी होगी, हमें अडॉप्टेशन करना होगा, और हम ग्लोबल लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं उनको स्थानीय लेवल पे कैसे उनमें हमारा सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करना है। चाहे हम जल संरक्षण से स्टार्ट करें, या हम एनर्जी कंजर्वेशन से स्टार्ट करें, ग्रीन एनर्जी के उपयोग से करें, सोलार एनर्जी का यूज़ करें, साइकिल का उपयोग करें, और हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए जिससे हम जल संरक्षण कर सकें, वायु प्रदूषण को बचा सकें, वेस्ट का मिनिमाइजेशन कर सकें। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ स्टार्ट किया। मिशन लाइफ में 7 थीम दी गई हैं, जिसमें खास तौर पे वेस्ट मिनिमाइजेशन की बात है, जल संरक्षण की बात है, ठोस अपशिष्ट कम जनरेट करने की बात है, किचन वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट इत्यादि कम से कम हम उपयोग कर सकें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को उपयोग नहीं करना है। इन सब को करके हम अपने देश प्रदेश और हमारी कॉलोनी इत्यादि को पर्यावरण प्रदूषण से बचा सकते हैं, और इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में हो रहे परिवर्तनों में कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे उनको कम किया जाए, उसमें हमारी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: तो किसान भाइयों, ये एक विशेष कार्यक्रम, स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आए। निश्चित ही हमें आशा है और विश्वास है कि आप विश्व पर्यावरण दिवस पर इस कार्यक्रम के मार्फत अपने आप को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तैयार करेंगे और अपने छोटे छोटे प्रयासों से हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को बचाएंगे, संरक्षित करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाएंगे। हमेशा लेने की प्रवृत्ति छोड़कर देने की प्रवृत्ति अपनाएंगे, यही हमारे इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम है, सोच है, विचार है।
2: भैया अब आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित विशेष कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग सहयोग अंशु तिलेठे को दो और कार्यक्रम संयोजन श्री चंद्रशेखर शर्मा को। अब आगे बढ़ते हैं, बात पर्यावरण की हो रही है और आपकी पाती आपके फिल्मी गीत की भी हम बात कर रहे हैं। एक गीत आपको सुनवा रहे हैं, पर्यावरण से जुड़ो भाव।

हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। जी हाँ, जो गीत है फिल्म बूंद जो बन गई मोती, स्वर मुकेश और बोल आप सुन रहे हैं आनंद ले। इको पसंद करो है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने।

ये कौन चित्रकार है भैया? प्रकृति में जो चित्रकारी हमने देख रही है, देख रहे हैं, जाखों सवारबे की जरूरत है, सजावे की जरूरत है, बनावे की जरूरत है। तभी तो हम कहते हैं ना कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और जब पर्यावरण सुरक्षित रहे थे, संवर्धित रहे थे, बढ़ा थे आगे, स्वच्छता रहे थे, तो मन कहने लगा थे, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह वो कहीं पे नहीं। भैया, जो गीत हम आपके लाने सुनवा रहे हैं, जो गीत के लाने पसंद करो है, रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सबिता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार ने बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, और फिल्म को नाम है मन की आंखें, आवाज मोहम्मद रफी की।

0: त्रिपुरा के पतवा सरी थे डोले मनुआ कि यारा में उठे तहिलो।
1: भैया गांव की बात करी जाए, पर्यावरण की बात करी जाए, तो जगीत में जो दर्शन हो रहे हैं, जगीत में जो आप सुन रहे हैं, वर्णन सुन रहे हैं, वो ही सब आपके लाने आज जमीन पे उतार के रखने हैं, बनाए रखने हैं। कैसे कि गांव में अगर हरियाली है, खुशहाली है, तो पूरे देश में हरियाली खुशहाली रहेगी, क्योंकि देश में सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा क्षेत्रफल गांव को है। हम सब गांव के लोगों के लाने भी अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, खेतों में, सब में स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने हैं, पर्यावरण को बनाए रखने हैं। सुनते हैं जो गीत, आनंद लेते हैं। फिल्म गोदान को गीत है, गांव है मोहम्मद रफी ने।

तो भैया जे थे आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत के आपके पसंद करे भाई गीत, और हम चाह रहे हैं कि आप भी अपने पसंद के गीत सुनबो चाह रहे हैं तो हमें चिट्ठी लिख दे। में हमारा पतो है ग्राम सभा कार्यक्रम आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल पिन 462002। संगे संगे भैया फिल्म को नाम अपनो पूरा पतो साफ साफ अक्षरों में जरूर लिख दो तो हम आपके लाने आगे भी गीत जरूर सुनवे हैं। चला चलत एक बात है हम आपको बता देवे कि अब खरीफ की फसलों की बुआई को टाइम पास आ गयो है तो उन्नत किस्में जो हैं सोयाबीन की बे हों चाहे धान की हों उन सब की व्यवस्था करके रखें। किसान भाइयों ने धान की नर्सरी डालबे को काम शुरू कर दो है तो बाकी लाने भी बड़ी प्राथमिकता से करें। और रहो सवाल सोयाबीन को तो सोयाबीन में ध्यान रखने हैं कि हमें कम समय अवधि वाली और कम पानी वाली किस्मों को चुनाव करने हैं। और सोयाबीन को बीज जब खरीदें तो जा बात को ध्यान रखें कि बिल पक्को जरूर ले लें और जो प्रमाणित जातियां हैं वे ही खरीदें और ऐसी जगह से खरीदें जहां से आपके लाने पक्को बिल मिले, है ना। और बीज को अंकुरण परीक्षण तो हमें करके देखने ही है। ये कछु बातें हैं जो हमें आपसे और भी करने हैं थी, मनोटेम है नहीं है, समय को अभाव होवे कारण अब हम आपसे विदा ले रहे हैं। फिर कोई और कार्यक्रम में मिले तो आपके लाने पूरी जानकारी दें। तब तक के लाने स्वीकार करो मनोज भैया की दो हाथ जोड़े की राम राम।

0: ग्रामीण श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष महिला सशक्तिकरण।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, नाउ वी ब्रिंग यू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद भरत खेड़ा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऑन मेजर रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर द ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट ऑफ एमएसएमईज। इंटरव्यूअर इज अर्जुन जे चौधरी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख नीतिगत सुधारों और पहलों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं अर्जुन जी चौधरी।
3: A warm welcome to our listeners on Akashvani, and today we're joined by Shri Bharat Kheda, who is the secretary at the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, and we will be discussing about the major reforms and initiatives in the growth and empowerment of MSMEs. Bharat Kheda ji, a warm welcome to you on this podcast.
4: It's a matter of pleasure to be here with you today.
3: And the reason why we are having this special discussion on MSMEs is the growth of the number of the entities that are in business right now, entrepreneurship, the employment that all of this has brought in, and really the contribution to the gross domestic product of the economy as well. But we'll try and simplify it for the benefit of our listeners on Akashvani.

0: श्रोताओं, फिल्म कभी अलविदा ना कहना के ऐसे गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी।

0: कहानी हो।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
0: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
3: कवि हेमंत देवलेकर।
4: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर

0: बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से

0: कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण

0: कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. Now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: Surat sirf स्वच्छता और

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। हिसास सरहदी मकाम पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ की जाएगी। जुनू मगरबी मानसून बहिरा अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। और हॉकी में भारत जापान के काका मिगारा के मकाम पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त देकर मर्दों के अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है कि दुनिया एक माहौलियात के लिए साजगार मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रही है और भारत इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए इसकी फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। गुजरात के शहर सूरत में आज 18,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि भारत की 250 गीगावाट की मजमूई काबिल क़द्र तवानाई में से अकेला गुजरात 50 मेगावाट फराहम करता है, जो कि मुल्क की सब्ज तवानाई का 5वां हिस्सा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में तब्दीली में एक वसी रोल अदा करना चाहती है, जो तवानाई में खुद किफालत हासिल करने के लिए लाजमी है। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये इकदामात पेशरफ की क़यादत करेंगे और अवाम के लिए ज़िंदगी की आसानी को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी जाहिर की कि माहौलियात के दिन के मौके पर वो सूरत में हैं, जो कि मुल्क के साफ तरीन शहरों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा तवानाई का आलमी बहरान

0: तवानाई में खुद किफालत की कलीदी अहमियत को उजागर करता है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: भारत की मईशत ने साल 2025-26 के दौरान तेजी का रुझान बरकरार रखा है। साल 2024-25 की 7.1% असल जीडीपी के मुकाबले साल 2025-26 के दौरान असल जीडीपी की तरक्की का तखमीना 7.7% है। शुमारियात और प्रोग्राम की हिफाजत की वजारत ने आज माली साल 2025-26 के सालाना अंदाजे के आर्जी आदादोशुमार और इस साल जनवरी से मार्च की सहमाही के अंदाजे जारी किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारतीय मईशत के लगातार इस्तेहकाम, इस्लाहात की कामयाबी और 140 करोड़ भारतीयों की सख्त मेहनत की अक्कासी करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत जिंदगी गुजारने और कारोबार करने में आसानी पैदा करने और नौजवानों के लिए मौके में इजाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। इसमें सरहदों के साथ 7 से 8 हिसास मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत करने की मनसूबाबंदी शामिल है। इन मकामात की हिफाजत बीएसएफ और एसएसबी करती हैं। त्रिपुरा में आज लंकामूरा सरहदी चौकी पर प्रहरी सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, नौजवानों और मुकामी शहरी इंतजामिया को नाकाबिले दरअंदाजी सरहदी बंदोबस्त का एक निज़ाम वजह करने के जिमन में मरबूत करेगा।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना और एक स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: जनाब शाह ने जोर दिया कि हुकूमत त्रिपुरा, मगरबी बंगाल और बिहार के हिस्सा सरहदी हिस्सों में दरअंदाजी या सरहदी रखना के बगैर किसी भी तरह की आबादियाती मुंतकली की इजाजत नहीं देगी। वजीर दाखिला ने मनुष्यात की स्मगलिंग, इंसानों की नाजायज तिजारत और मवेशियों की स्मगलिंग जैसे खतरात को जड़ से खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया। जनाब शाह ने बड़े पैमाने पर शजरकारी की एक मुहिम में भी शिरकत की और अगार का एक पौधा लगाया। नेपाल के खारजी उमूर के वजीर शिशिर खनाल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर भारत के 3 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। तीसरे पहर आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर कल नेपाल के अपने हममनसब के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने उजागर किया कि भारत का नेपाल के साथ एक जामे एजेंडा है जिसमें तरक्याती ताउन से लेकर तिजारत और सरमायाकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के साथ कसीर जहती शराकतदारी को मुस्तहकम करना चाहता है। वजारत खारजा ने आज इत्तला दी है कि दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हाल ही में पेश आए आग लगने के हादसे में जान गंवाने वालों में गैर मुल्की शहरियों की तादाद 13 है। नई दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि महलुकीन में 4 अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया से और 3 का ताल्लुक किर्गिस्तान से था, जबकि मोजम्बिक, लाइबेरिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, जमहूरिया कांगो और इराक के 1-1 शहरी की मौत हुई है। भारत रूस ताल्लुकात पर बोलते हुए तर्जुमान ने कहा कि भारत और रूस के दिफाई ताल्लुकात मजबूत हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं। भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती समझौते पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि अमरीका के आला मुजाकिरातकार अपनी टीम के साथ 1 जून से 4 जून तक भारत में थे। उन्होंने कहा कि बातचीत मुस्बत और तामीरी नौयत की रही। एक दीगर सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल अब तक 1076 भारतीय शहरियों को अमरीका से मुल्क बदर किया गया है, जबकि यही तादाद पिछले साल 3567 थी। भारत में गैर मुल्की शहरियों के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों से निमटने के बारे में कवानीन मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली को रूस के 5वीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारे सुखोई

SU-57 की पेशकश की है और इन तैयारों को भारत में मुश्तरका तौर पर तैयार करने की तजवीज रखी है। ये पेशकश दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक साझेदारी की अक्कासी करती है। सेंट पीटर्सबर्ग इक्तिसादी फोरम के तनाजुर में कल रात सरकर्दा न्यूज एजेंसियों के सरबराहान से बातचीत करते हुए जनाब पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब भी SU-57 तैयारा प्रोग्राम में नई दिल्ली की शिरकत का ख्वाहिशमंद है। जनाब पुतिन ने इंटीग्रेटेड फिजाई दिफाई निज़ाम और उससे मुतालिक हार्डवेयर समेत दीगर अहम दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर भारत के साथ इश्तराक करने की रूस की तैयारी का इजहार किया है। भारत रूसी साख्त के S-400 मिसाइल निज़ाम के मुमकिन कलीदी पुर्जे के साथ अपने दिफाई निज़ाम सुदर्शन चक्र को स्वदेशी तर्ज पर तैयार कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आज पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर शदीद एतराज किया है जिसके तहत वो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और जबरन कब्जा किए हुए भारतीय इलाके नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात कराने का मंसूबा रखता है। ये इंतखाबात इस माह की 7 तारीख को होने हैं। भारत ने अपने वाज़ह मौक़िफ़ को दोहराया है कि नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुकम्मल मरकजी खित्ता भारत का अटूट और नाकाबिले तस्खीर हिस्सा है, क्योंकि साल 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में मुकम्मल कानूनी और नाकाबिले वापसी इल्हाक हुआ था। उमूर खारजा की वजारत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की कोशिशें उन बुनियादी मसाइल को नहीं छिपा सकती जिनमें इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, सियासी जबर, माशी इस्तेहसाल और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में आज़ादी से महरूमी शामिल है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में किसी भी बुनियादी या इंतजामी तब्दीली की कोशिश को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के इकदाम उन हकायक को छुपा नहीं सकते कि पाकिस्तान अब भी गैर कानूनी तौर पर भारतीय इलाकों पर काबिज है जिन्हें खाली करना होगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दिल्ली के वजीर आशीष सूद, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बारे में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब सूद ने कहा कि वजीर आला ने गैर कानूनी तामीरात, फायर सेफ्टी के उसूलों की खिलाफ वर्जियों और इंतजामी लापरवाही से पेश आए हालिया अलमनाक हादसे पर तशवीश का इजहार किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने आफात से निमटने से मुतालिक एक्ट 2005 की मुख्तलिफ दफात को मौसर तरीके से नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर रिहायशी या तिजारती इमारतों के मालिकान इस कानून के तहत कसूरवार पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्मानों के साथ साथ कैद की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। जनाब सूद ने कहा कि मुस्तकबिल में DMs को अपने ज़िले में काम करने वाले किसी भी महकमे के अफसरान की जवाबदेही तय करने का इख्तियार हासिल होगा। वो ज़रूरत पड़ने पर महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश, FIR दर्ज करने और वजह बताओ नोटिसें जारी कर सकेंगे। गुवाहाटी में हलफबरदारी की एक तकरीब में 12 नए काबिनी वुजरा को शामिल करते हुए आज आसाम की वुजरा काउंसिल में तौसी की गई। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने नए वुजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आसाम की वुजरा की काउंसिल की तादाद अब बढ़कर 17 हो गई है। आइन के तहत आसाम में वजीर आला समेत ज्यादा से ज्यादा 19 वुजरा हो सकते हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज ऐलान किया कि अंडमान जजायर के मशरक़ी साहिल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 के मकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि ये दरियाफ्त बुहरे अंडमान के तवानाई के वसी इम्कानात को वाजह करती है और इस तास में जारी जस्तजू की मुहिम में एक और कामयाबी को नुमाया करती है। पद्म अवार्ड्स 2027 के लिए नामजदगी का अमल अगले माह की 31 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत दाखिला ने कहा कि पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगी और सिफारिशात का अमल जो 15 मार्च को शुरू हुआ था सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से मौसूल नामजदगियों के जरिए जारी रहेगा। वजारत ने सिलसिले में शहरियों से खुद नामजदगी समेत नामजदगियाँ और सिफारिशात दाखिल करने की अपील की है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नतायज के ऐलान के बाद अपने पोर्टल पर हुए मनसूबाबंद साइबर हमलों के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 12वीं जमात के उम्मीदवारों के जवाबी पर्चों के वेरिफिकेशन और दोबारा जांच के लिए यह पोर्टल 2 जून को शुरू किया गया था। CBSE ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान पोर्टल पर मुतअद्दिद मनसूबाबंद साइबर हमले हुए हैं, ताहम इन हमलों

वो 24 घंटे सातों दिन की लगातार निगरानी और जवाबी मैकेनिज्म के जरिए नाकाम बना दिया गया। इस दौरान आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और दीगर मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की साइबर सिक्योरिटी टीमों की मदद हासिल रही। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मगरबी वस्ती और मगरबी वस्ती बहिरा अरब, गोवा के हिस्सों और कर्नाटक के इलाकों में मजीद आगे बढ़ गया है। इस तरह की सूरत हाल तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में भी जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जुनूब मगरबी मानसून के वस्ती बहिरा अरब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मजीद हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ने के लिए

0: इलाकों में मजीद आगे बढ़ गया है। इस तरह की सूरत हाल तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में भी जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जुनूब मगरबी मानसून के वस्ती बहिर अरब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मजीद हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ने के लिए सूरत हाल मुवाफिक है। मौसमियात की एजेंसी ने यह भी कहा है कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की सूरत हाल मगरबी वस्ती, मशरक़ी वस्ती और शुमाल मशरक़ी खलीज बंगाल के इलाकों के साथ साथ शुमाल मशरक़ी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी जारी रहने की तवक्को है। हॉकी में भारत ने आज जापान के शहर काकामी गहारा में खेले गए मर्दों के अंडर 18 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 3-5 से हरा दिया, जहां भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद की फालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमल आवरी के अपने हतमी मरहले में है। इस साल सरहदी मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ कराई जाएगी और जुनूब मगरबी मानसून बहिर अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत। इसमें आज सुनिए फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 पर वार्ता। आलेख नावेद इशरत का है, वाचन स्वर और प्रस्तुति मनीष गजभिये की है।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोतो, आज के खेल पत्रिका में हम लेकर आए हैं फीफा विश्व कप 2026 पर यह वार्ता। आलेख नवीद इशरत का और वाचन मनीष गजबीये का।

खेल प्रेमियों के लिए वर्ष 2026 एक विशेष उत्सव लेकर आ रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल का सबसे बड़ा मंच फीफा विश्व कप 2026 अब हमारे सामने है। यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि संस्कृतियों, देशों, भाषाओं और करोड़ों सपनों का एक ऐसा संगम है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध देता है। आज की इस वार्ता में हम जानेंगे फीफा विश्व कप के गौरवशाली इतिहास, फीफा विश्व कप 2026 की विशेषताएं, इसमें हुए महत्वपूर्ण बदलावों और उन भारतीय मूल के खिलाड़ियों की कहानी जो इस बार विश्व कप फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते दिखाई दे सकते हैं। फीफा विश्व कप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1930 में उरुग्वे में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं हो सका, लेकिन इसके बाद यह प्रतियोगिता हर चार वर्ष में नियमित रूप से आयोजित की जाती रही है। विश्व कप आज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। करोड़ों दर्शक इसे देखते हैं और अरबों लोग इसकी चर्चा करते हैं। ब्राजील अब तक सबसे सफल टीम रही है जिसने 5 बार विश्व कप जीता है। वही अर्जेंटीना, जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन जैसी टीमें भी अपने शानदार प्रदर्शन से विश्व फुटबॉल में अमिट छाप छोड़ चुकी है। वर्ष 2022 में कतर में आयोजित विश्व कप में अर्जेंटीना ने रोमांचक फाइनल में फ्रांस को हराकर तीसरी बार खिताब जीता था। अब दुनिया की निगाहें 2026 पर टिकी है। फीफा विश्व कप 2026 कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार इस टूर्नामेंट में 48 टीमें भाग लेगी। अब तक विश्व कप में 32 टीमें खेलती थी। टीमों की संख्या बढ़ने से अधिक देशों को विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। दूसरी विशेषता यह है कि पहली

बार विश्व कप की मेजबानी तीन देश मिलकर करेंगे, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। इससे पहले कभी भी तीन देशों ने संयुक्त रूप से विश्व कप की मेजबानी नहीं की है। टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक खेला जाएगा और कुल 104 मुकाबले आयोजित होंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप होगा। इस फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमों को 12 समूह में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह में 4 टीमें होगी। ग्रुप चरण के बाद शीर्ष 2 टीमें और सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमें अगले दौर में पहुंचेगी। इससे प्रतियोगिता और अधिक प्रतिस्पर्धी और रोमांचक बन जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि टीमों की संख्या बढ़ने से फुटबॉल का वैश्विक स्तर और तेज होगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका के देशों को अधिक अवसर मिलेंगे और नई टीमें विश्व मंच पर अपनी पहचान बना सकेगी। जब भी विश्व कप की चर्चा होती है तो कुछ टीमें स्वाभाविक रूप से दावेदार मानी जाती है। वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना अपने खिताबी चुनौती पेश करेगी। ब्राजील अपने छठे विश्व कप की तलाश में होगा। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, पुर्तगाल और नीदरलैंड जैसी टीमें भी मजबूत दावेदारों में शामिल हैं। फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि युवा खिलाड़ियों की नई पीढ़ी इस विश्व कप को और अधिक रोमांचक बना सकती है। आधुनिक फुटबॉल की तकनीक, फिटनेस और रणनीति की भूमिका पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। ऐसे में केवल परंपरागत दिग्गज ही नहीं बल्कि उभरती हुई टीमें भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। आज का फुटबॉल पहले की तुलना में काफी ज्यादा बदल गया है। वीडियो असिस्टेंट रेफरी यानी VAR, गोल लाइन तकनीक, डेटा विश्लेषण, खिलाड़ियों की फिटनेस मॉनिटरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रणनीतियां खेल का स्वरूप बदल रही है। अब मैच केवल मैदान पर नहीं जीते जाते बल्कि उनके पीछे काम करने वाली विश्लेषणात्मक टीमों, फिटनेस विशेषज्ञों और रणनीतिकारों की भी बड़ी भूमिका होती है। 2026 विश्व कप में तकनीक का और अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत भले ही अभी तक फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है, लेकिन 2026 का विश्व कप भारतीय दर्शकों के लिए एक विशेष कारण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार भारतीय मूल के कुछ खिलाड़ी विभिन्न देशों की टीमों का हिस्सा बनकर विश्व कप में दिखाई दे सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम है तहसीन मोहम्मद का। तहसीन मोहम्मद भारतीय मूल के ऐसे फुटबॉलर है जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और प्रतिभा के बल पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कहा जाता है जब अन्य बच्चे आराम करते थे तब तहसीन मैदान में अभ्यास करते थे। उन्होंने बचपन से ही फुटबॉल के प्रति असाधारण समर्पण दिखाया। कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने सपने को जीवित रखा। कतर की प्रतिष्ठित फुटबॉल अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिभा से कोचों और चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। आज वे उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जिनसे भविष्य में बड़ी उम्मीदें की जा रही है। यदि वे विश्व कप खेलते हैं तो यह भारतीय मूल के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा और भारतीय युवाओं को यह संदेश मिलेगा कि समर्पण और मेहनत के बल पर विश्व मंच तक पहुंचना संभव है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कभी भारत विश्व कप खेलेगा? यह प्रश्न हर भारतीय फुटबॉल प्रेमी के मन में उठता है। भारत ने अभी तक फीफा विश्व कप के मुख्य टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय फुटबॉल की संरचना और सकारात्मक बदलाव हुए हैं। युवा खिलाड़ियों के लिए अकादमियां विकसित हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग उपलब्ध हो रही है और पेशेवर लोगों का विस्तार हो रहा है। यदि यह प्रक्रिया लगातार जारी रही तो आने वाले वर्षों में भारत विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने का सपना साकार कर सकता है। विश्व कप केवल खेल आयोजन नहीं है बल्कि अरबों डॉलर के आर्थिक प्रभाव वाला वैश्विक कार्यक्रम है। पर्यटन, होटल, उद्योग, परिवहन, विज्ञापन, प्रसारण और खेल उपकरणों का बाजार विश्व कप के दौरान तेजी से बढ़ता है। मेजबान देशों को इससे आर्थिक लाभ के साथ साथ वैश्विक पहचान भी प्राप्त होती है। फीफा विश्व कप 2026 केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि फुटबॉल के भविष्य की नई शुरुआत है। 48 टीमों का विस्तार, तीन देशों की संयुक्त मेजबानी, नई तकनीक, नई प्रतिभाएं और वैश्विक भागीदारी
इसे इतिहास का सबसे

सबसे भव्य विश्व कप बना सकती है। दुनिया की निगाहें अब 11 जून 2026 पर टिकी है, जब फुटबॉल का यह महाकुंभ शुरू होगा। भारत के फुटबॉल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इंडियन सुपर लीग, युवा अकादमियां और जमीनी स्तर पर हो रहे प्रयास इस खेल को नई दिशा दे रहे हैं। विश्व कप जैसे आयोजन भारतीय युवाओं को प्रेरित करते हैं। आज देश के अनेक हिस्सों में बच्चे फुटबॉल को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि करियर के रूप में भी देखने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और प्रतिभा विकास पर निरंतर ध्यान दिया जाए तो आने वाले वर्षों में भारत भी विश्व फुटबॉल में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। फीफा विश्व कप केवल गोल और जीत हार की कहानी नहीं है, यह देशों के बीच मैत्री, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक एकता का प्रतीक भी है। जब विभिन्न महाद्वीपों की टीमें एक ही मंच पर उतरती है तो खेल सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता को जोड़ने का कार्य करता है। यही कारण है कि विश्व कप को अक्सर फुटबॉल का महाकुंभ कहा जाता है। फीफा विश्व कप 2026 कई नए अध्याय लिखने जा रहा है। 48 टीमों का विस्तार, 3 देशों की संयुक्त मेजबानी, रिकॉर्ड 104 मुकाबले और नई प्रतिभाओं का उदय। यह टूर्नामेंट केवल विश्व चैंपियन चुनने का मंच नहीं होगा बल्कि फुटबॉल के वैश्विक विस्तार और नई संभावनाओं का भी उत्सव होगा। भारतीय दर्शकों के लिए भी यह विश्व कप खास रहेगा क्योंकि इसमें भारतीय मूल के खिलाड़ियों की मौजूदगी हमारी भावनात्मक भागीदारी को और गहरा बना सकती है। तो आइए हम सब मिलकर इस फुटबॉल महोत्सव की प्रतीक्षा करें और देखें कि 2026 में कौन कौन सी टीमें इतिहास रचती है और कौन से खिलाड़ी दुनिया के दिलों पर राज करते हैं। धन्यवाद।

0: अभी आपने फीफा विश्व कप 2026 पर यह वार्ता सुनी। आलेख नवेद इशरत का था और वाचन मनीष गजबिये का। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था,
5: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
6: कार्यक्रम खेल जगत अभी आपने सुना, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में।
7: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

उखाड़ के ज्वाल से बवाल से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना, भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं ये गीत फिल्म आराधना से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी की शब्द रचना और एस डी बर्मन का संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फिल्म का नाम है लोफर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के लिखे बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और फिल्म का नाम है दोस्ताना।

0: श्रोताओं, फिल्म दोस्ताना के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जिसका विषय है पीएम मोदी के 12 साल, ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत। विशेषज्ञ हैं ब्रिगेडियर संजय घोष और कर्नल राकेश बुधानी। वार्ताकार हैं दीपा सिंह और प्रस्तुति है प्रादेशिक समाचार एकांश की। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर साहस, रणनीति, राष्ट्र सेवा की मिसाल है। इस ऐतिहासिक अभियान की पहली वर्षगांठ पर हम चर्चा करेंगे उस अदम्य साहस, अनुशासन और देशभक्ति की जिसने पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर संजय घोष और कर्नल राकेश बुधानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ब्रिगेडियर सर, पहला सवाल आपसे है, ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में विस्तार से बताइए।
2: कई दशकों से भारतवर्ष जो है पाकिस्तान से उत्पन्न हुए जितने भी आतंकवादी हमले या आतंकवादी गतिविधियां थी उससे हम लोग काफी प्रभावित थे।
1: बिल्कुल,
2: वो एक चरम सीमा में पहुंच चुकी थी जिसमें कि हमारे देश के अस्तित्व को चुनौती दिया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद, पहलगाम में जो हुआ पूरे देश को पता है।
1: बिल्कुल,
2: वो एक बहुत ही निंदनीय और बहुत ही बेकार किस्म का एक हमला था इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट को यूज करके, और एक जवाब जो देना था वो हमने टेररिज्म के अगेंस्ट दिया। अगर किसी को लगता है कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट दिया, ऐसा शायद ना हो, लेकिन हाँ आतंकवाद को कि अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वजह थी सबसे पहले कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। बुधानी सर, जब भी किसी तरह का ऑपरेशन होता है या फिर हम जिस तरह की भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद को बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, तो उस समय हालात कितने कठिन होते हैं जमीन पर, जो सेना के हमारे जवान होते हैं उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
4: देखिए, युद्ध या कोई भी ऑपरेशन शुरू करते समय एक बहुत कम से कम वार्निंग टाइम दिया जाता है जिससे कि जो आपका ऑपरेशन है उसकी उसका गुप्त नेचर बना रहे और बहुत ही त्वरित प्रक्रिया करनी पड़ती है, और कई सालों की ट्रेनिंग और अभ्यास से जो ड्रिल्स और जो प्रोसीजर्स सेट इन किए गए होते हैं उनको क्रियान्वित करना होता है उस दिन उस समय के हालात, मौसम और परिस्थिति को नजर रखते हुए। तो मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है सशस्त्र सेनाओं को हर समय कि कब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि हमें ऑपरेशन में जाना पड़े, हमें

0: लड़ाई जैसी स्थितियां लड़ाई करनी पड़े और हम उसके अंदर विजयी हों, हम उसके अंदर अच्छा रिजल्ट हासिल करें।
1: बिल्कुल सही कहा सर आपने। संजय सर, किसी भी अभियान की सफलता के पीछे उसकी रणनीति पर निर्भर करती है पूरी सफलता। तो ऑपरेशन सिंदूर की योजना किस प्रकार बनाई गई और क्या आजकल देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल रही है, तो टेक्नोलॉजी की कितनी भूमिका रही है ऑपरेशन सिंदूर में?
2: बिल्कुल सही कहा दीपा आपने। ऑपरेशन सिंदूर से जो हमें लेसन्स मिले हैं वो ये दिखाता है, आज एक साल हो गए हैं, कि जॉइंट ऑपरेशन कितना जरूरी है और तीनों सेनाओं के जो अंग है उन्होंने ये दर्शाया है कि एक दूसरे के साथ मिलके कैसे हम दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि प्रेसिशन स्ट्राइक दिखाया गया है। प्रेसिशन स्ट्राइक का मतलब ये है कि कितनी सटीकता से हम अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हमारे भारतीय वायुसेना ने वो करवा के दिखाया है, जिससे कि शायद विश्व में सारे देश काफ़ी अचंभित हो गए थे कि भारतवर्ष ये कर सकता है पाकिस्तान के अंदर डीप घुस करके अपने एयरफोर्स से तथा मिसाइलों से।
1: जी,
2: आपने सही बताया कि तकनीकी जो बढ़ोतरी हो रही है लड़ाई में, युद्ध के क्षेत्र में, उसके साथ देश को साथ रहना बहुत जरूरी है। और हाल ही में जैसे हम ईरान के आसपास देख रहे हैं किस तरह के वहाँ पे युद्ध हुए हैं, सो आज तकनीकी जो हमें चाहिए विशेषता है उस पे देश को रोज सोचना होगा और अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ानी होगी। शायद अगर हम सिर्फ बोले कि हमारी सेना बहुत ताकतवर है, वो ताकत आएगी जब हम साथ ही साथ सेना तकनीक के साथ आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल।
2: और शायद आगे ऑपरेशन सिंदूर जैसे और ऑपरेशंस हुए तो हमें अपनी क्षमता दिखानी पड़ेगी कि हम कितने अच्छे हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में और नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में।
1: टेक्नोलॉजी की हमने बात की है कि वाकई अभी हम लोग काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं। बात करें अगर रक्षा बजट की, तो इस साल का जो बजट आया है उसमें रक्षा बजट को दुगुना किया गया है, आप इसे कैसे देखते हैं?
2: देखिए, रक्षा बजट को दुगुना करने का मतलब ही यही है कि भारतवर्ष चाहता है कि अपनी रक्षा सेवाओं को अपग्रेड करें, और अपग्रेड करने में हम देख रहे हैं कि नए नए टेक्नोलॉजी कितने हम ला सकते हैं और उस पे काम चल रहा है। तो हाल ही में आप अगर पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे, ड्रोन्स इतने यूज़ हो रहे हैं कि आज देश भर में हमारी जो युवा है उनको सिखाया जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और युद्ध के क्षेत्र में भी अब हवा में इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रहे हैं कि जिससे कि शायद पैदल सेना से ज़्यादा तकनीकी सेना
1: बिल्कुल
2: पे बहुत ज़्यादा जोर है। तो हमारे लड़के लड़कियां जो भारतीय सेना में, सशस्त्र सेनाओं में जा रहे हैं, और उनको ये शिक्षा दी जा रही कि वो कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी से प्रभावित हो और उसको यूज़ करने की क्षमता बढ़ाए।
1: बिल्कुल,
2: इसी से देश के रक्षा सेवाओं में बढ़ोतरी आएगी, हमारी सोच बदलेगी, और शायद इसी में मैं सोचता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हम ऐसा लाएं कि हमारा हर एक बच्चा जो युवा बन रहा है और आगे के लिए सोच रहा है, डेली अपनी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी के यूज़ को आगे संभालता रहे, बढ़ाता रहे और उसका इस्तेमाल करता रहे।
1: बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना में टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और जो हमारे नए जवान, नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, वो भी, उनको भी अलग तरह की शिक्षा दी जा रही है ताकि वो भी टेक्नो फ्रेंडली रहें और काम आसान होता रहे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक कि हम तो अपने जवानों को अब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे धीमे धीमे। सो हमारे जो जवान हैं और उनको सिखाया जा रहा है कि आप भी अपने ऑफिसर के साथ कदम से कदम मिलाए टेक्नोलॉजी के साथ।
1: राकेश सर, जब जवान मैदान में उतरते हैं तब आपने जिस तरह से बताया, बाकी फील्ड पे तो बहुत सारी तैयारी होती है, मानसिक रूप से कितना तैयार होना पड़ता है उनको?
0: अपने अनुभव से मैं ये कहना चाहूँगा कि शारीरिक तैयारी लगभग हम कहें तो 20% और मानसिक तैयारी 80% है। युद्ध बड़ी अनिश्चित हालात में लड़े जाते हैं, रात के समय लड़े जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में लड़े जाते हैं, परिवार और यूनिट की टीम में बहुत चैलेंजिंग एटमॉस्फियर होता है, और ऐसे तौर पे एक सिपाही से लेकर के सीनियर से सीनियर अधिकारी को मानसिक रूप से बहुत ही दृढ़ होना चाहिए।

0: होता भी है और बड़े चैलेंजेस आते हैं, और अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे लीडरशिप से उस चीज़ को पाया जाता है। जैसा कि हमने हिंदुस्तान के सभी युद्धों के अंदर देखा है कि हमारी लीडरशिप और हमारी ट्रेनिंग के कारण हमारी सेना बहुत अच्छा परफॉर्म करती है।
1: सही कहा आपने एकदम। ब्रिगेडियर सर, आपकी सर्विस के दौरान कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहिए, जैसा कि कर्नल सर ने शेयर किया है।
2: जैसे अभी आप देखते हैं युद्ध जो भी छोटे मोटे हुए कारगिल के बाद, 1990 की बात है जब भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर में खास तौर पे जब आतंकवाद का साया शुरू हुआ था, तो तब हम वहाँ पोस्टेड थे और वहाँ LOC पे डिप्लॉयड होते थे उरी के पास पहाड़ों में। और उस वक्त जो आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू हुई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी JKLF, और वो JKLF जो है पाकिस्तान की तरफ से POK की तरफ से हाजी पीर पास को पार करने के बाद धमका रहे थे भारतवर्ष के अंदर घुसने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए जैसे POK और JNK हमारे तरफ सब सेम है। उस वक्त मैं भारतीय सेना के आर्टिलरी में था और हमारे पास सिर्फ नया नया बोफोर्स था, और उन बोफोर्स के तहत और अपने जो इंडियन गन्स थे तो उनको मेरे नीचे एक टुकड़ी को दिया गया था कि आप अगर लगता है, और मेरी तब उम्र कम थी और मैं सिर्फ एक नया नया कप्तान बना था,
1: बिल्कुल
2: एक कप्तान बन के ऐसा लगता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, मेरे पास 6 बोफोर्स हैं और 6 IFG है, उनको मैं खोल दूंगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। आप आतंकवादी को देखते भी हैं, समझते भी हैं, और शायद फिर आपको सिखाया गया है, आप सोचते हैं कि देखिए इसका क्या होगा अगर मैंने तोप चला दिए, तो कोई ना कोई तो हाँ बोल देगा आपके कहने पे, क्योंकि आपको लग रहा है हमला होने वाला है। उस रात शायद हमने हमला नहीं किया और हम देख रहे थे कि वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं एक इन्फेंट्री बटालियन के साथ था, 3 सिख रेजिमेंट, और उनके जवानों ने ही जवाबी कार्रवाई में उनको शांत कर दिया। तो हमारे पास अभी भी भारतीय सेना के सारे अंग में ऐसा है कि इतना जज्बा है कि हम शायद तोप खोलने की जरूरत ना पड़े और हमारी भारतीय सेना वैसे ही शांत करते लोगों को, तो वो मुझे आज भी याद।
1: वाकई बहुत प्रेरणादायक किस्सा है, बिल्कुल सही कहा आपने।
3: राकेश बुधानी सर, देश का युवा जो सेना को प्रेरणा के रूप में देखता है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देश का युवा सेना से बहुत ही प्रेरित है, और ये पता चलता है जो सेना के लिए भर्ती रैलियां होती हैं जवानों की, और ऑफिसर एंट्री के लिए NDA का एग्ज़ाम, CDS का एग्ज़ाम होता है, और देश का युवा चाहता है कि वो देश की प्रगति में, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे। और ये चीज़ें हमें जब भी हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं या उनका सिलेक्शन एग्ज़ाम्स के टाइम देखते हैं, तो अच्छी ये चीज़ खुल करके सामने आती है, और सेना के में होने के कारण हम उन्हें हमेशा इसकी शुभकामनाएं देते हैं।
1: संजय सर, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी।
2: जी, युवाओं के लिए देखिए आज भी क्या है कि हमारे देश के युवा सेना से बहुत प्रभावित है,
1: जी
2: ये पता चलता है आंकड़ों से कि साल में 2 बार UPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं सेना के अफसर बनने के लिए, NDA के लिए या CDS के लिए, लाखों में कैंडिडेट आते हैं। इसके अलावा अग्निवीर बनने के लिए भी
1: जी
2: लाखों में, हजारों में कैंडिडेट आते हैं, ये आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों से क्या दिखाता है कि भारतीय सेना की नौकरी, सशस्त्र सेनाओं की नौकरी, तीनों अंगों की नौकरी
1: जी
2: के लिए इस देश की युवा में बहुत चाह है। अगर ये चाह है तो इसके वजह कोई कोई पीछे कोई वजह है, और वो ये वजह है कि हमारी युवा आज भी समझती कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाके नौकरी जो है एक अलग ही पद्धति की नौकरी है, जिसमें कि आप जिंदगी को व्यतीत करने वाले हैं यूनिफॉर्म में, देश के लिए, अपने भले के लिए भी, और एक ऐसा करियर जो आपको ग्रोथ ही देता है, हमेशा आपके परिवारों को देखभाल भी कर रहा है और साथ में आपका बढ़ावा हो रहा है, करियर प्रोग्रेशन हो रहा है, जिसमें कि आपकी बुद्धि खुल रही है, आपको देश के बारे में और विदेश के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता लग रही हैं, तो एक आप एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं। सो अल्टीमेटली द थिंग इज दैट कि एक गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब वो गुड सिटीजन क्या होता है कि वो बनाता है एक देश की छवि, और देश की छवि से क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो यही सोच के मुझे लगता है कि युवाओं का रुझान जो है

0: बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे ऑपरेशन सिंदूर और इन सब के बारे में जब वो पढ़ते हैं, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर को एनसीईआरटी की किताब में भी डाल दिया गया
1: जी
0: है
1: जी
0: एक चैप्टर में, तो ये होना चाहिए। और ये होगा तो हमारे बच्चे जो अगले जनरेशन के लिए बन रहे हैं उनको पता रहेगा अपने हिस्ट्री के बारे में, और वो आगे समझ सकेंगे कि देश की डेफिनेशन क्या है।
1: किताबों के माध्यम से जो हमारे देश का यूथ है वो अपनी सेना के अदम्य साहस और शौर्य को जानेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर जिस तरह से हो रहा है, सिंदूर नाम अपने आप में बहुत ही भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है, तो ऑपरेशन सिंदूर के पीछे कुछ विशेष कहानी?
0: देखिए, हम और आप मिलके ये नहीं बता सकते कि क्यों ये नाम दिया गया,
1: बिल्कुल
0: लेकिन एज अ कॉमन मैन जो कि सोसाइटी में है, मुझे जैसा लगता है कि पहलगाम अटैक जो हुआ था आतंकवादियों का, उसमें उन्होंने टारगेट करके बहुत सारे औरतों के सिंदूर मिटाए थे और मारा था उनके हस्बैंड्स को, ठीक है, उनके फैमिली मेंबर्स को। तो अगर उन्होंने सिंदूर मिटाए हैं तो मेरे ख्याल से ये नाम यही सोच के रखा गया है कि सिंदूर को कैसे उसका दिखाया जाए असली रूप।
1: बिल्कुल
0: और यही मुझे लगता है कि किसी ने भारतीय सेना में बैठ के जब ये नाम सोचा होगा तो उन्होंने ये नाम सोचा होगा कि किसी के सिंदूर को मिटाया तो हम उस सिंदूर को ही वापस लाते हैं।
1: अब बिल्कुल सही कहा। बुधानी सर आपकी क्या राय है?
2: बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर संजय घोष से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इस बात में। भारत का जो दृष्टिकोण हमेशा से रहा है वो है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अधिक प्रतिबद्धता, और जीवन की रक्षा और सुरक्षा का आश्वासन ये हमारे राष्ट्र का सर्वोपरि हित है हमारे नागरिकों के लिए। और ये हमारे ये एक व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण का भी हिस्सा है। तो जैसे कि हमने देखा पहलगाम के आतंकवादी हमले में एक यंग कपल, जिसके अंदर एक यंग विडो अपने पति के देह के साथ बैठी हुई है, और वो एक प्रतीक बना, सिंदूर एक प्रतीक बना हमारे रिटेलिएशन का। और उस सिंदूर नाम ने, उस भावना ने हमारे रिटेलिएशन को रूप दिया कि ये था हमारा सोच उस हमले के प्रति, और हम उसको इस रिटर्न तरीके में क्रियान्वित करते हैं।
1: बिल्कुल ब्रिगेडियर सर, ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं पहली वर्षगांठ की, तो ऑपरेशन सिंदूर को संचालित करने में तीन महिलाओं ने ही सबसे मुख्य भूमिका निभाई है, उसके बारे में आपका क्या विचार है?
0: देश को तीन महिलाएं दिखाई गई थी, लेकिन मैं बताता हूँ इन तीनों के अलावा सैकड़ों और महिलाएं थी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना फर्ज निभाया है।
1: बिल्कुल,
0: हर एक फाइटिंग आर्म्स में और सपोर्टिंग आर्म्स में, जिधर नेवी में। सो महिलाएं जो है इस वक्त काफी अच्छा प्रदर्शन दे रही हैं तीनों अंगों के भारतीय सशस्त्र सेनाओं में। और मैं ये कहूंगा कि आज इतने साल हो गए जब महिलाएं आई हैं सशस्त्र सेनाओं में, उनका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है, और वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को ढाल चुकी हैं भारत के डिफेंस फोर्सेस के यूटिलाइजेशन में। और जैसे कि देश ने उन तीनों महिलाओं को देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के ब्रीफिंग में और उसके बाद काफ़ी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उनको देख के आपको लगा होगा कि वो किस लेवल के मैच्योरिटी पे पहुंच गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो देख के हमें लगता है कि महिलाएं जो हैं भारत के सशस्त्र सेनाओं में आगे भी अच्छा ही करेंगे। क्योंकि ये होता है कि हायर डिफेंस मैनेजमेंट पे कि जब आप जाते हैं ऊपर और देश के वेरियस पॉलिसीज और इन डिसीजंस को समझते हैं, एक यंग महिला और आगे चल के 12-15 साल बाद उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, मैच्योरिटी कैसे आती है और वो कैसे निभाते हैं अपने टास्क को, वो प्रदर्शन किया है महिलाओं ने। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद देश को उस प्रदर्शन का एक बहुत ही बढ़िया मिसाल दिया है।
1: बिल्कुल,
0: जो कि शायद दीपा जी आप इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके पास वो छवि अभी भी अच्छा दिख रहा होगा आपके दिमाग में उन तीनों महिलाओं को स्टेज पे बैठ के देख के। यही रीजन है कि बाकी जो नए लड़के लड़कियां जा रहे हैं भारतीय सेना में अफसर या अग्निवीर बन के भी, वो प्रेरणा ले रहे हैं और वो प्रेरित होते रहेंगे कि शायद हम भी एक दिन वहां पे उस टेबल पे बैठ

0: सही कहा आपने सर बुधानी सर, जिस तरह सर ने बताया कि महिलाएं वाकई हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, सेना में भी उनका लगातार बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको?
1: बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है देश के अंदर महिलाओं को, और एनडीए के अंदर अगर हम लें तो यंग गर्ल्स को मौका मिल रहा है सैन्य सेवाओं में आने का और अपने मर्जी का प्रोफेशन चुनने का। चैलेंजेस हैं, एडवेंचर है, अच्छी लाइफस्टाइल है, और ख़ासकर वे कन्याएं या महिलाएं जिनके पिता, जिनके नाना, जिनके दादा फौज में रहे हुए हैं, जो कि पहले नहीं सोच सकती थी कि हम भी एक प्रकार का फौजी जीवन जी पाएं, उनके लिए ये मौका उपलब्ध किया गया है।
0: संजय सर, ये सवाल है कि जब भी सेना कोई युद्ध संचालित करती है या फिर ऑपरेशन होता है, तो उस समय जो है जो ऑफिसर्स की फैमिली हैं या जो जवान हैं उनकी फैमिली है, उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है?
2: आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि
0: जी
2: एक दशक था जबकि देश में कम्युनिकेशन सेवाएं इतनी अग्रसर नहीं थी
0: जी,
2: लेकिन आज हम रियल टाइम में हमें सब कुछ पता चल जाता है।
0: बिल्कुल
2: ओके, तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ प्रेशर बढ़ता है, और जो फैमिली है, अगर उस फैमिली का स्ट्रेस जवान या ऑफिसर पे आने लगे, तो उसको अपने बैटलफील्ड पे या जहाँ पे भी कार्यरत है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट हो सकता है। सो मेरा ये मानना है कि जो फैमिलीज है उनको हमेशा अपने फैमिली के जो भी लोग हैं सेना में उनका मनोबल बढ़ाए रखें। अगर वो अपनी वीकनेस को उन तक जाहिर होने देंगे तो वो इफेक्ट होगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सारे महिलाओं को या माता पिताओं को या जो भी है जिनके हस्बैंड है या जिनके फादर हैं, आप जब वो नौकरी पे हैं तो आप अपनी वीकनेस को ज़्यादा जाहिर ना करें, ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी डावाडोल हो।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। उम्मीद करते हैं कि जिन श्रोताओं के घर में फौज में लोग होंगे वो इसे समझेंगे, अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे भी।
2: दीपा जी, ये फैमिली के बारे में जो आपने पूछा कि कैसे इफेक्ट होता है, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैंने पहले बोला था 1990 में एक हाजीपीर का ये इंसिडेंट, तो उसी वक्त उसके बाद शायद 2-3 महीने बाद मैं सामने LOC पे एक BSF पोस्ट था, तो वहाँ पे मेरे को भेज दिया गया क्योंकि मेरे पास तोप थे चलाने के लिए, मेरे पास और 3 सिख बटालियन की एक प्लेटून थी साथ में
0: जी।
2: और वहाँ पे जो BSF का सीनियर इंस्पेक्टर डिप्लॉयड था उसकी फैमिली बरेली में रहती थी, उसकी 2 बेटियाँ थी, आज भी मुझे याद है, एक बेटा था और बीवी उसकी बरेली में थी। तो जब हमें खबर मिला कि आज हर हाल में शायद पाकिस्तानी या साथ में उनके जो टेररिस्ट है वो हमारे पोस्ट पे अटैक करने वाले, और उनका पाकिस्तानी पोस्ट सामने दिख रहा था, 100 मीटर पे था, तो ये जो BSF का सीनियर इंस्पेक्टर मेरे साथ बैठे हुए थे और वो बेचारे बहुत ही घबरा गए। उन दिनों थैंकफुली मोबाइल फ़ोन नहीं था हमारे देश में, सो इसलिए बात नहीं हो पाती थी। लेकिन वो मुझे रात को बोलने लगे कि सर आपकी तो शादी नहीं हुई है लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मैंने उनको बोला कि देखिए आपको कुछ नहीं होने वाला है, तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। तो उस वक्त मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि फैमिली का क्या रोल होता है दिमाग पे।
0: बिल्कुल,
2: और मैंने उनको बोला कि देखिए आप अगर समझते हैं कि फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आप कृपया करके पीछे चले जाए 50 मीटर पे, दूसरी कंपनी पोस्ट भी थी, मैंने कहा आप निकल लीजिए, मैं अकेले यहाँ संभाल लूँगा। उस वक्त खैर मैं तो नया नया कप्तान बना था, मेरी 2 साल की शायद नौकरी थी, तो मुझे आज भी याद है कि कैसे प्रेशर बढ़ता है फैमिली के होने से, उनकी सोच की होने से।
0: बिल्कुल,
2: और उस वक्त युद्ध में आप किस तरह से डावाडोल हो सकते हैं जो मैं बता रहा था।
0: जी जी,
2: तो जब आपने मुझे प्रश्न पूछा मेरे दिमाग में सीधे आज से इतने साल पहले का वो वाकया सामने आ गया, बंकर में बैठ के जो वार्तालाप हो रहे थे वो इंस्पेक्टर के साथ।
0: तो
2: इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सर फैमिलीज को चाहिए कि वो सपोर्ट करते रहे, नहीं तो हमें वहाँ पे काम करने में बाधाएं आ सकती हैं।
0: बिल्कुल, तो मेंटली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में आपके पिता हैं, भाई हैं, जो भी फौज में हैं या कोई महिलाएं भी हैं, तो उनका पूरा फुल सपोर्ट करना चाहिए। घर की छोटी मोटी टेंशन तो आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं क्योंकि वो देश हैंडल कर रहे हैं। कर्नल बुधानी, आप कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ?

0: सियाचिन की बात है, सन 1996 की। मैं वहाँ पर तैनात था। मौसम बदलता है, कभी गर्मियाँ होती हैं, जैसे साल में होता है गर्मियाँ होती हैं, सर्दियाँ होती हैं। हम लोग जब सियाचिन की पहाड़ी पे चोटियों पे चढ़े तो गर्मी का समय था, और एकदम फिर सालाना जैसे मौसम चेंज होता है, तो कई बार ऐसा होता था कि हम जो छोटी छोटी बंकर्स, खंदक बनाते हैं, और उसके अंदर स्वयं की भाप से और ठंड से वो दिन भर सिकुड़ते जाते थे। उनकी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर बर्फ़ जमा होती जाती थी। तो हमारे एक सैनिक थे जो कि चूंकि वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, आपके लगभग 3 साढ़े 3 महीने उसी बंकर और उसी छोटी सी चौकी पर आपका समय निकल जाता है। तो वो क्रॉल करके आगे वाले पोस्ट पे गए हुए थे, और महीने भर बाद जब उन्हें इस तरफ वापस आना था तो वो खंदक जो है, वो सुरंग जो है, वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। तो हमने उन्हें ये कहा कि देखो, तुमने महीने भर बहुत यहाँ पर फौज का राशन खाया है, तुम मोटे हो गए हो और तुम इससे अब बाहर नहीं आ पा रहे हो। खैर, ये एक
1: बिल्कुल.
0: लाइटर हंसी मजाक का विषय है। तो बोला, वो खुद बोलता था सैनिक, नहीं साहब, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं खा पाता हूँ, खाने का मन ही नहीं करता है, मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, ये सकरी हो गई है। कुल मिलाकर के हमने उसे तोड़ करके, बर्फ़ को तोड़ करके उसे निकालना पड़ा। लगभग 6 से 8 घंटे ये हमारी कार्रवाई चली, तब उसको हम इस तरफ खींच के ला पाए और बाहर निकाल पाए। तो ये कुछ एक लाइटर किस्से हैं अग्रिम चौकियों पे डिप्लॉयड होने के और वहाँ की जीवन शैली के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा सर. ये हमें फौजियों से ही मिल सकते हैं, क्योंकि आम जो जनता है हमारे जैसे, वो कैसे महसूस कर पाएंगे कि हमारे सैनिकों को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है देश की सुरक्षा के लिए और हम सबको सुरक्षित महफूज कराने के लिए. ब्रिगेडियर सर, जो आज की यंग जनरेशन है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: जो यंग जनरेशन है, आज की युवा पीढ़ी है, उनको मेरा मैसेज यही है, आप देश की परिभाषा को समझें, वो बहुत ज़रूरी है। शायद हम अपने करियर, अपने सेल्फ को लेके कहीं सोचते रहते हैं, लेकिन देश के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश से ही एक नागरिक की पहचान बनती है। अगर वो पहचान ही ना रही तो आप तो कहीं के नहीं रहे।
1: बिल्कुल.
2: जो भी युवा है, उनको मेरा यही मैसेज है, आप किसी भी तरह अपने आप को बढ़ा रहे हो, लेकिन आप ये सोचते रहिए कि मेरे इस काम से मेरे देश को क्या इफेक्ट होने वाला है।
1: बिल्कुल.
2: अगर वो आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा तो शायद हम सब एक बेहतर नागरिक कहलाएंगे। मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ सैन्य लोग या सेना में जो है वही देश के लिए लड़ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, देश का हर नागरिक शायद देश के लिए लड़ रहा है।
1: जी, मैं आपसे यही पूछने वाली थी.
2: वो शायद ऐसा नहीं है कि मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो दीपा जी आप
1: सेवा नहीं
2: देश
1: कर
2: के लिए
1: सकते हैं.
2: नहीं लड़ रही हैं, आप ही लड़ रही हैं बिना यूनिफॉर्म पहने, क्योंकि आप जो देश के लिए कर रही हैं वो भी देश को एक डेफिनेशन देता है,
1: बिल्कुल
2: और यही चाहिए युवाओं से।
1: जी. अक्सर ये सोच होती है कि हम सेना में जाएंगे तभी देश की सेवा कर पाएंगे, तो आप अपने स्तर पे भी छोटे छोटे काम करके देश की सेवा कर सकते हैं. पानी बर्बाद मत कीजिए, पौधे लगाइए, बहुत छोटे छोटे से काम है, तो इनको करके भी आप अपना योगदान दे सकते हैं देश की सेवा करके. कनर बधानी, आपका क्या संदेश है हमारे युवाओं के लिए?
0: मेरा देश के युवाओं के लिए यही संदेश है कि जैसा अभी तक हम चर्चा में कहते आए कि देश के प्रति समर्पित रहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपना एकेडमिक और स्किल डेवलपमेंट करिए और नई से नई ऊंचाइयां हासिल करिए।
1: बिल्कुल. तो आज की बातचीत ने हमें ये समझाया है कि किसी भी सैन्य अभियान के पीछे केवल हथियार नहीं, बल्कि साहस, अनुशासन, रणनीति और राष्ट्र प्रेम होता है. संजय सर और राकेश बुधानी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए.
2: धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें यहाँ आमंत्रित किया और अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया।
1: बिल्कुल सर. इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.
3: अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम, जिसका विषय था पीएम मोदी के 12 साल, ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत. विशेषज्ञ थे ब्रिगेडियर संजय घोष और कर्नल राकेश बुधानी. वार्ताकार थीं दीपा सिंह और प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की.

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए रूपक ताल पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया का तबला वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे रूपक ताल पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया का तबला वादन। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
3: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है,
1: कंटेंट क्रिएशन भी है,
0: हिप हॉप भी है,
1: न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है।
0: एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड। जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द
2: वर्ल्ड्स। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया।

है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।